भोर सुहानी आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। नाकाम है असर से दुआएं दुआ से हम, मजबूर हैं कि लड़ नहीं सकते खुदा से हम, चाहोगे तुम ना हमको ना छूटोगे हमसे तुम, जफा से हुआ।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं SOP को तैयार करने के लिए बहु एजेंसी केंद्र MAC मंचों पर उपलब्ध सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण भगोड़ों को वापस लाकर और अनुपस्थिति में सुनवाई के प्रावधानों का उपयोग करके मुकदमों में तेजी लाने और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम UAPA मामलों की जांच करते समय व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। 2 दिन का यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को गहरा करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के भेज्जी थाना क्षेत्र में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुनुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा के महासचिव संगठन BL संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के 2 दिन के दौरे पर हैं। मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का यह सत्र बुधवार को समाप्त होगा। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। वित्त मंत्री ने कहा कि संघर्ष के अस्पष्ट क्षेत्रों में काम करना अब स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने किसी भी ऐसे देश का नाम नहीं लिया जिस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम चिंतन।
2: सिनेमा हॉल के पर्दे पर रहस्य रोमांच से भरपूर फिल्म चल रही थी। सारे दर्शक सांस रोककर धड़कते दिलों से कहानी में आने वाले किसी

0: अप्रत्याशित मोड़ का इंतजार कर रहे थे। फिल्म ऐसे मोड़ पर पहुंची थी जहां कुछ भी हो सकता था। कई शहरों में धूम मचाने के बाद यह फिल्म अब हमारे शहर में प्रदर्शित हो रही थी। यहां पर इसका पहला ही शो था। 4 घंटे की मशक्कत के बाद बड़ी मुश्किल से फिल्म की एक टिकट मिल पाई थी, और अब जब फिल्म ऐसे मोड़ पर पहुंची थी तो यूं लगता था मानो सारी मेहनत सफल हो गई। बेहद ही मनोरंजक और रहस्य रोमांच से भरपूर फिल्म। तो जब एक निर्णायक मोड़ पर फिल्म पहुंची तो पीछे बैठी एक भद्र महिला ने अपने साथ आई महिला से कहा, देखना अब इसके बाद ऐसा होगा। उस महिला की भविष्यवाणी अगले ही पल पूरी हो गई। चूंकि मोड़ ऐसा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, इसलिए भ्रम हुआ कि कहीं उस महिला ने यह फिल्म पहले तो नहीं देखी। खैर, कुछ ही पलों में यह भी स्पष्ट हो गया, यकीनन वो महिला इस फिल्म को पहले देख चुकी थी। एक बार जो उनकी भविष्यवाणी सच निकली, वे बेहद उत्साहित हो गईं। हर सीन पर बार बार अपनी विशेष टिप्पणी पेश करने लगीं। ये होगा देखना, देखो अब ऐसा होगा, अरे वो मरा नहीं है, देखना अभी आ जाएगा। ओह, प्राण ही ले लिए उसने। उनके साथ आई महिला शायद शर्म के कारण उनका विरोध नहीं कर पाई। इससे वो और भी उत्साहित होकर बाकी दर्शकों के लिए बड़ी तन्मयता से आंखों देखा विवरण प्रस्तुत करने लगी। हम में से लगभग सभी लोग ऐसे स्वयंभू बुद्धिजीवियों से कहीं ना कहीं मिलते ही रहते हैं। ऐसी ही एक जगह सिनेमा हॉल है जहां इनको अपनी बुद्धि, विवेक, तर्क शक्ति, वाक्पटुता और चातुर्य का मजाक उड़वाने की प्रेरणा मिलती दिखाई देती है। फिल्म के बीच बीच में इनके दिमाग से दागे गए छर्रों का पहला परिणाम बाकी दर्शकों का गुस्सा होता है, मगर ये ऐसे सख्त जान होते हैं कि इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसी स्थित प्रज्ञ साधु या संत के ही समान मान अपमान से इन्हें कोई लेना देना नहीं होता। सारा पिक्चर हॉल इन पर लानते भेजता है। युवक तैश में आकर अपशब्द तक कह डालते हैं, अथेड़ ताना कसने लगते हैं। महिलाएं अपना रोष बार बार ओफो कहकर प्रदर्शित करती हैं, लेकिन ये निश्चल भाव से, या कहें निर्लज्ज भाव से 2 मिनट चुप रहकर फिर अपनी कमेंट्री शुरू कर देते हैं। दरअसल मानव मस्तिष्क का सरल मनोविज्ञान ये कहता है कि हम सभी में खुद को बुद्धिमान, चतुर और हर तरह से आदर्श प्रस्तुत करने की उत्कट अभिलाषा होती है। हम चाहते हैं कि हमें जानने वाले और हमारे संपर्क में आने वाले सभी ये समझ पाएं कि हम में कितने सद्गुण हैं, हम कितने अच्छे हैं। ये भी दर्शाना चाहते हैं कि हम अद्वितीय हैं, अनुपम हैं, यानी हमारे जैसा और कोई नहीं है। हमारे हर क्रियाकलाप को हमारे अवचेतन मस्तिष्क में बसी ये बातें ही प्रमुख रूप से संचालित करती हैं। अब चूंकि हर व्यक्ति समान नहीं होता, सभी में भिन्न प्रकार के गुण होते हैं, इसलिए अपनी समझ और दिमाग के हिसाब से एक परिस्थिति के प्रति सभी का अलग अलग रिएक्शन होता है। अपने व्यक्तित्व के उजले पक्षों को औरों के सामने प्रस्तुत करने के तरीके भी हर किसी के अलग अलग होते हैं। जो सामर्थ्यवान होते हैं वे अपने कार्यों से, मधुर बातचीत से, सभी के प्रति अपनी शुभेच्छाओं से अपनी श्रेष्ठता का परिचय देते हैं। जो ऐसा नहीं कर पाते या फिर जिनमें कोई सद्गुण नहीं होता और तब भी वे औरों के सामने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहते हैं, वे अक्सर ऐसी हरकतों का सहारा लेते हैं। तो अगली बार जब आप सिनेमा हॉल में रहस्य रोमांच से भरपूर कोई फिल्म देख रहे हों और अचानक पीछे की सीट से आपको ये आवाज सुने, जानते हो फिल्म में सारे खून उस चौकीदार ने किए हैं, तो गुस्सा होने के बजाय उस मानसिक रोगी से सहानुभूति रखिएगा। उसका वश अपने ही ऊपर नहीं चल सकता। ऐसे लोग गुस्से के नहीं, आपकी दया के पात्र हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। ये कार्यक्रम संपन्न होता है। FM बैंड पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे मुकेश द्वारा गाए भजनों को।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष वंदे मातरम और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जाने अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। इस गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है। अब सभी जानते हैं ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नोवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875 ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन जो बंकिम चंद्र ने ही संपादन किया था बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया। उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया। स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नोवेलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर नॉट ओनली ए नोवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th सेंचुरी कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र आत्माभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम मैंने पहले ही कहा कि एक नोवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of Swadesh Puja. On 1876, West Bengal की हुगली जिला में गोपाल चंद्र धर नामक एक व्यक्ति वंदे मातरम गीत देश मल्लार धुन में गाया था। और मैंने बोला कि 1871 में इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में हुआ। वंदे मातरम हमारा गर्व है, स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये गीत हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नोवेल है उपन्यास है उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में तब उसका गीत का प्रसार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए स्वाभिमान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखे तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार। बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
0: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
2: आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और कार्यक्रम वंदना में आज आप सुन रहे हैं मुकेश द्वारा गाए भजनों को।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अभी आप सुन रहे थे, जिसमें गायक कलाकार थे मुकेश। और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। FM बैंड पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम कृषि मंच, जिसमें चर्चा का विषय है फसलों में पोटाश तत्व की भूमिका।

संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। आज के हमन चर्चा में जानबो पोटेशियम, पोटास के बारे में। काबर महत्वपूर्ण हावे, पौधा के रोग प्रतिरोधक क्षमता ला बढ़ाए बर बहुत ही कारगर उपयोगी पोषक तत्व हावे पोटास, पोटेशियम। और यह हर फसल के चमक ला बढ़ाते, गुणवत्ता ला बढ़ाते, और एक प्रकार से देखा जाए तो संगी हो, यह सुरक्षा कवच के रूप में काम करते पौधा के। एकर कमी और एकर कार्य और एकर उपलब्धता बढ़ाए के बारे में बात करते हैं तो सबले पहली एकर काम ला जानना पड़ी। पौधा में जो तनाव होते वो तनाव ला बचाए मा, तनाव ला दूरिया करे मा पोटेशियम काफी लाभप्रद होते। देखा जाए तो संगी हो, जो फसल होते वो फसल मन के जड़ ला मजबूत बनाते, सूखा की स्थिति में भी सूखा ला सहन करे के क्षमता देते, फसल में कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता ला बढ़ाते और पौधा आसानी ले गिरे नहीं। कुल मिला के बात किया जाए तो पत्ता के जो छिद्र रहते ओमा खुले और बंद होए ला नियंत्रित करते। एकर कारण से सूखा या कम पानी की स्थिति में भी पौधा जीवित रहते। पौधा के कोशिका ला मजबूत बनाते पोटास, जोनहर की फसल में फंगस, कीड़ा मकोड़ा या अन्य जो आक्रमण रहते, बीमारी के संभावना बढ़त रहते, ओला रोकते, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते। अगर फल, सब्जी, अनाज की बात करते हैं, दाना के आकार, रंग, चमक और स्वाद, ये सबों में एक प्रकार से लाभकारी होते। आलू, शकरकंद, ये फसल मन में स्टार्च बढ़ाए में लाभकारी रहते। अगर हमन पोटास के उपयोग करते हैं तो दाना चमक आते। एकर ताजा उदाहरण किसान भाई मन स्वयं जानते हैं, हालांकि पहली एकर उपयोग के ऊपर भ्रम रही से कि यह तो ईटा गुड़ाहावे ला नहीं डालन, लेकिन आज के दौर में किसान भाई एकदम आखिर जो डोज होते, जोन बेरा कल्ला निसरत रहते या जोन बेरा बाली निसरत रहते, वो बेरा जरूर डालते हैं। खास तौर से फसल ला गिरे ले भी बचाते, काबर की फसल में मजबूती लाए मा एकर महत्वपूर्ण योगदान रहते। हवा, पानी, वर्षा जो भी होते तो एक प्रकार से सामान्य अगर नत्रजन डाला था तो मा वानस्पतिक वृद्धि होते, लेकिन ये में वानस्पतिक वृद्धि कम और इमें मजबूती ज्यादा आते। और भोजन के परिवहन मा यह काफी लाभप्रद होते। कार्बोहाइड्रेट और शुगर के बात करते तो ओला एक स्थानांतरण करे मा और ओला जड़ तक, फल तक, दाना तक पहुंचाए मा काम करते। तो ये सब एकर काम हावे। तो हमन जानत हन कि एकर कमी से बहुत सारा समस्या हो सकते। तो समस्या का होते? समस्या तो ये होते संगी हो कि पत्तार भूरा और धब्बादार हो जाते और समय ले पहली गिर जाते और पान के पत्ता के किनारे झुलसे दिखाई पड़ते। एकर कमी के कारण से मक्का के भुट्टा छोटे बनते, नुकीला और किनारे में दाना कम पड़ते, आलू के कंद छोटे पड़ जाते, जेरी के विकास नहीं होए, पत्ता मन मुड़े लागते और फल भी बेजान हो जाते, छोटे सिकुड़े हुए पोची और एक प्रकार से स्वाद भी कम आते। पौधा के तना पतला हो जाते और एकर से भी गिर जाते। तो हमला ये सब ला देखत हुए पोटास के उपयोग करना चाहिए। एकर बर म्यूरेटा पोटास के उपयोग कर सकता हो आपन और बहुत बढ़िया होते कि बुआई के समय बेसल डोज में एला देना। अगर एला नहीं कर पाता सल्फेट आप पोटास के उपयोग कर सकता हो। एकर अलावा खड़े फसल में भी आपन स्प्रे के माध्यम से कर सकता हो। NPK आते ओला भी आपन उपयोग कर सकता हो अलग अलग प्रतिशत के, या आप मन ऐसे पोटेशियम फिक्स करे वाला आप मन जैव उर्वरक के भी उपयोग कर सकता हो। ऐसे कई प्रकार के संगी हो। अगर ये भी नहीं कर सका था तो अगर घर में आप मन चूल्हा के उपयोग करता तो चूल्हा के जो लकड़ी जला था ओकर बाद जो राग बनते, राग बजते, तिला भी आप मन उपयोग कर सकता हो। ऐसे कई प्रकार के उपयोग के माध्यम से आप मन संगी हो फसल ला पोटास तत्व के उपलब्धता ला बढ़ा सकता हो। कृषि

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम कृषि मंच, जिसमें चर्चा का विषय था फसलों में पोटाश तत्व की भूमिका, और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी रूपरेखा। कुछ ही देर में आप सुनेंगे 6:40 पर रामचरितमानस गान, 6:50 पर होगा देश गान, संस्कृत समाचार 6:55 पर, 7:00 हिंदी में समाचार होंगे। ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। चित्रपट संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 7:05 पर। 7:35 पर होगा कार्यक्रम झरोखा, जिसमें चर्चा का विषय होगा सेहत और स्वास्थ्य के लिए श्री अन्न। 7:45 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मादर। समाचार प्रभात सुबह 8:00 और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आप सुनेंगे। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समन्वित छत्तीसगढ़ी पत्रिका मोर भुइयां आप सुनेंगे 8:30 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर की अगली कड़ी आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से सुबह 10:00। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:00, 11:00 और पुनः 12:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी आप सुनेंगे 10:30 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से 9:55 पर और पुनः 11:55 पर।

0: और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्राजक कार्यक्रम हमारा हाथी हमार गोठ, जिसमें प्राजक होंगे CFN विभाग सरगुजा। झलकी आप सुनेंगे 5:10 पर। युवाणी कार्यक्रम का वक्त होगा 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय होगा नेत्रदान काले संकल्प, किसी के अंधेरे जीवन का बने विकल्प, राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा साथियों का संगीत संध्या और चर्चा। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से छत्तीसगढ़ी। प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 6:10 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। ये समाचार आप सुनेंगे हिंदी में, समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी आप सुनेंगे 7:30 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। समाचार संध्या का वक्त होगा 8:45 पर, ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध संगीत का आनंद आप ले पाएंगे रात्रि 10 बजे। पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादें आप सुनेंगे 10:30 पर। 11 बजे हिंदी में समाचार, रात्रि 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे, ये समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

कार्यक्रम विवरण में बस इतना ही। आप पुनः 7:55 पर कार्यक्रम विवरण संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न होता है। FM बैंड पर आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान की 114वीं कड़ी। गायक कलाकार हैं श्रीकांत पारगांवकर एवं साथी।

वर के रूप में श्री राम जिस घोड़े पर सवार हैं, वो मानो कामदेव का सुंदर रूपधारी है, जो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और मस्त चाल से सबको मोहित कर रहा है। भगवान शंकर श्री राम के इस मनोहारी रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र प्यारे लगने लगे। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु श्री राम के इस रूप पर मुग्ध हैं, किंतु ब्रह्मा को ये छवि देख पाने के लिए अपने मात्र 8 नेत्र पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इधर बारात के स्वागत को आतुर नगरवासियों में आनंद की लहर दौड़ गई है। चंद्रमुखी तथा हरिण की सी आंखों वाली स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वागत गान गा रही हैं। इस अवसर की शोभा देखने के लिए इंद्राणी, शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्य देवांगनाएं आम स्त्रियों का रूप धारण कर महिलाओं के समूह में आ मिली हैं। कौन भला किसे जाने और पहचाने, महिला समुदाय के कमल जैसे नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और होठों पर मुखरित हो रहा है परिछन गीत।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर एवं साथी। इसी के साथ श्री रामचरितमानस गान अब संपन्न होता है। हम बोल रहे हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए देश गान, जिसमें स्वर है अजीत कौर और साथियों का, रचनाकार है द्वारिका दत्त।

अभी आप सुन रहे थे देशगान, जिसे गाया था अजीत कौर और साथियों ने। रचनाकार थे द्वारिका दत्त। इसी के साथ देशगान संपन्न होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार, 7:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रिचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी युवकूटनीतिज्ञान् स्वनियुक्ति देशेषु जनस्तरे दृढसम्पर्कं स्थापयितुं तथा स्थानीय समुदायै सह भारतस्य सम्बन्धान् अधिकं सुदृढीकर्तुं च प्रेरितवान्। सेवातीर्थे भारतीय विदेश सेवायाः गतवर्षीय समूहस्य प्रशिक्षु अधिकारिभिः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी तान् पारम्परिक कूटनीतिक वृत्तेः परे स्वसम्पर्क जालस्य विस्तारं कर्तुम् अथ जनैः सह सम्पर्कं च सुदृढीकर्तुं प्रोत्साहितवान्। असौ भारतस्य रिक्त सम्बद्ध शक्तीनां प्रौद्योगिक्या नवोन्मेषेण प्रभावि सम्प्रेषणेन च सह संयोजनं कृत्वा भारतस्य वैश्विक सम्पर्कम् अधिकं सुदृढीकर्तुं प्रेरितवान्। असौ भारतीयोपक्रमाणाम् अंकीयोपस्थितिं सुदृढीकर्तुं महत्वमपि प्रतिपादितवान्। विश्वस्य युवकेषु भारतं प्रति अधिक रुचिं जनयितुं भारत को जानिए इत्येतस्य प्रश्नोत्तर कार्यक्रमस्य उपयोगस्य असौ परामर्शं प्रदत्तवान्। प्रशिक्षु अधिकारिभिः स्वप्रशिक्षणस्य भारत दर्शनस्य च अनुभवाः अभिव्यक्ताः। अस्मिन् समूहे देशस्य विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्र शासित प्रदेशेभ्यश्च आगताः 50 भारतीय विदेश सेवा प्रशिक्षुअधिकारिणः सम्मिलिताः सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः सर्वेभ्यः संस्थानेभ्यः अन्तः प्रवेशस्य विरुद्धं कठोर पदक्षेपाणि स्वीकर्तुं निर्देशं दत्तवान्। नवदिल्ल्याम् ऐषमः नवम राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति सम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्वन् श्रीशाहः निर्देशितवान् यत् बहुसंस्थान केन्द्रस्य मञ्चे उपलब्धानां सूचनानां कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः आधारेण विश्लेषणं करणीयम्, येन विविध राष्ट्रिय सुरक्षाह्वानानां प्रतिकाराय मानक संचालन प्रक्रियाः निर्मातुं शक्यन्ते। सम्मेलनस्य प्रथमदिने राष्ट्रिय सुरक्षायाः महत्वपूर्णेषु पक्षेषु चर्चा अभवत्। तेषु आतंकवाद विरोधी आह्वानानां प्रतिकारः, बहुसंस्थान केन्द्र माध्यमेन गुप्त सूचनानां एकीकरणं, विश्लेषणं कार्यान्वयनं च मादक द्रव्याणां नियन्त्रण सम्बद्ध दृष्टिपत्रम्, अवैध प्रवासिनां परिचयः, निर्वासनं च तथा तेषां प्रतिकाराय नीति निर्माणम् इत्यादयः विषयाः सम्मिलिताः आसन्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः ह्यः क्रेमलिन इत्यत्र रूसस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमीर पुतिन इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्।
1: तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने उन्हें पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रभावी संचार के साथ जोड़कर भारत की वैश्विक भागीदारी और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से भारत के वैश्विक आर्थिक संबंधों को गति देने में प्रेरक की भूमिका निभाने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2026 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का AI आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। आतंकवाद और कट्टरपंथ से निपटने के लिए श्री शाह ने गृह मंत्रालय की प्रहार योजना के कार्यान्वयन पर बल दिया। 2 दिन की इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने संवाददाताओं को बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र घोषित कर नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। भाजपा महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और पार्टी चुनाव जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। श्री संतोष पंजाब के दो दिन के दौरे पर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वांग यी के साथ भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वें दौर की वार्ता में शामिल होंगे। श्री डोभाल और श्री वांग सीमा मुद्दे के साथ साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज से शुरू होने वाली कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय साझेदारियों को मजबूत करना, निवेश संबंधों को प्रगाढ़ करना और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग को आगे बढ़ाना है। टोरंटो में अपनी यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री फ्रांसवा फिलिप शोपानियो के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद में भाग लेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर चर्चा की। श्री जोशी ने बताया कि चर्चा में खेलो इंडिया अभियान भी शामिल था। इसमें शिक्षण संस्थानों में खेलों को बढ़ावा देने, विद्यार्थियों की व्यापक भागीदारी प्रोत्साहित करने और युवाओं में खेल प्रतिभाओं को निखारने पर बल दिया गया। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में माओवादियों के एक ठिकाने से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद किए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी के आधार पर जिला सुरक्षा बल, जिला रिजर्व गार्ड और बस्तर लड़ाकों ने कल भंडारपदर और मुरुकोंडा के वन और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान SLR, राइफल, बीजल लॉन्चर और थूथन लोडिंग बंदूकों सहित 23 हथियार बरामद किए गए। कोलंबो में श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर

0: 503 रन बनाकर घोषित कर दिए। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अमरीका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अमरीका के वित्त मंत्री स्कॉट बिसेंट ने कहा कि नए प्रतिबंधों का उद्देश्य ईरान के राजस्व के सभी संभावित स्रोतों को रोकना है। उन्होंने अन्य देशों को ईरान के साथ आर्थिक संबंध न तोड़ने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप हमें सुन रही हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, बूंदों की रिमझिम, मिट्टी की सौंधी खुशबू और खिड़की से आती ठंडी ठंडी हवा। बारिश सिर्फ मौसम नहीं, अपने साथ यादों का एक पूरा मौसम लेकर आती है। और जब इन्हीं बूंदों में फिल्मी संगीत घुल जाए तो हर पल कुछ और ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में ये गीत जो है फिल्म मोहरा का, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। आनंद बख्शी के बोल है, विजू शाह का संगीत है।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
2: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com SHROTA RAIGARH यानी shrotarayagad@gmail.com।
4: श्रोताओं कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए जो है फिल्म खुद्दार का, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। राहत इंदौरी के बोल है और अनु मलिक का संगीत है।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदर्शन।
3: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
4: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
5: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
4: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
6: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
6: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
7: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
7: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।

0: काश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। 22 स्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
2: सखी सहेली
1: बॉम्बे टॉकीज और
3: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
4: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।

0: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
0: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
0: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
6: संदेश से पहले सुन रहे थे आप श्रोता साथियों गोपी किशन फिल्म का गीत, जिसे गाया था पूर्णिमा और कुमार सानू ने। समीर ने गीत को लिखा था, आनंद मिलिंद का संगीत था। अगला गीत सुनिए फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से, जिसे गाया है कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति ने। सुनिए फिल्म 1942 अ लव स्टोरी का ये गीत।

इस गीत के साथ हम भी चलते हैं क्योंकि कार्यक्रम समाप्त होने का समय आ चुका है। तो श्रोता साथियों, कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। आप हमें सुन रहे हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:35 हुए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम झरूखा।

सुप्रभात, नमस्कार श्रोता मित्रों, आप सभी से बातें करने के लिए नए विषय के साथ हाजिर हूँ आपकी रेडियो मित्र डिडनेश्वरी यादव। कार्यक्रम झरोखा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मित्रों, बाजरे की रोटी में मिट्टी का स्वाद, रागी में पोषण का मीठा संवाद, कोदो कुटकी में प्रकृति का उपहार और श्री अन्न से सजे स्वस्थ जीवन के विचार। मित्रों, हमारी धरती ने हमें अनगिनत अनाज दिए, लेकिन कुछ अनाज ऐसे हैं जिनमें हमारी परंपरा और पोषण दोनों की खुशबू बसी है, और उनमें से हैं बाजरा, ज्वार, रागी, कोदो, कुटकी और सांवा। इन्हीं पारंपरिक अनाजों को श्री अन्न यानी मिलेट्स कहा जाता है। बाजरे की गरम रोटी हो या रागी का पौष्टिक व्यंजन, कोदो का भात हो या कुटकी की खिचड़ी, इनका स्वाद हमें अपनी मिट्टी की जड़ों से जोड़ता है। श्री अन्न सिर्फ भोजन नहीं बल्कि अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ साथ रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ाते हैं। मित्रों, मिलेट्स यानी श्री अन्न का नियमित सेवन मधुमेह, मोटापा और हृदय संबंधी समस्याओं के खतरे को कम करने में सहायक माना जाता है। श्री अन्न के महत्व को देखकर ही भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी। श्री अन्न की खासियत सिर्फ इसका पोषण नहीं बल्कि विविधता भी है। अलग अलग क्षेत्रों में इनके अलग अलग रूपों में व्यंजन बनाए जाते हैं, यानी स्वाद भी, परंपरा भी और पोषण भी। जब आज हम सेहत के लिए नए विकल्प की तलाश में हैं, तो श्री अन्न से बेहतर विकल्प हो ही नहीं सकता। मित्रों, आइए हम सब मिलकर स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाएं, अपनी पारंपरिक खाद्य विरासत को अपनाकर, क्योंकि हमारे पूर्वज इन्हीं अनाजों को अपनाकर स्वस्थ जीवन जीते थे। क्योंकि स्वस्थ जीवन की शुरुआत करने के लिए महंगे इलाज या खाने की जरूरत नहीं होती है, जरूरत होती है संतुलित आहार की। श्री अन्न को अपने भोजन की थाली में जरूर शामिल करें, क्योंकि सेहत और स्वास्थ्य के लिए ही है श्री अन्न। इसलिए श्री अन्न अपनाकर स्वस्थ जीवन अपनाइए। साथियों, अब वक्त है गीत का।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जाँचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम झरोखा। ये कार्यक्रम संपन्न होता है, ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 7:45 हुए हैं, लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम बाजी मांदर। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति में सुनिए परसराम यदु और कोदूराम को।

0: भारत सरकार के नियमों के अनुसार 450 से अधिक उत्पाद जैसे ज्वेलरी, टॉयज, हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि ऐसे हैं जिनके निर्माण, आयात या सेल के लिए BIS मानक चिन्ह आवश्यक है। एक जागरूक ग्राहक बनिए, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते वक्त उस पर BIS मानक चिन्ह जरूर देखें और उस प्रोडक्ट की प्रामाणिकता जांचने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जयमाला
2: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
5: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज और
6: सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
7: मुझे याद सब है जरा जरा,
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
2: मन का सुकून, दिल की आरती,
3: सुरीली संदली।

0: परसराम यदू और एलिस जॉन के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर समाप्त होता है। एफएम बैंड पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 7:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी जानकारी। कुछ ही देर में आप सुनेंगे 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये समाचार रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समन्वित छत्तीसगढ़ी पत्रिका मोर भुइयां कार्यक्रम का अनुप्रसारण होगा आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे 9 बजे, 11 बजे और पुनः 12 बजे। ये कार्यक्रम रिले होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 9:55 पर और पुनः 11:55 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर की अगली कड़ी आप सुनेंगे सुबह 10 बजे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी आप सुनेंगे 10:30 पर।
1: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
0: शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट। प्रायोजक होंगे सीएफ वन विभाग सरगुजा। झलकी आप सुनेंगे 5:10 पर। युवाणी कार्यक्रम का वक्त होगा 5:30 पर, जिसमें आज की बात होगी नेत्रदान कले संकल्प, किसी के अंधेरे जीवन का बने विकल्प, राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। साथ ही होगा संगीत संध्या और चर्चा। चर्चा में आप सुनेंगे मोबाइल की लत से दूर होकर अपना करियर बनाएं। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे शाम 6 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। छत्तीसगढ़ी प्रादेशिक समाचार का वक्त होगा 6:10 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। ये समाचार आप सुन सकेंगे। फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 6:20 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी आप सुनेंगे 7:30 पर आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण होगा। गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8 बजे। समाचार संध्या का वक्त होगा 8:45 पर। ये समाचार आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विविध संगीत का आनंद आप ले पाएंगे रात्रि 10 बजे। पुराने फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यादें आप सुनेंगे 10:30 पर। हिंदी में समाचार रात्रि 11 बजे और 11:05 पर। अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 7.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संबंधी जानकारी। कार्यक्रम विवरण अब संपन्न होता है। FM 7.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से। 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। ये समाचार लेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेन देन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वार्ता करेंगे और कोलंबो में ध्रुव जुरेल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से अपनी पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में 2025 बैच के भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत में श्री मोदी ने पारंपरिक राजनयिक दायरों से आगे बढ़कर अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की वैश्विक भागीदारी को और मजबूत करने के लिए देश की सभ्यगत खूबियों को तकनीकी नवाचार और प्रभावी संचार के साथ जोड़े। प्रधानमंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों से यह भी कहा कि वे दुनिया के साथ देश की आर्थिक भागीदारी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाए। श्री मोदी ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि वे भारत की सभ्यगत, सांस्कृतिक और भौगोलिक खूबियों को दुनिया के सामने लाकर भारत को एक आकर्षक वैश्विक पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में काम करे। प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण और भारत दर्शन के अपने अनुभव प्रधानमंत्री मोदी से साझा किए। इस ग्रुप में भारतीय विदेश सेवा के 50 प्रशिक्षु अधिकारी शामिल थे जो देश भर के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। श्री शाह ने कल नई दिल्ली में 9वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री ने कहा कि विभिन्न राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए सूचनाओं का एआई आधारित विश्लेषण किया जाना चाहिए। सम्मेलन के पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई। इनमें आतंकवाद विरोधी चुनौतियों का सामना करने, बहु एजेंसी केंद्र के माध्यम से खुफिया जानकारी के एकीकरण, विश्लेषण और संचालन, मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक रणनीतिक दस्तावेज, अवैध प्रवासियों का पता लगाकर उन्हें निर्वासित करने, साइबर अपराध से निपटने के लिए एक नीतिगत ढांचा और पाकिस्तान द्वारा परोक्ष युद्ध को लेकर चर्चा की गई। दो दिन के इस सम्मेलन में देश भर से 850 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि लगभग 2,03,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने धार्मिक उत्पीड़न के कारण बांग्लादेश छोड़कर आए लोगों से नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल सरकार आपात स्थिति से निपटने के लिए अग्निवीरों की भर्ती कर नए आपदा मोचन बल अर्जुन वाहिनी का गठन कर रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ये बल सितंबर से कार्य करना शुरू कर देगा। अब तक सैनिक बोर्ड के माध्यम से 200 कर्मियों का चयन किया जा चुका है। इनमें से 100 कोलकाता, 50 पहाड़ी क्षेत्रों और 50 समुद्र में तैनात किए जाएंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली की रीढ़ बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं। इससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। महानिदेशालय की अधिसूचना में सरकार ने कुछ विशेष श्रेणियों के गेहूं और ड्यूरम गेहूं के निर्यात को प्रतिबंध से मुक्त घोषित कर दिया है। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग ने त्योहारों के इस मौसम में निरीक्षण गतिविधियों को तेज कर दिया है। विभाग ने ओखला सब्जी मंडी में निरीक्षण के दौरान 500 किलोग्राम से अधिक मिलावटी पनीर नष्ट कर दिया और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने पिछले 48 घंटों में दिल्ली के विभिन्न जिलों से खाद्य पदार्थों के 22 नमूने एकत्र किए और उन्हें विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा। भारतीय जनता पार्टी महासचिव बीएल संतोष ने पटियाला में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजाब में विधानसभा चुनाव अगले वर्ष के शुरू में होने हैं।
3: बीजेपी के संगठन महासचिव श्री संतोष की यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच फिर से गठबंधन की संभावना को लेकर चर्चा तेज हो गई थी। उन्होंने कहा कि पंजाब बदलाव के लिए तैयार है और भाजपा भी बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और राज्य में अगली सरकार बनाएगी। पंजाब के 2 दिन के दौरे पर आए श्री संतोष ने कल पटियाला और बठिंडा में संगठनात्मक बैठकें की। आज वे लुधियाना, जालंधर और अमृतसर में संगठनात्मक बैठकें करेंगे। इन बैठकों में पूरे पंजाब से कार्यकर्ता और नेता आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। आज शाम अमृतसर में भी राज्य के महासचिवों के साथ एक अलग बैठक संभावित है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: मिजोरम विधानसभा का 2 दिन का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। सत्र के दौरान कई विधायी और सरकारी कामकाज से संबंधित कई विषयों पर चर्चा होगी। 2 दिन का ये सत्र बुधवार को सम्पन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सर्वश्रेष्ठ लोगों की संगति में रहना और विद्वानों से सत्य पर चर्चा करना जीवन को समृद्ध बनाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज संस्कृत का एक उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जो लोग लोभ से मुक्त लोगों से मित्रता करते हैं वे कभी निराश नहीं होते। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कल 2 दिन की चीन यात्रा पर पेचिंग पहुंचे। डोभाल वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए एक पूर्व शर्त है। श्री डोभाल और श्री वांग दोनों ही सीमा वार्ता के लिए नामित विशेष प्रतिनिधि हैं। इसकी स्थापना 2003 में भारत चीन सीमा विवाद के व्यापक समाधान के लिए की गई थी। पिछले वर्ष अगस्त में चीन और भारत ने वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दों पर खुलकर और गहन विचार विमर्श किया और कई सामान्य सहमतियों पर पहुंचे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज कनाडा और अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय आर्थिक संबंध और वित्तीय संबंध मजबूत करना है और साझा वैश्विक आर्थिक प्राथमिकताओं पर सहयोग बढ़ाना है। टोरंटो में यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त और राष्ट्रीय राजस्व मंत्री के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद करेंगी। ये संवाद दोनों पक्षों को व्यापक आर्थिक विकास, वित्तीय क्षेत्र में सहयोग, द्विपक्षीय निवेश के अवसरों और साझा अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। केरलम में आज उत्थरादम उत्सव मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि 10 दिन तक चलने वाला ओणम उत्सव का अंतिम दिन है।
4: उत्थरादम सिर्फ तिरुओणम से पहले का दिन ही नहीं है बल्कि ये त्योहार की तैयारियों और आखिरी समय की खरीदारी करने का भी दिन है। पारंपरिक उत्थरादा पाशिल ने राज्य के बाजारों में रौनक ला दी है। घरों को रंग बिरंगे ओड़ा पूक्कलम फूलों की रंगोली से सजाया जा रहा है और साथ ही कल परोसे जाने वाले पारंपरिक ओड़ा साध्या ओणम के खास भोज की तैयारियां भी चल रही है। पूरे केरलम में कल से ओणम और पर्यटन सप्ताह समारोह शुरू हो गए हैं। तिरुवनंतपुरम और कई जिलों में इन समारोह के अंतर्गत कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कर्नाटक में आज गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में सक्रिय कम दबाव का असर राज्य के कई हिस्सों में महसूस किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
5: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अभी भी सक्रिय है और उड़ीसा में मौसम पर इसका असर बना हुआ है। आईएमडी का कहना है कि आज से बारिश कम हो जाएगी, लेकिन 30 अगस्त तक बारिश जारी रहने की उम्मीद है। आज सुबह तक 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 16 जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। बाढ़ से प्रभावित भद्रक और जाजपुर में लगातार बारिश और जल भराव के कारण एहतियात के तौर पर कई संवेदनशील स्कूल आज बंद रखे गए हैं। इस बीच अख्वापदा में बैतरणी नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालांकि जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है। हीराकुद बांध के और गेट खोले जाने के कारण महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वहीं जलका नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार में गंगा और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से पटना समेत कई जिलों में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है।
6: गंगा और इसकी सहायक नदियों के उफान से भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के राघोपुर में रिंग बांध टूटने से बाढ़ का पानी गांव में फैल गया है। बेगूसराय जिले के झमटिया गांव के पास भी रिंग बांध करीब 30 फीट टूटने से कई पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। जल संसाधन विभाग की टीम बांधों की मरम्मत में जुटी है। इस बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को पूरी तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इधर गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर पश्चिम बंगाल सरकार ने फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए हैं। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल एक वर्चुअल बैठक के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अधिकारियों के साथ उभरती प्राथमिकताओं और रणनीतियों पर 103 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी। जवाब में श्रीलंका ने पहली पारी में दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट पर 8 रन बना लिए थे। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के
7: श्री ने लिखा है, राजनीतिक दायरे से आगे बढ़े डिप्लोमेट, तैनाती वाले देशों में जमीनी स्तर पर मजबूत जुड़ाव का आह्वान किया। जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से लिखा है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेल दिवस से पहले युवाओं को करेंगे संबोधित, देश भर के युवा और खिलाड़ी अभियान में दिखेंगे एक साथ, IIT, IIM, NIT और अन्य संस्थान होंगे शामिल। दैनिक जागरण के अनुसार 20 राज्यों में फैला साइबर ठगी का नेटवर्क ध्वस्त, विदेश भेजते थे रकम, एक घंटे में 400 खातों में ट्रांसफर होती थी राशि। 27,850 करोड़ रुपए के

0: लेन देन के सबूत मिले। जनसत्ता की सुर्खी है, मॉस्को में पुतिन से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग पर हुई बात। पत्र के अनुसार भारत और रूस के कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय आर्थिक संबंध मजबूत करने और सहयोग बढ़ाने की दिशा में काम करने के कारण जयशंकर और पुतिन की बैठक महत्वपूर्ण है। अमर उजाला का शीर्षक है, कांदा एक्सप्रेस आज पहुंचेगी दिल्ली, कल से 35 रुपए किलो मिलेगा प्याज। दैनिक भास्कर के अनुसार मरीज के ट्यूमर से बनेगी वैक्सीन, शरीर खुद कैंसर कोशिकाएं ढूंढकर मारेगा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा राजनयिकों से पोस्टिंग वाले देशों में जमीनी स्तर पर जुड़ने और स्थानीय समुदायों के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ करने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी एजेंसियों को घुसपैठ रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। डिजिटल भुगतान क्रांति के अंतर्गत यूपीआई के 10 वर्ष पूरे, डिजिटल लेनदेन में लगभग 13,000 गुना वृद्धि। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटाए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब विधानसभा चुनावों में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और कोलंबो में ध्रुव जुरैल और देवदत्त पडिक्कल के शतक से श्रीलंका के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay, the headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon young diplomats to build strong grassroots level engagement in the countries of posting and deepen India's connection with local communities. Union Home Minister Amit Shah asks all security agencies to take strict measures against infiltration. UPI completes 10 years of digital payments revolution, clocks nearly 13,000-fold rise in transaction volume. Government lifts export restrictions on wheat, flour and related products. BJP to contest all 117 seats in upcoming Punjab Assembly elections. National Security Advisor Ajit Doval to hold special representative talks with Chinese Foreign Minister Wang Yi on India-China boundary issue in Beijing today. And in men's cricket, centuries by Dhruv Jurail and Devdutt Padikkal give India command over Sri Lanka in the second and final test in Colombo. Prime Minister Narendra Modi has called upon young diplomats to build strong grassroots level engagement in the countries of posting and deepen India's connection with local communities. Interacting with the officer trainees of the 2025 batch of Indian Foreign Service IFS at Seva Tirth, Mr. Modi encouraged the officer trainees to expand their networks beyond traditional diplomatic circles and deepen engagement with people. We have more from a correspondent.
3: Mr. Modi encouraged the officer trainees to combine India's civilizational strength with technology, innovation and effective communication to further strengthen India's global engagement. The Prime Minister also called upon the officer trainees to serve as catalytic agent for countries' economic engagement with the world. He also emphasized the importance of strengthening the digital presence of Indian missions. Mr. Modi urged the officer trainees to work towards making India a more attractive global tourism destination by showcasing its civilizational, cultural and geographical strength. He suggested leveraging the Bharat Kujani No India Quiz to generate greater interest in India among young people across the world and encourage the use of AI and gaming to make such initiatives more engaging. The group comprised 50 IFS officer trainees who come from different states and union territories across the country. With Anupam Mishra, Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
2: Union Home Minister Amit Shah has directed all agencies to take strict measures against infiltration. Inaugurating the 9th National Security Strategies Conference 2026 in New Delhi, Mr. Shah directed that an AI-based analysis of information available on multi-agency center MAC platforms should be done to create SOPs to counter various national security challenges. To effectively tackle terrorism and radicalization, Mr. Shah emphasized training for implementation of the Home Ministry's Prahar scheme, expediting trials by bringing back fugitives and utilizing trial in absentia provisions and undertaking a comprehensive and integrated approach while investigating UAPA cases. We have more from a correspondent.
4: On the first day of the conference, discussions focused on critical aspects of national security and document on narcotics control.

0: छत्तीसगढ़ी समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के ए अंक में आप सभी श्रोता साथी मन के स्वागत है। जय जोहार, राम राम महेंद्र साहू के तरफ ले। श्रोता साथी हो, आज के हमार क्रम है हमार संस्कृति हमार कलाकार। ये क्रम में हमन समय समय पर हमार छत्तीसगढ़ अंचल के जो लोकगीत कलाकार हैं एमल्ला आमंत्रित करथन और एमन छत्तीसगढ़ के लोक कला लोक संस्कृति ला बचाए के बगराए के काम करत हैं। गीत संगीत के माध्यम से, नाचा के माध्यम से, कई ठो अलग अलग विधा होते एकर माध्यम से अमन कला और संस्कृति ला नई पीढ़ी तक पहुँचाए के भी प्रयास करते हैं अपन अलग अलग जगह पर गीत संगीत के माध्यम से। एक ऐसे ही कलाकार हमार संग उपस्थित हैं आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियो में, श्री राम कुमार साहू जी। साहू जी, आपका स्वागत करत हैं आज के कार्यक्रम में। और जैसे कि हम श्रोता साथी मतलब बताएं कि आज हमारे साथ लोकगीत कलाकार हैं श्री राम कुमार साहू जी। एक गीत आप गुनगुना के हमारे श्रोता साथी मतलब सुना दे।
1: जय महामाय मु बाकी तोर अखरक गुरु बतालय तोर 64 जुगनी सुमरौ तोर तोरे भरोसा बल गर जाऊ तोर तोरे ले गुरु गुमाने तोर हाल बरस दई जावो तोर लख 84 देवता तोर डूमर के दीदी परे तीन तोर मुँह के वो मुँह मोनी तोर आखी के दई सत बहनी तोर सुमरौ संत समाजे तोर पैया लागौ मैया मैया तोर पैया लागौ दाई दाई तोर अरे जा दिन बोले मोर चंदैनी मोर बरी गिनाए हो। पहले नाचा होए
0: हाँ।
1: तो नाचा में मैं बचपना में सुना वो गाना सुनाता हूँ।
0: हाँ।
1: गुरु के बाना बांध लियो बाना जी गुरु के बाना बांध लियो बाना गुरु के बाना बांध लियो बाना जी गुरु के बाना बांध लियो बाना पहली सुमरनी जी चंदा सूरज को पहली सुमरनी जी चंदा सूरज को चंदा सूरज को जी चंदा सूरज को जग में कर उजियारा जी गुरु के बाना बांध लियो बाना जी गुरु के बाना बांध लियो बाना।
0: बहुत सुंदर राम कुमार जी, आप एक नाचा के एक जोकर गीत आप हमारे श्रोता साथी मदद सुनाया। श्रोता साथियों मैं बताऊं, हमारे साथ में राम कुमार साहू जी स्टूडियो में बैठीन हैं और सज धज के आए हैं, पजामा कुर्ता है, जैकेट भी पहने हैं और दो ठो हार भी पहने हैं आप।
1: जी जी,
0: का है ये हार मन?
1: ये हार एक तो रुपिया हरे,
0: हाँ,
1: दूसर सूता हरे।
0: अच्छा,
1: ये हमारे छत्तीसगढ़ के सिंगार दाई माई पुरुष मन के,
0: हाँ,
1: हमर छत्तीसगढ़ के वेशभूषा हरे।
0: अच्छा अच्छा, एला महिला और पुरुष दोनों
1: पहन
0: सकते हैं।
1: जी जी।
0: अच्छा, आप नाचा गीत से पहले आप बताया कि बचपन से ही आप गीत संगीत से जुड़े हैं और नाचा से जुड़े हैं।
1: जी जी सर।
0: कत का उम्र रही से आपके जब आप जुड़ा? तो
1: मैं नाचा तीसरी चौथी पढ़त रहे, मैं कम से कम 10-12 साल के रहे हूँ। मोर बाबूजी नाचा कलाकार रही से और मैं ओकरे साथ नाचा देखे पर जाऊँ, नाचा में वो नाचे बाबूजी है।
0: अच्छा।
1: और पहली नाचा में 7 ठन लोटा बहुक नाचे जनाना मन, और कोनो चक्कल बहुक नाचे, कोनो हौलल बहुक नाचे, वो पैत आकर्षित और पारंपरिक ढंग से नाचे। चक्कल बहुक चक्का में दिया जलत रहा है तो वो एक में जनाना गीत बहुत पुराना गीत हरे, ओला आपके बीच सुना दे
0: थोड़ा। सुना दे, लेकिन हमारे श्रोता साथी मन आपके बारे में ये नहीं जान पाए हैं कि आपके पैदाइश कहाँ हुई, कौन गांव के रहने वाला है आप?
1: हाँ, मैं दुर्ग जिला राम कुमार साहू और मोर जन्म 1 नवंबर 1965 के।
0: आप दुर्ग के ही रहे वाला?
1: हाँ, दुर्ग पोटिया कला गांव के।
0: पोटिया का, हाँ वही हम जानना चाहते हैं, पोटिया कला से।
1: पोटिया कला गांव के
0: जी, वो गीत आप सुनाए वाला रहा, वाला सुना दे।
1: पहली नाचा में जनाना मन जो गाए, लोटा बहो के चक्का बहो के जो नाचे, मेन जो जनाना है वो गाना में सुना था आप। मतलब आई हो नाने कुन का नहीं आया सोदा, नाने कुन का नहीं आया सोदा, नाने कुन का नहीं आया सोदा, नाने कुन का नहीं आया आई हो नाने कुन कन्हैया यशोदा, नाने कुन कन्हैया यशोदा, नाने कुन कन्हैया यशोदा, नाने कुन कन्हैया, नाने कुन कन्हैया यशोदा, अड़बड़ धूम मचाते या जड़ कही देनाया, समझा देनाया तुर बेटाला, समझा देनाया, समझा देनाया तुर बेटाला, दही लवो हर खाते मटकी ला फोर दे थे, दही लवो हर खाते मटकी ला वो हफोड़ थे, कर थे छेड़ा खानिया जमुरिया, कर थे मनुमानी, कर थे छेड़ा खानी जमुरिया, कर थे मनुमानी, नाने कुन कन्हैया यशोदा, अड़बड़ धूम मचा थे या जड़ कही देनाया, समझा देनाया तुरबे टाला।
0: जी बहुत बढ़िया प्रस्तुति है आपके राम कुमार जी, और हमारे श्रोता साथी मन आपके प्रस्तुति ल पसंद करत हो ही, और ये पता चल ही जब वो मन चिट्ठी लिखी तो
1: जी, जी, जी,
0: है ना। आप बताया कि बचपन से ही आप गीत संगीत से जुड़े हैं, नाचा से जुड़े हैं, आपके पिताजी ल देख देख के आप आगे बढ़े।
1: जी, जी,
0: जी। तो आपके पिताजी के कितना सहयोग मिली से आप लोग कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाए में?
1: आगे बढ़ाए में मोर पिताजी के बहुत सहयोग मिली बचपन से, और मोर बड़े पिताजी है ना तबला वादक नाचम बजाए,
0: अच्छा
1: तर साहू करके, और मोर पिताजी के नाम गणपत राम साहू री छोटे भाई रही से, तो ओकर से मोल बहुत, ओकर बाद में मोला पढ़े बर गयो मैं, तीसरी पढ़त रहा हूँ मैं
0: स्कूल में,
1: स्कूल में जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी हो, तो वहां भी मैं गीत गाऊ, तो गीत गाते गाते मैं पुरस्कार दे, तो आजकल जैसे सील्ड विल्ड देते वैसा टाइप में नहीं देते रहे, वो पाई प्लास्टिक के डब्बा या जैसे पढ़ाई करते तो ओला लैंप दे दे पढ़े वढ़े के, वो कॉपी पुस्तक पेन वगैरह पेंसिल ज्यादा दे, पेंसिल पेन,
0: लेकिन एक सम्मान राशि पुरस्कार हाँ। राशि कहीं ना कहीं आप आगू बढ़े बार वह प्रेरित करत रही से, है ना। जब आप 15 अगस्त 26 जनवरी या जब भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो स्कूल में तो आप में हर समय प्रतिभागी रहा, भाग लेवत रहा, तब तो आप पूरा गुरुजी मन और स्कूली बच्चा मन के बीच में, सबके बीच आप तो अपन पहचान बना ले रहा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इतना कि गीत एक ठन गाओ तो औगा औगा की चिल्लाए, बोले लड़का मन बोले स्कूल में भी मैडम मन मोल गवा दे, और वही दौरान जब मोल स्कूल में गाते हुए देखीस तो मोर गांव में एक गोविंद सांस्कृतिक कला मंच एक ठन नाटक खेले मन,
0: हाँ
1: जो सामाजिक मन

0: बरसात है, वो
1: अच्छा
0: एक नाटक में मैं काम कर रहा हूँ मैं,
1: जी
0: और ओमे गाय बर सीखे
1: अच्छा
0: वहां मुला।
1: आप नाटक भी में भी भाग लेते रहा
0: हाँ
1: और गीत भी गाते
0: हाँ
1: रहा।
0: नाटक में भी भाग ले हूँ,
1: हाँ
0: ओमे भी गीत गाऊ, और फिर ओकर बाद में मैं नाटक करते करते मैं गाना गात गात एक दिन शिव कुमार दीपक मोरे गांव खड़े, वो भी हास्य कलाकार है,
1: हाँ
0: ओकर नजर पड़ गए, तो लड़का बहुत जोरदार गाते हो, महू कलाकार हूँ, छत्तीसगढ़ के माने हुए।
1: कतक उम्र रही साहब को उस समय?
0: मैं वो पे इतने हाँ 12 साल के रहे हूँ,
1: 12 साल के। हाँ
0: तो वो हम ओला कहे कि थे केदार यादव से मिले, स्वर्गीय केदार यादव जी से,
1: जी
0: और ओला में गुरु मान लो कर नवा बिहान में बहुत कार्यक्रम दे, नवा
1: अच्छा
0: बिहान में गाना भी गाऊं, फिर वहीं से मैं डांस करे बार भी सीखे हूँ, नित्य कर रहा हूँ मैं।
1: अच्छा
0: हाँ
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ
1: तो आप गीत भी गाता, नाचा में भी भाग लेता
0: हाँ
1: और साथ में नाटक में भी भाग
0: हाँ जी
1: लेता।
0: जी अभिनय भी
1: का
0: करूँ,
1: संगीत और गीत के और नाटक के क्षेत्र में का बच गई से आपसे? है
0: ऐसे कुछ नहीं बचे, जब यही मन तो सब सार चीज हरे।
1: ना, मतलब सारे विधा से
0: हाँ
1: आप जुड़े
0: हाँ
1: हवा।
0: हाँ
1: जी
0: जब मैं 9वीं पढ़त रहे और पिताजी खत्म हो गए, तो घर में गरीबी आ गई, तो मैं 10वीं पढ़े के बाद पढ़ाई भी बंद कर दे, और मोर गुरुदेव के नजर पड़ गए, जन नीचे पढ़ाए थे है। वो सोनहा बिहान में लेगी दाऊ महासिंह चंद्राकर के साथ मोला संगत करी से, वो सोनहा बिहान में मैं सन 88 से लेके 96 तक सोनहा बिहान में दाऊ के, जब तक सोनहा बिहान चली तब तक मैं पूरा दाऊ के साथ काम करे हूँ, ममता
1: अच्छा,
0: दीदी
1: आज
0: रही।
1: आपको एक मौका मिले हैं
0: जी जी जी
1: स्वर्गीय केदार यादव जी ला सुरता करे के
0: जी जी
1: और दाऊ जी का सुरता
0: जी जी
1: करे
0: जी
1: के,
0: जी
1: ये
0: जी
1: दोनों जन कैसे आप याद करिया अभी?
0: जी जी
1: कैसे
0: गाना
1: कैसे याद करिए आप बतावा, कुछ उमन के साथ जो घटित घटना है, जो समय बिताया है, वो कैसे समय बीती साहब के?
0: वो
1: कुछ
0: समय
1: गीत संगीत जैसे आप सुनात रहा,
0: जी जी
1: कहीं कुछ गलती हो जाते रही, काय उमन तो कला पार की
0: जी
1: है,
0: जी जी जी
1: अगर मान लो कि आपसे कहीं कुछ ऊंच नीच हो जाते रही
0: जी
1: सोई,
0: जी जी जी
1: तो कुछ मार्गदर्शन मिले, साथ में कुछ हो सकत है, कुछ कड़ा भाषा में भी बोलत रही हुई,
0: जी जी जी
1: तो कैसे रही,
0: अतना
1: कैसे समय बीती साहब
0: उमन
1: के?
0: ऐसे मैंने सिखा है कि एक गाना ला 4 बेर 5 बेर जब तक याद नहीं हो है वो गाना, हाँ तब तक वो गाना गाना है, और सुर से ना बिल्कुल एती वेती नहीं होना है, वहां जाके वो सरल स्वभाव से, जिसे कई जगह डांटते वाड़ते वो सब नहीं, और ऊपर की गीत मन भी बहुत प्यारा प्यारा गीत मन रहा है, जैसे केदार भैया के गीत सुनाता हूँ मैं।
1: हाँ सुनावा।
0: मुरली बाजे ना रे गुइया, बसुरी बाजे ना, नंदलाल मनु मोहना के मिठू मुरली बाजे ना, नंदलाल मनु मोहना के मिठू मुरली बाजे ना, रस रचावे जमुना खड़ किसन कदम छैया, गुप गुवालिन नाच

0: ಮಗನು ರಾಣಿ ರಾಧಾನಾಚೆ ನಾ ನದುಲಾಲ ಮನು ಮೋಹನಕ್ಕೆ ಮಿಠು ಮುರುಳಿ ಬಾಜಿನ ನದುಲಾಲ ಮನು ಮೋಹನಕ್ಕೆ ಮಿಠು ಮುರುಳಿ ಬಾಜಿನ
1: ಅವ್ರು ಸುನಕ್ಕೆ ಮನ್ ಕರತ್ರೆ ಚಲ ಫಿರ್ ಕಭಿ ಸುನ್ಬೋ ಆಪ್ ಸೇ
0: ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್
1: ಅಭಿ ಆಪ್ ಮನ್ ಕೇದಾರ್ ಯಾದವ್ ಜಿ ಕೆ ಸುರ್ ತಕ ರಾ
0: ಜಿ
1: ದಾವ್ ಜಿ ಕೆ ಸುರ್ ತಕ
0: ಜಿ
1: ವೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಜೋ ಕಲಾಕಾರ ರಹೇನ್ ಹೈ
0: ಜಿ ಜಿ ಜಿ
1: ಲೋಕ ಕಲಾ ಲೋಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೆ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ರೇನು ಅವನ್ ಬಚಾಯ ವಾಲ ರೇನ್ ಅವಲ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ನಯಿ ಪೀಢಿ ತಕ್ ಪಹುಂಚಾಯ ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಭಿ ಕರತ್ ರೇನ್ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೇ
0: ಜಿ ಜಿ
1: ಹೈನಾ ಐಸೆ ಔರ್ ಕೋನ್ ಕೋನ್ ಕಲಾಕಾರ ರೇನ್ ವೋ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಜೆಮನ್ ಜಾನೆ ಜಾತೆ ಕಿ ಹಾ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಹಿ ಕಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲೇವನ್ ಬಚಾಯ ಕೆ ಔರ್ ಬಗರಾಯ ಕೆ ಕೋಶಿಶ ಕರತ್ ರೇನ್
0: ಬಹುತ್ ಉಮೆ ಸರ್ ಕೇದಾರ್ ಯಾದವ್ ಖುದ್ ಸೋನಾ ಅಭಿಯಾನ ಮೇ ಜಾತ ರಹಿ ಸೇ ಚಂದೈನಿ ಗೋಂದಮ್ ಜಾತ ರಹಿ ಸೇ ಓಕರ್ ಯಾಂಕ್ ಭಾಭಿ ಜಿ ಹೇ ಸಾಧನಾ ಯಾದವ್ ಜಿ ओ भी जात रही से और वो पै बड़े बड़े साहित्यकार मतलब बुला के गाना मतलब गवाए माने रचना करे गवाए था मतलब गवाए जैसे बड़े बड़े केदार भैया मिथिलेश भैया कुलेश्वर ताम्रकार जी लक्ष्मण मस्तूरिया एमन सब गाए मस्तूरिया जी भी रचनाकार रही लेकिन अब के जैसे कवि है ते मन लिख दी ही और डायरेक्ट गवा देते वो पैत उसन नहीं रही से दाऊ जी है जैसे गाना लिखवातीस तो बोला दस जन ला पढ़ाए गाना बने नहीं है और काकर से गवाओ की तीन चार झन लगवाए जेकर से गाना अच्छा लगती वही गवाए
1: तो ऐसे में तो जो गायक कलाकार रहे
0: हाँ
1: ओमन में भी एक तरह से आपसी जरा हमन कंपटीशन कथन है ना कि मैं अच्छा गाऊं मोला मौका मिल जाए ऐसा मन में आत रही सो ही
0: नहीं
1: हाँ
0: गाना सफा को मिल गवाए
1: हाँ
0: लेकिन आवाज में कनी सुनना चाहे वो सफो कलाकार बराबर प्रेम करे वो
1: जो भाव से लिखे हैं
0: जी जी।
1: वो भाव कौन कलाकार के हाँ। आवाज में आते हैं
0: और रचनाकार घलो लिख देतीस ना
1: हाँ।
0: तहु ला नहीं और दूसरा साहित्यकार ला यदि बने लिखा है नहीं लिखा है कहीं सुधर सकते का एक सेती पहली जो गाना है वो मन छांदे पानी तात भात कस लगते एकरे कारण लगते पहली जो पुराना गीत है मैं लोरी चंदम दाऊ महासिंह चंद्राकर संजाओ तो पी चंदैनी में कथा गायन गाऊं लोरी चंदक पाठ कराऊं लोरी गीत जो रहा है वो अभिनय करे बर मिले बहुत सीखे बर मिलिस मोला और अच्छा अच्छा संस्था मिलिस में तीजन बाई के साथ भी गयो पंडवानी गायिका तीजन बाई जो रही से ओकर साथ में अंडबार निकोबार दिल्ली भोपाल भारत भवन रविन्द्र भवन यहाँ में कार्यक्रम दे हूँ तो ओकर जो ये रही छत्तीसगढ़ ही पंडवानी नहीं गायकी जग जान तो वहां ना ये हो कि कर्मा छत्तीसगढ़ के अपन मेन गीत कर्मा गीत हरे तो कर्मा गीत मतलब आठ लड़का आठ लड़की लेके डांस करके वहां कोई म्यूजिक नहीं दू जन मादर वाले और नित्य करैया लड़का और गाना गवैया लड़का मन बस जान आठ लड़का आठ लड़की और गाना गवैया और गान वहां
1: तो
0: और नाचन भी
1: आठ लड़का में आप भी रहा
0: हाँ मैं भी रहा
1: अच्छा
0: जिम दिल्ली अंडमान निकोबार भोपाल उदयपुर सिरपग्राम जो राजस्थान में बने वहाँ
1: आप विदुषी तीजन बाई जी के साथ में कई जगह गए
0: कई जगह मनमोहन करके
1: आज दुर्भाग्य से वो आज हमारे बीच नहीं है
0: जी जी जी
1: अब आप बहुत लंबा समय जगह जगह आप उनका साथ बिताया है कार्यक्रम में ये मौका में आप उनके कैसे सुरता करिए तीजन बाई जी के
0: तीजन बाई एक नई पढ़े लिखे रही इस पर भी से एक ऊंचाई छू इस कलाकारी में और अतना जोरदार पंडवानी का है पंडवानी सफो कहा थे लेकिन तीजन बाई जो कथा बताए के जो शैली रही से जो तमूरा ला माने गदा बना देना तमूरल धनुष बना देना वो जो कपाली शैली में जो बोले वो अलग रही छांदे पानी कस बोले सर वो
1: लेकिन एक चीज है कि वो एक अच्छा काम करके गिन है कि आज उनकर बहुत शिष्य है जीवन उनकर जो एक कला परंपरा है आगे बढ़ा के कोशिश करत तो कर्मा गीत के आप चर्चा करत
0: जी जी जी
1: तो दो चार लाइन सुने
0: एक लाइन सुना दे तो सर
1: सुनाओ
0: चल जो ही जा बुनिया बजार चल केरा चर केरा बारी मागोर ले भी चल जो ही जा बुनिया बजार चल केरा चर केरा बारी मागोर ले भी लाली रे लुगुरा के हरियर छोर हो लाली रे लुगुरा के हरियर छोर तुर माया मोर माया लाए के संग जो चल केरा बारी मा गोर लेबी चल जो ही जा बोनिया बा जा चल केरा बारी मा अगोर लेबी।
1: आप बचपन से आप जुड़े हैं कलाकारी
0: जी
1: से,
0: जी सर जी
1: है ना, और आप कला के हर विधा से आप परिचित
0: जी
1: हावा।
0: जी सर।
1: अब आपके अभी जो उम्र है एकर हिसाब ले
0: जी जी
1: आप लोग का लगते कि मोला और कुछ अभी सीखना है?
0: अभी तो बहुत कुछ सीखना, कलाकारी एक ऐसी चीज
1: हाँ,
0: हरे जो कतको शिक्षा कमी रही। आज भी हम अनहा कतको अच्छा गाथन की कथे लेकिन औ गाय के सुधरे के आवाज अच्छा निकले, अच्छा अच्छा गाना गान, ये आज भी चाहता हूँ मैं कि कोई मेर टूटी मत होए और ज्यादा माने अच्छा से गान ज्यादा। लोग तो ताली बजाते, आज हम सबले बड़े पुरस्कार हम ताली ही समझतन, ताली बजा दी चार जन आदमी तो अच्छा लगते।
1: राम कुमार जी आपसे हमार बातचीत होते में आप अपन स्कूल के चर्चा करो।
0: जी जी जी।
1: जब आप स्कूल पढ़त रहा 15 अगस्त 26 जनवरी में गीत गावा
0: जी जी जी,
1: और साथ ही साथ आप नाचा गम्मत गीत संगीत सब जगह जुड़े हवा।
0: जी जी जी।
1: और आपके पिताजी के भी योगदान है आप आगे बढ़ाए में, आपके बड़े बाबूजी के जिला हम बड़े बाबा कथन
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: उनकर भी
0: जी जी
1: है
0: जी।
1: एक और आपके साथी हैं, आपके जीवन साथी, उनकर कितना योगदान है आप लोग कला के क्षेत्र में आगे बढ़ाए में, कुछ सहयोग है उनकर?
0: है, मोर साथ मोर पत्नी है, वो भी अच्छा गाना गाते,
1: वो भी कलाकार है,
0: वो भी कलाकार है।
1: अच्छा,
0: बहुत बढ़िया गाते वो है।
1: तो दोनों कलाकार के पहचान, दोनों कलाकार के पहचान मिलजुल कैसे हुई?
0: मिलजुल कार्यक्रम में जात रहूं मैं, वो डबरी बनाओ योजना के अंतर्गत कार्यक्रम कुष्ठ उन्मूलन नशा उन्मूलन
1: सरकारी
0: कार्यक्रम में
1: हाँ।
0: तो कॉलेज में गीत गात रही से, तो मोला कॉलेज में कार्यक्रम देना रही और वहां गए तो बहुत अच्छा गाय।
1: अच्छा,
0: और पित मोल शादी करना रही से और गायिका सन हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि
1: जी जी जी
0: तो मैं ओकरे साथ शादी कर लूं सर।
1: जी शादी कर ले, ओकर बात आपन दोनों जन के संगीत यात्रा कैसे आगे बढ़ा थे?
0: आकाशवाणी में गाँव हूँ सर, आकाशवाणी भी रेडियो से भी मोर गाना आते, दोनों कोई गाथन जिल गिरवर दास मानिकपुरी अजय वस्ताज मन लिखे हवा, एक प्रेरणा गीत है जो स्वर्गीय गिरवर दास मानिकपुरी के लिखे गीत है।
1: अच्छा नहीं, मैं वो तो ठीक है
0: जी,
1: लेकिन मैं आपसे ना आपकी जो पत्नी है
0: जी जी
1: उनकर खातिर कोई प्रेम गीत ताब गाय हो या
0: हाओ
1: तो वो गीत ला सुना देवा।
0: जी जी जी दोनों कोई गान। काला जोही करियो राम सोचे ना समझे वहां पटू परियो, काला जोही करियो राम सोचे ना समझे वहां पटू परियो।

0: तुहावन जिंदगी के साथी ना, काला जूही करियो राम। सोचे ना समझे हाँ पटू परियो, काला जूही करियो राम। सोचे ना समझे हाँ पटू परियो।
1: जी, ये आप बहुत अच्छा गीत
0: ये
1: आप सुना।
0: ददरिया गीत है,
1: हाँ,
0: और एक प्रेरणा गीत भी गाँव में आकाशवाणी से होकर साथ।
1: अच्छा,
0: वो प्रेरणा गीत इतना बढ़िया गीत है, गिरवर दास के लिखल हरे। जिल
1: हाँ
0: हमन जन जन तक नशा उन्मूलन में गान, तो सबसे शुरू गीत वही रहा है। तो वो गीत भी एक कनी गुनगुना देता हूँ मैं।
1: हाँ गुनगुनाओ।
0: चली यही से किरिया खाबो संगी, गाँव ले सरग बनाबो। चली यही से किरिया खाबो संगी, गाँव ले सरग बनाबो। ज्ञान गंगा जन चेतना के सोरु संदेश बताबो। ज्ञान गंगा जन चेतना के सोरु संदेश बताबो। चली यही से किरिया खाबो संगी, गाँव ल सरग बनाबो। दाही जिला खूंदन नहीं दे मन हमर गाँव के मेड़ो। दाही जिला खूंदन नहीं दे मन हमर गाँव के मेड़ो। चले ऐसे किरिया खाबो संगी, गाँव ल सरग बनाबो। चले ऐसे किरिया खाबो संगी, गाँव ल सरग बनाबो। गाँव ल सरग बनाबो।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रेरणा गीत है ये
0: जी
1: राम
0: जी
1: कुमार जी।
0: जी जी जी
1: और
0: जी
1: हम तो ये शुभकामना देवो आप ला कि आप दोनों मिल के ऐसे ही समाज ला,
0: जी जी
1: देश ला,
0: जी जी
1: श्रोता मल्ला आप प्रेरित करा
0: जी
1: गीत के माध्यम से कि जो समाज में जो बुराई है, कई
0: जी
1: तरह की बुराई
0: जी
1: है,
0: जी सर
1: वो बुराई से हमारा समाज है
0: जी जी
1: मुक्त हो सके। बहुत
0: जी सर
1: अच्छा प्रयास है। और जब आप दोनों एक साथ कलाकार हो गया,
0: जी जी जी
1: एकर बाद आप मन के प्रस्तुति
0: जी जी
1: कहाँ कहाँ हो से?
0: मोर प्रस्तुति भोरमदेव महोत्सव है दुर्ग में, कई जगह गांव गांव में, और जहाँ जहाँ महोत्सव होते वहाँ मोला बुलाते सर। बिलासपुर महोत्सव है, मैं हाँ जुनून होने कारण एक सांस्कृतिक पार्टी चलाए। पहली दाऊ जी मन के पार्टी में जाते रहे, केदार यादव पार्टी में। केदार भैया नहीं रहीस, दाऊ जी नहीं रहीस, और दीदी मन के भी प्रोग्राम में गए, जैसे ममता चंद्राकर जी है, ऐसे बड़कन प्रोग्राम मन में गए हूँ। लेकिन ओकर जुनून हो एक बाद में नव अभियान में, अब मोला गायक की इच्छा है, अब मोला इच्छा पूरा करना है, तो मैं खुद पार्टी खोलूँ। जिम
1: अच्छा।
0: काया खंडी भजन, निर्गुण भजन मन लगाता हूँ, पारंपरिक गीत मन लगाता हूँ, जिसे बसदेवा गीत है, बांस गीत है, पारंपरिक मन ला। जे आज नंदाज जावत है, आज बड़ा दुख के बात है, कोई कलाकार मन हा पंडवानी भरथरी सुने बर कम करते। लोक संगीत ला जिसे नाचा थे, लड़की मन हा लड़का मन हा ओला ज्यादा पसंद करते। मैं सबसे ज्यादा आज भी पसंद करता हूँ, तब मैं नाचल पसंद करता हूँ, नाचा लेकर से ती पसंद करता हूँ। आजकल लड़की मन रिंगी चिंगी नाचा था अच्छा करते, महिला मन भी नाचा था वो अच्छा करते। लेकिन जो पुरुष मन जो महिला बन के नाचते, ओला जो देखता हूँ ना, चक्कल भोक नाचा थे, हौलल भोक नाचा थे, तू औ सात ठन लोटल भोक नाचे। मोर गाँव के महंत रहा है, जो अपन जवानम
1: जी
0: जब नचकारिन बने वो नाचे, तो इतना बढ़िया लगे। वो दू झन जोकड़ आए पेटला पेटला, जे मन बगल बगल में
1: हाँ
0: ओकर काय की थे, छोटे छोटे रहा है, ओकर
1: हाँ
0: दोनों का खान मल्ला धर धर के नाचे जिसे, तो इतना आनंद आए वो जवान हम नाचा देखन। तो आज भी बस देवा मन आते तो वो बस देवा गीत हमला इतना बढ़िया लगते, आशीष दे के जाते वो बस देवा मन भी नंदा थे।
1: तो मैं आपसे एक निवेदन ये करत रहे हैं कि
0: जी जी
1: बसदेवन जैसे आशीष दे के जाते हैं,
0: जी जी जी
1: तो ऐसे हमन कार्यक्रम ले विदा लेबो, वैसे ओकर पहली एक बसदेवा गीत आप सुना देवा आशीष के रूप में, फिर आपसे एक और आपकी उपलब्धि के बारे में चर्चा
0: जी
1: करूं।
0: जी जी
1: तो एक
0: सर।
1: बसदेवा गीत आप सुना देवा।
0: जय हो गौटनिन, जय होए तोरु धर्मी चोला दयालु मोरु। जय गंगान, जय हो गौटनिन, जय होए तोरु धर्मी चोला दयालु मोरु। जय गंगान, तोरु बुतावो छिन भर के ब्रह्मा बुतावो, दिन भर के लेना दाई करना दान, बांसुदेव जाही चारे दुआर। जय गंगान, जय हो गौटनिन, जय होए तोरु धर्मी चोला दयालु मोरु। जय गंगान, बड़ी बिहनियल दे दे दान, ओला बैकुंड भेजे भगवान, जय गंगान औ जय हो गौटनिन, जय होए तोर, धर्मी चोला दयालु मोर, जय गंगान।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ये गीत। अब तो मुझे लगता है धीरे धीरे नंदा जाओ।
0: गवैया नहीं है सर,
1: गवैया नहीं है, लेकिन आप जैसे कलाकार मन,
0: जी जी,
1: नई पीढ़ी के जो नवोदित कलाकार हैं, वो मतलब तैयार करिया, तो हो सकत है आए वाला समय में जितना भी नंदाज जात हैं, चाहे वो लोक वाद्य है, लोक गायन है, लोक नृत्य है, वाला हमन बचा पाबो। राम कुमार जी,
0: जी
1: बहुत कम उम्र से आप कला के क्षेत्र से आप जुड़े हवा, अपन पूरा जीवन कला ला आप समर्पित कर दे हवा, है ना, तो इतना समर्पण आप करे हवा, तो कुछ कहीं से आप ला आगे और अच्छा काम करे खातिर प्रोत्साहन मिली से
0: मिले, सम्मान मिले है, जैसे धरती पुत्र सम्मान, भूया सम्मान, ये मिले हवे, और अन्य जगह से भी कई ठन समाज वाले मन भी बुला बुला के सम्मान देते। बस यही है कि अहबर में प्रयास करता हूँ जो राज्य अलंकार के लिए, और उनमें भी बहुत कलाकार है, कर कारण मोल नहीं मिल पाए, मैं खुद संतुष्टि हूँ, एक दिन जरूर मिल ही हासिल करूँ।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: मोर प्रयास है सर, मोल कोई दुखी नहीं है
1: जी, आशा से ही उम्मीद बने रहते
0: जी जी जी,
1: और हम उम्मीद करबो कि आए वाला समय में
0: बिल्कुल
1: आपला जो राज्य अलंकरण सम्मान मिली, हम शुभकामना देवत हैं आपला। आप कला के क्षेत्र में ऐसे समर्पित रहा, और एक सवाल वो आपसे करना रही से कि जो नई पीढ़ी के जो लड़का हैं, एमन कुछ आपके पास आते हैं कि हम मल्ला ये रास्ता में आगे बढ़ावा करके?
0: आते आते बहुत लड़का आते, मैं कई ठन स्कूल में जाता हूँ ना, तो मैं यहाँ आजकल के गीत नहीं गाऊ, काकरू लिखेल गीत ला नहीं गाऊ, लेकिन पारंपरिक गीत लगाता हूँ ना, तो बहुत लड़का मन तैयार हो जाते, हम सीखबो सीखबो की के।
1: राम कुमार जी, आज आप आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियो में आया, और आपसे आपके कला यात्रा के बारे में हम चर्चा करें
0: जी,
1: और अभी भी आपके मन में काफी ऊर्जा है
0: जी जी सर,
1: लोक कला
0: जी जी,
1: लोक संस्कृति आगे बढ़ाए के, हम तो यही उम्मीद करबो कि आए वाला समय में आपके नाम पूरा छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य प्रदेश में भी लोग आप ले जाने।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर,
1: ये शुभकामना आप ला देथन। आज आप आकाशवाणी रायपुर के स्टूडियो में आया, एक खातिर आप ला बहुत बहुत धन्यवाद देथन। श्रोता साथियों, अभी हमन हमर संस्कृति हमर कलाकार ये क्रम में दुर्ग के वरिष्ठ लोकगीत कलाकार राम कुमार साहू जी से हमन उनकर लोक यात्रा के बारे में चर्चा करत रहे। समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भुइया के आज के ये अंकले मोला यही विदा देवा। जय जोहार, राम राम।

छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक कार्यक्रम मोर भुइयां अभी आप सुन रहे थे। संपादन और प्रस्तुति महेंद्र साहू की थी। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में।

चित्रलोक कार्यक्रम के में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आइए सुनते हैं ओम शांति ओम फिल्म से गाना। केके की आवाज में विशाल ददलानी के बोल और संगीत है विशाल शेखर का।

0: आमंत्रित कलाकार हैं गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना सुबह और शाम 6:45 पर सिर्फ विविध भारती पर।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं मर्डर थ्री, इस फिल्म से शफकत अमानत अली की आवाज में सईद कादरी के बोल और प्रीतम का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए, चांदनी चौक टू चाइना इस फिल्म से। शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल की आवाजों में रजत अरोड़ा के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

गोरी तेरे प्यार में। इस फिल्म से आप सुन रहे हैं कमाल खान और नीति मोहन की आवाज में गाना, कौसर मुनीर के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

ये है देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित पर।

बला की खूबसूरती और सुरीले स्वर की स्वामिनी विजयता पंडित का संबंध कलाकारों के एक ऐसे नामी घराने से है जिसके सदस्यों में शामिल हैं देश के प्रसिद्ध गायक, गायिकाएं, अभिनेत्रियां और संगीतकार। आपके पिता पंडित प्रताप नारायण शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित मेवाती घराने के मूर्धन्य गायक थे, जिनके दो और भाई पंडित मणिराम और पंडित जसराज की गिनती भी शास्त्रीय संगीत के नामचीन कलाकारों में होती है। संगीत पंडित प्रताप नारायण के बच्चों को विरासत में मिला और बच्चों ने पिता के मार्गदर्शन और अपनी साधना से उसे और भी संवारा और भी निखारा।

फिल्म जगत में पंडित प्रताप नारायण का परिवार शायद अपने आप में इकलौता और ऐसा अनूठा परिवार है जिसमें दो दो अभिनेत्री गायिका हुई, सुलक्षणा पंडित और उनकी छोटी बहन अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित।

विजेता जी चार बहनों और तीन भाइयों के अपने परिवार की सबसे छोटी और सबकी दुलारी सदस्य हैं। विजेता जी के तीन भाई फिल्म संगीत से संबंधित हैं। परिवार में बड़े भाई मंधीर और उनसे छोटे जतिन ने जोड़ी बनाकर संगीत निर्देशन की शुरुआत की। फिल्म थी सन 1982 में आई दिल ही दिल में। इसी फिल्म का एक गीत रफी साहब के साथ गाया विजेता पंडित ने।

विजेता जी के भाई जतिन पंडित ने बाद में अपने छोटे भाई ललित पंडित के साथ जोड़ी बनाकर कामयाबी और शोहरत का सुनहरा अध्याय लिखा। संगीतकार भाइयों की जोड़ी के संगीत निर्देशन में विजेता जी ने गाया ये गीत।

0: मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी संगीत का नॉलेज रखती थी, वो भजन बहुत अच्छा गाती थी और जब भी घर में कोई पूजा हुई तो वो हारमोनियम भी थोड़ा बहुत बजाकर भजन गाती थी और बहुत अच्छा गाती थी। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मैं सोचती हूँ मेरी माँ थी, जो हमेशा चाहती थी कि मैं गाना गाऊं और मैं गाना सीखूं। तो क्या है कि माँ बाप का जब तक संयोग नहीं होता, उनका एक प्रेशर नहीं होता, उनकी इच्छाएं नहीं होती कि हमारे बच्चे बने, तब तक शायद मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कि इंसान इस हद तक कोई भी चीज को सीखे।
1: बचपन में विजेता जी और उनके अन्य भाई बहनों ने उस दौर की अनेक फिल्मों के गीतों में अपना स्वर दिया था।
2: ए मुन्नी,

0: 1980-81 के आसपास फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव को बतौर अभिनेता स्थापित करने के लिए फिल्म बना रहे थे लव स्टोरी, और इसके लिए उन्हें एक नई और खूबसूरत अभिनेत्री की तलाश थी, और ये तलाश समाप्त हुई विजेता पंडित पर।
1: ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है।
0: फिल्म लव स्टोरी ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और विजेता पंडित रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची।

अभिनेत्री के रूप में विजेता पंडित की चर्चित फिल्में हैं मोहब्बत, वफादार, प्यार का तूफान, जीते हैं शान से, दीवाना तेरे नाम का, जलजला, आग के शोले, नाग नागिन, मिट जाएंगे मिटाने वाले, कसम धंधे की, अफसर, फूल और इंसान, मिसाल, वफा और बांग्ला फिल्म आमार सोंगी।

प्रतिभाशाली अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित ने कई फिल्मों के लिए पार्श्व गायन भी किया। सुनिए उनके गाए कुछ गीतों के अंश। फिल्म लव एट टाइम्स स्क्वायर।

और अब जो जीता वही सिकंदर फिल्म का वो ट्रैक जो पहले विजेता पंडित और उदित नारायण की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था।

विजेता पंडित का विवाह हुआ सुप्रसिद्ध संगीतकार आदेश श्रीवास्तव के साथ। उनके दो बेटे हैं, अनिवेश श्रीवास्तव और अवितेश श्रीवास्तव। संगीतकार पति आदेश जी के संगीत निर्देशन में भी कुछ फिल्मों के लिए विजेता जी ने पार्श्व गायन किया।

0: लोक संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम में कलाकार थे महासिंह चंद्राकर और उनके साथी। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने को है हमारा अगला प्रसारण थोड़ी देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री आज डोंडी लोहारा में आयोजित समारोह में महतारी वंदन योजना की 31वीं किश्त की राशि अंतरित करेंगे। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में विशेषज्ञों के सुझाव प्राप्त करने 27 अगस्त को रायपुर में होगी बैठक। और मौसम विभाग ने उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों के लिए आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बालोद जिले के डोंडी लोहारा में आयोजित बिहान दीदी और स्व सहायता समूह सम्मान समारोह में महतारी वंदन योजना की 31वीं किश्त की राशि अंतरित करेंगे। इस दौरान प्रदेश की 67 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 631 करोड़ 38 लाख रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। यह राशि सितंबर महीने की किश्त है, जिसे मुख्यमंत्री रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को सौगात के रूप में समय से पहले प्रदान करेंगे। योजना के तहत अब तक 30 किश्तों में महिलाओं को 19,444 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि दी जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने शासन द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति की उपस्थिति में 27 अगस्त को राजधानी रायपुर में सिविल लाइन्स स्थित न्यू सर्किट हाउस में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें आयोग, निगम, मंडल, विभिन्न सामाजिक संगठनों, समाज प्रमुखों, विकास प्राधिकरणों के पदाधिकारियों, प्रबुद्ध नागरिक, जनप्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल हैं। बैठक में समान नागरिक संहिता के विभिन्न प्रावधानों, सामाजिक प्रभावों और व्यवहारिक पहलुओं पर गहराई से चर्चा की जाएगी। विस्तृत चर्चा और सुझाव प्राप्त करने के लिए विभिन्न समूह को पृथक से भी आमंत्रित किया जाएगा। लोग अपने सुझाव ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 में शामिल विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। मंडल ने परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को निर्धारित पात्रता के अनुसार स्कूलों में प्रवेश देने के निर्देश जारी किए हैं। विद्यार्थियों को प्रवेश लेने के लिए 27 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया है। इस संबंध में मंडल ने सभी स्कूलों के प्राचार्यों को आदेश जारी किया है। राजधानी रायपुर में आज से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों की प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय बैठक होगी। इस बैठक में संगठन के कामकाज की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद रहेंगे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 111 उप अभियंताओं की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इनमें 101 सिविल और 10 विद्युत और यांत्रिक अभियंता शामिल हैं। नियुक्ति के साथ ही सभी चयनित अभियंताओं की पदस्थापना भी कर दी गई है। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर संबंधित पदस्थापना कार्यालय में पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव और रणजी खिलाड़ी राजेश दवे को आगामी महिला टी20 एशिया कप 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के कोरिया, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, सूरजपुर, बलरामपुर में ऑरेंज अलर्ट, जबकि सरगुजा, जशपुर, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही और बिलासपुर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश का दौर अगले 2 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों पर लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दिए हैं, जिससे आटा, मैदा, सूजी और अन्य गेहूं आधारित उत्पादों के विदेशी निर्यात का रास्ता खुल गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने गेहूं के आटे और संबंधित उत्पादों के लिए निर्यात नीति में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री आज डोंडी लोहारा में आयोजित समारोह में महतारी वंदन योजना की 31वीं किश्त की राशि अंतरित करेंगे। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में विशेषज्ञों के सुझाव प्राप्त करने 27 अगस्त को रायपुर में होगी बैठक। और मौसम विभाग ने उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों के लिए आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 10 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

0: छत्तीसगढ़ में धान की लहलहाती फसलों पर जब सावन उतर आता है तो धरती पर हरियाली की चादर से बिछ जाती है। कुछ ऐसा ही नजारा तब होता है जब खेतों पर भंवरों की तरह उड़ते हैं छोटे छोटे ड्रोन। इन ड्रोनों से खेत पर खाद का छिड़काव किया जाता है और इन्हें उड़ाने वाले हाथ होते हैं ड्रोन दीदियों के। किसान अपनी खेती के रकबे के अनुपात में खाद छिड़काव की मात्रा तय करते हैं और फिर इनके छिड़काव का जिम्मा सौंप देते हैं प्रशिक्षित ड्रोन दीदी को। छत्तीसगढ़ में नमो ड्रोन दीदी योजना ने महिला स्वावलंबन को एक नई दिशा प्रदान की है। सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत महिला स्व सहायता समूहों की महिलाओं को आधुनिक कृषि ड्रोन उड़ाने की 15 दिन की विशेष ट्रेनिंग देती है और ड्रोन खरीदने के लिए 8 लाख तक या ड्रोन की कीमत पर 80% की सब्सिडी। ड्रोन दीदी बनने की प्रक्रिया भी बेहद आसान है।
1: मेरा नाम दिनेश गांधी है। मैं इफ्को राज्य कला रायपुर में उप प्रबंधक विपणन के पद पर पदस्थ हूँ और आज हम लोग बात कर रहे हैं नमो ड्रोन दीदी के विषय में कि किस तरह से नमो ड्रोन दीदी का चयन होता है और किस तरह से वो ड्रोन को लेके काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ड्रोन दीदी के लिए क्या क्राइटेरिया होती है कि कैसे वो ड्रोन दीदी बनती है महिलाएं। तो ये इफ्को के द्वारा चलाई जा रही एक योजना है जिसमें हम लोग NRLM जो होती है स्वयं सहायता समूह उससे जुड़ी हुई जो महिलाएं होती हैं उनको इसमें प्राथमिकता देते हैं और उन्हीं महिलाओं को लेते हैं जो NRLM से जुड़ी हुई हो। दूसरा, उनका 12वीं पास होना मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है। साथ ही वो काम करने की इच्छुक हो क्योंकि यह काम जो है वो किसानों से और खेत से संबंधित है तो उन्हें ड्रोन का कार्य जो है ड्रोन पायलट का वो खेत में जाके करना होता है तो उनकी इच्छा शक्ति होनी जरूरी है। इसके अलावा जब हम उनको चयन करते हैं तो ये भी देखते हैं कि वो 15 दिन के लिए उन्हें माधोराव इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स ग्वालियर में वहाँ ट्रेनिंग लेनी होती है ड्रोन पायलट की जिसके बाद ही उन्हें ड्रोन उपलब्ध कराया जाता है। तो ये थोड़ा कठिन ट्रेनिंग होता है और उसके एग्जाम में परीक्षा में पास होने के बाद ही उनको ड्रोन पायलट का सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। तो इसमें मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि वह महिला उस परीक्षा को पास करने में सक्षम है कि नहीं है या उस ट्रेनिंग को पास करने में सक्षम है या नहीं। अगर वो ट्रेनिंग पास कर लेती हैं ड्रोन पायलट का लाइसेंस उनको मिल जाता है उसके बाद में 2 दिन का फील्ड में खेत में हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग होती है ड्रोन को लेके। उस ट्रेनिंग के बाद ही उनको इफ्को के द्वारा ड्रोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल उपलब्ध कराई जाती है ताकि वो किसानों के खेत में जाके ड्रोन से नैनो उर्वरक और कीटनाशक दवाइयां आदि का छिड़काव कर सके और किसानों को इसके लिए सुविधा मिल सके। तो ये हो गया उसमें क्या क्राइटेरिया है और कैसे वो ट्रेनिंग ले सकती है महिलाएं। इसके अलावा जो इसको उनको ईवी ड्रोन देती है साथ में एक स्पेयर एक सेट बैटरी स्पेयर में देती है अलग से ताकि वो बैटरी को बार बार बदल के उसका कंटिन्यू इस्तेमाल कर सके। और ड्रोन का जनरली एक एकड़ को वो 5 से 7 मिनट में छिड़काव कर देता है और एक एकड़ के लिए 10 लीटर पानी की आवश्यकता होती है लेकिन इसके लिए बैटरी को बार बार जो है एक बैटरी एक बार फुल रिचार्ज करने पे 3 एम्पीयर तक छिड़काव करती है। तो एक जो स्पेयर सेट ऑफ बैटरी है उसको हमें रिचार्ज करना होता है तो उसके लिए इसको ने डीजल एक जनरेटर भी होंडा का प्रोवाइड किया है तो वो तब तक जो है उसको चार्ज कर सकती है जब तक कि दूसरा बैटरी खत्म नहीं हो जाता। तो इस तरीके से वो एक दिन में 8 से 10 एकड़ बड़ी आसानी से स्प्रे कर सकती है या 20 एकड़ तक कई महिलाएं जो है अगर मौसम साफ रहा सब कुछ ठीक रहा तो 20 एकड़ तक भी एक दिन में स्प्रे किया जा सकता है। और इसमें हमने मिनिमम जो है वो 400 से 500 रुपए तक महिलाएं जो है वो एक एकड़ का स्प्रे कर लेती है किसानों से और एक दिन में 20 एकड़ करती है मतलब 6000 से लेके 5000 से 6000 रुपए तक का वो प्रतिदिन अपना आय लेती है इससे और ये उनके लिए काफी लाभ का सौदा साबित हो रहा है। जो महिलाएं बेरोजगार हैं और कुछ अपने स्तर पे करने की इच्छुक हैं तो वो साल में 200 दिन तक ड्रोन का स्प्रे कर रही है और 5 लाख से 8 लाख रुपए प्रति वर्ष तक का इससे आय।

0: छत्तीसगढ़ में बोई जाने वाली सभी किस्मों की फसलों की अच्छी बढ़वार और भरपूर पैदावार के लिए खादों और कीटनाशकों के छिड़काव की समय समय पर जरूरत पड़ती है। इसके लिए महिलाओं को केंद्रीय एजेंसियों या संस्थानों के माध्यम से ड्रोन संचालन का तकनीकी प्रशिक्षण और रिमोट पायलट सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के बाद ड्रोन दीदियां खेतों में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी और कीटनाशकों का कुशलता के साथ छिड़काव करती हैं। इससे किसानों का समय भी बचता है और मेहनत भी। इस तरह महिलाएं खेतों में अपनी सेवाएं देकर हर साल अतिरिक्त आय कमा रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं।
1: मोना चित्ररेखा साहू है और मैं बालोद जिला से हूँ। अब मैं ड्रोन दीदी के काम करता हूँ। ड्रोन दीदी जो है एक ड्रोन के माध्यम ले खेत मन में दवाई छिड़के के काम करते। अब ये योजना हमारे का प्रधानमंत्री महोदय की योजना हरे ड्रोन दीदी बना के ओमला सशक्त करना है। कम से कम ओला 10वीं पास होना जरूरी है। एकर से तो सरकार डहान ले हम जैसे इफको कंपनी के तहत गए हवन तो हमारा 100% अनुदान मिली से भी इफको कंपनी के तहत में। और हमारा ड्रोन के साथ साथ में हमारा ईवी घला मिले हुए चार्जिंग गाड़ी घलक थे और में हमारा लाने ले जाए सुविधा हो जाते। ये ड्रोन के प्रशिक्षण हमारा मिलते है। जैसे हमारे गए रहे हमारे राष्ट्रीय इंदिरा गांधी उड़ान अकेडमी ग्वालियर हमारे वहाँ 15 दिन के ट्रेनिंग दी सब हमारा थ्योरी प्रैक्टिकल ये करके और कैसे करना है कैसे उड़ाना है यह सब चीज के वहाँ हमारा ट्रेनिंग दी सब। और वहाँ आए के बाद तो हमारे असली परीक्षा तो हमारे फील्ड में चालू हुई सब खेत मन में। कबर हमारे वहाँ मैदान में ही सिखा रही सब 5 एकड़ के मैदान है बहुत बड़े वहाँ सिखा रही से। लेकिन हमारा तो चलाना सिर्फ खेत मन में रही सब जहाँ फसल होते अधिकतर खेत मन में होते तो हमारे के परीक्षा वहीं से चालू हुई सबे कि खेत में कैसे उड़ाना है। फील्ड ट्रेनिंग आ रही सब ट्रेनर कि कैसे उड़ाना है ये बस हमारे 2 दिन के बस बताई सब। वो 2 दिन के बाद में ही हमन आज तक के कंटिन्यू करत करत आज मन अति कहे हो गए कि हम दूसरा घर ट्रेन कर सकते हैं। चाहे किसान हो या जिन भी इच्छुक है लेने वाला वो मन डायरेक्ट कंपनी मन से भी ये ले सकते है। अब अगर योजना के तहत ये कर सकते है तो हमें योजना भी आते है। चाहे कीटनाशक हो कि निंदा नाशक हो चाहे आपके आजकल उर्वरक खाद मन भी आ गए लिक्विड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म आते ना सब ड्रोन से हमन स्प्रे कर। किसान भाई मतलब का रखते कि जब वो मतलब चाहे वो लिक्विड फॉर्म में डाले दानेदार में डाले वो मतलब खेत में उतरे लागते। अब खेत रहते गिल्ला तो मतलब माड़ी भर चिखला में उतरे लागी। अब चलना खेत में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाते गिल्ला खेत मन में ऊपर से उतना सारा मतलब लादन पकड़े लागते और चलना ज्यादा हो जाते। हमन का करथन ड्रोन से हम छिता हम सिर्फ मेड़ में खड़े रहथन और ऑपरेट करथन 1 एकड़ 5 से 7 मिनट में 1 एकड़ खेत कम्प्लीट हो जाते समय की बचत। और प्लस 10 से 12 लीटर के आसपास हम पानी आते एक टंकी में 1 एकड़ पर पर्याप्त है। दूसरा के पानी भी बचत हो जाते में तीसरा हो जाते समय की बचत भी हो जाते। और कई ठाकुर का करते कि जब अपन छीतत रहते हैं कई बार ना चाहते हुए भी हवा है ये है के माध्यम से हमारे बॉडी में वो वापस वो हवा के माध्यम से उड़ के आ जाते तो हमें स्वास्थ्य की भी बचत हो जाती है। पैसा घला कम लगते हैं हम जैसे कि एकड़ पीछे लेते 1 एकड़ के फसल के हिसाब से लेते हैं 300, 400, 500 हर फसल के अलग अलग रेट है भी। और जैसे हमारे मजदूर भाई मन जैसे छीतते तो वो मन का करते चाहे वो आधा एकड़ छीते चाहे 1 एकड़ अपन दिन भर के रोजी ली सांझ की अब एक्स्ट्रा खर्चा होकर हो जाता तो इमें भी हमें बचत हो जाते भी होकर पैसा की काबर हम सिर्फ 1 एकड़ पीछे लिए थे ना कि हम रोजी के पीछे नहीं लेन। बहुत अच्छे रिजल्ट मिले थे हमारे किसान भाई मन ये ड्रोन से छिड़काव वाला बहुत अच्छा से अपना था वे बहुत खुशी खुशी अपना था कि हर चीज के मतलब फायदा मिला था वे कहीं जैसे सीजन रहते हम तो एकदम बहुत ज्यादा बिजी हो जाता एडवांस बुकिंग बोले जाए तो चलत रहता कि हाँ आज ये किसान के कल वो किसान कैसे हम एक ठो शेड्यूल बना के रखथन कि आज ये किसान के है करना है। और कोई भी हो फोन के माध्यम से हम ऑर्डर लेता जिन किसान भाई मन लगला अगर छिड़काव करवाना है तो हम सब जगह से हर सोसाइटी मन में हमारा नंबर है हर कृषि विभाग में हमारा नंबर है हर जिला पंचायत जनपद पंचायत में जति बालू जिला के अंतर्गत ये है ना तो मन में सब में हमारे नंबर है वहाँ देहा ओकर माध्यम से किसान भाई मन हमारा कॉल कर गए थे अपन ऑर्डर कन्फर्म करवा लेते। मैं तो दीदी मन ला यही कही सकता हूँ कि एती ओती भटके के सेती ले ये योजना जो है अति सुघर हवे कि बिना कहीं यह के बिना खर्चा ज्यादा में खर्चा घला नहीं हावे। दूसरा व्यवसाय जैसे चालू करते हैं तो हमारा लाखों रुपया लग जाते ये ऐसे भी योजना हावे कि इसमें आपला सिर्फ ट्रेनिंग के लाग ही और थोड़ा बहुत पैसा में 20% हमारा अपना हेर लगाए पड़ते बाकी 80% तो हमारा सरकार डाले अनुदान मिल जाते। तो ये इतना अच्छा योजना है जैसे महिला मन सशक्त हो सके लखपति दीदी और करोड़पति दीदी घला बन सकते।
2: आग

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।
1: प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ड्रोन आधारित कृषि को विशेष संबल प्रदान कर रहा है। राज्य के लगभग सभी महिला स्व सहायता समूहों की सदस्य आगे आकर ड्रोन दीदी के रूप में अपनी पहचान बना रही हैं और आधुनिक खेती को नई दिशा दे रही हैं। छत्तीसगढ़ के विकास का

0: ये गौरवशाली अध्याय है जिसमें महिला सशक्तिकरण के कई उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। इस योजना के लागू हो जाने से महिलाएं अब चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अब वे किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम कर रही हैं।
1: भुवनेश्वरी साहू, ग्राम परसदा, जिला बालोद, गुंडरदेई से मैं सिद्धि महिला सहायता समूह समूह का नाम है। मैं उनमें से आज एक ड्रोन दीदी के रूप में कार्यरत हूँ, जिला की एक दिल्ली से ऑनलाइन इंटरव्यू हुई थी, वो इंटरव्यू के माध्यम से मोर सिलेक्शन हुई थी नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत, जिनमें की मैं ग्वालियर में रही के 15 दिन की ट्रेनिंग ले हूँ, जो कि इंदिरा गांधी उड़ान अकेडमी से मैं 15 दिन की ट्रेनिंग ली हूँ। वो ट्रेनिंग में हमारे 15 दिन की ट्रेनिंग देगी से, जैसे कि हमारे रिटर्न और फील्ड दोनों निकालना रही से, वहाँ से जब हम दोनों ही निकाल लें तो हमारा मन के सिलेक्शन नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत हुई से, और फिर 14 फरवरी से मतलब ड्रोन मिली से, फिर 14 फरवरी से ड्रोन मिले के बाद मैं निरंतर अपन कार्य करते गए हूँ। आज अपन छिड़काव काम करत हूँ, अब आज मोला पूरा ड्रोन दीदी के नाम से अपन जिला ब्लॉक और पूरा छत्तीसगढ़ में जाने जाते ड्रोन दीदी के नाम से। हमल वहाँ सबसे पहले तो एक व्यवस्थित जीवन टाइम टेबल के हमल बताएगी से, और जो एक पायलट को जो ट्रेनिंग दे जाते आर्मी की, वो हमल ट्रेनिंग देगी से, और वहाँ बताई से की हमल ड्रोन ला कैसे चलाना है। सबसे पहले तो हमल रिटर्न मतलब जो लिखे थे पेपर है पर हम 2 दिन तक पढ़ाई करें, तीसरा दिन में हमारे मन के पेपर हुई से, जब ओला निकालें हमारे मन के फील्ड ट्रेनिंग हुई से, और वो फील्ड ट्रेनिंग के बाद हमारे मन के एक ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई से, उन्हें जब हम वो पेपर ला हम पास कर लें तब हमारे मन के शासन की योजना जो चला थे नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत हमला शामिल करेगी से। यानी हमारे मन के साथ में जो हमारे जो ट्रेनिंग है उसमें इपको के भी बहुत सहयोग है कि हमारे मन की ट्रेनिंग लगकर आए, हमारे मन की बहुत साथ दे ही हमारे मन आज यहाँ सफलता तक लाए। हमारा ड्रोन के लिए पैसा लगाए नहीं लगे जी, हमारा मात्र अपन हम ट्रेनिंग हम जो गए हम ट्रेनिंग में बस ओके बस लगा फिर रहना खाना हर चीज वही शासन से ही हो। हमारा ड्रोन में एक ईवी भी मिले, ईवी में पूरा सेटअप बॉक्स बना है, में जनरेटर है, जनरेटर के माध्यम से अपन बैटरी चार्ज करते हम ड्रोन लाए ले जाए के लिए बैटरी वाला ईवी दे दी। हम ये ड्रोन के मेन उद्देश्य है कि सिंचाई जैसे कोई भी कीटनाशक है खाद है किसकी हम अलग छिड़काव करना है, लेकिन लिक्विड ये करना है। इन्हें का है एक महिला ला आत्मनिर्भर बनाना है ना, तो शासन की योजना ये है कि जैसे कि कोई भी महिला सबसे पहली प्राथमिकता एक कारण भी समूह आदमी समूह से बढ़ के आगे बढ़े, मतलब कि महिला समूह है कि मैं यही देखना चाहती मतलब पूरा समूह के ना है हा? एक से आदमी देखे समूह देखे कि मैं आज एक समूह में जुड़ के महिला आगे बढ़ी, देश के यही हरे ये अपन सेपरेट हरे समूह के कोई समूह से जुड़े है कि नहीं महिला इला प्राथमिकता देना है, काबर की एक पढ़ाई खुद ला करना है, इसके नाम से लाइसेंस है ना। का है देखो जैसे हम अपन कोई भी किसान हाथ से स्प्रे रखे है ना, मैं सबसे पहली बात है समय लगना है और पानी भी लगना है। एमी का है जैसे ड्रोन से छिड़काव कर रखे तो जो काम हम लोग दिन भर में करना है वो अपन एक आध घंटा में सफल हो जाए, होकर से कहा है किसान लग समय बचत भी होते, और जो पानी हम जहाँ 200 लीटर के उपयोग कर सन वो पानी हम 10 लीटर में हो जाए हमार काम है, तो एक से कहा है किसान मतलब बहुत सहूलियत होते कि सही समय में ओकर सही काम हो पाते, जेकर से बोला अपन पानी है समय है साथ ही स्वास्थ्य के भी लाभ मतलब मिलते।

0: की योजना के तहत ड्रोन के उपयोग से कृषि कार्य अब आसान हो रहे हैं। इससे किसानों को खाद और उर्वरक के छिड़काव में आसानी हो रही है। वास्तव में इस योजना के आ जाने से तकनीक में जिस तरह का बदलाव आया है, उससे खेती के स्वरूप में भी आशाजनक परिवर्तन हुआ है। ये सब बेहद सुखद है। किसान पहले अपनी खेतों में दिन रात मेहनत किया करते थे। अक्सर वे समय पर खाद पानी का हिसाब नहीं रख पाते थे, जिससे उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब ड्रोन तकनीक ने इस सारी परेशानियों से किसानों को मुक्त कर दिया है।
1: मोर नाम श्रीमती चंद्रकली वर्मा है। मैं हाँ ड्रोन दीदी हरा किसान मन के खेत में जाके ये नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के छिड़काव करता हूँ। और एकर से किसान मन भी बहुत खुश हो इसे, जागरूक हो इसे कि ड्रोन में हमन कुछ भी पेस्टिसाइड दवाई भी मिला के नैनो यूरिया डीएपी के साथ में स्प्रे कर सकथन। डबल मेहनत नहीं लगाए, एक साथ हो जाही इसे करके मन भी खुश और स्प्रे करवा तो आप मन के खेत में एक एकड़ ला 10 मिनट में स्प्रे करके दे देते। और नैनो डीएपी के उपयोग ड्रोन से करे में बहुत अच्छा होते। वो हवा के साथ में जब प्रेशर के साथ उड़ते ना ड्रोन हा, तो एक एक पत्ता मन हिलते तो ओकर अंदर तक के जाते जो यूरिया और डीएपी के स्प्रे है वह, तो एकर से असर बहुत जल्दी करते। हाथ वाले में थोड़े धीरे धीरे से करता ना, तो ओकर से ज्यादा ड्रोन में मतलब अच्छा रिजल्ट है। तो ड्रोन में ही आप मन नैनो यूरिया नैनो डीएपी के स्प्रे करवाए की कोशिश करू और उपयोग करो। लाओ अपन हेल्थ के, अपन हेल्थ भी बचाना है, प्रकृति भी बचाना है और अपन धरती मातल भी बचाना है कठोर हो। तो एकर लिए नैनो यूरिया नैनो डीएपी के उपयोग सब किसान भाई मतलब अपन खेत में करना बहुत जरूरी। सुबह मतलब हम लोग सुबह 6 बजे ही निकल जाते हैं, 11 बजे तक स्प्रे करते हैं, उसके बाद वहीं आराम करते हैं दोपहर में, उसके बाद शाम को फिर स्टार्ट करते हैं 3 बजे, फिर 6 बजे तक स्प्रे करके वापस। और इसका सही समय वही है और ड्रोन चलने का भी सही समय वही है। ड्रोन को भी सुबह से मतलब 11-12 बजे तक, उसके बाद शाम को चलाना है, दोपहर में ड्रोन भी नहीं चलाना है। मैं चंदखुरी फार्म के पास नकपुरा ग्राम है वहाँ के रहने वाली हूँ। मैं ड्रोन के ट्रेनिंग लेबर ग्वालियर गए रहे हैं, वहाँ 15 दिन के ट्रेनिंग हुई से माधव इंस्टीट्यूट में। वहाँ से मैं यहाँ ट्रेनिंग लेके आए हूँ तो मुला लाइसेंस मिली से। ओकर बाद फिर हमन इफको के तरफ से ही फूलपुर उत्तर प्रदेश गए रहे हैं, जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नमो ड्रोन दीदी के उपाधि दी। और कुछ और एक्स्ट्रा इनकम नहीं था मेरा, मेरे पति जी का इनकम था। और जब से मेरे को ड्रोन मिला और मैं स्प्रे करना स्टार्ट की, तो फर्स्ट साल ही मैं करीबन 700 एकड़ स्प्रे की, जिससे मेरे 2-2.5 लाख रुपए का इनकम। और उसके बाद रवि सीजन आया तो उसमें मैं 400 एकड़ स्प्रे की, और अभी टोटल मेरा मतलब 1600-1700 एकड़ स्प्रे, जिसमें मैं 5 लाख तक का इनकम हुआ है।

0: छत्तीसगढ़ में महिलाएं नमो ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से कृषि क्षेत्र में तकनीक की एक नई मिसाल कायम कर रही हैं। ड्रोन दीदियां खेतों में पोषक तत्वों और कीटनाशकों का सटीक छिड़काव करके किसानों का समय और श्रम दोनों बचा रही हैं। ड्रोन आधारित ये नई नवेली तकनीक खेती के लिए वरदान साबित हो रही है। ये किफायती भी है और प्रभावी भी। इस पहल से खेती अधिक आधुनिक, आसान और तकनीक आधारित हो गई है।
1: मेरा नाम सीमा वर्मा है और मैं बिलासपुर जिले के मसूरी ब्लॉक सिपात पौड़ी की रहने वाली हूँ। मैं एनआरएल बिहान योजना से जुड़ी हुई हूँ। मेरे समूह में 10 सदस्य है सर। तो एनआरएल समूह की एक योजना थी जो सरकार निकाले है एनआरएलएम के अंतर्गत नमो ड्रोन दीदी का सर, जिसकी जानकारी मुझे जीसी भारत के थ्रू पता चला। जैसे कि एक योजना है नमो ड्रोन दीदी का, तो दीदी आप अगर करना चाहते हैं, इच्छुक है, तो ग्वालियर में दिसंबर में 15 दिन की ट्रेनिंग है, जिसको ट्रेनिंग लेने के लिए आपको ग्वालियर में रहना पड़ेगा 15 दिन। तो सर मैंने फिर सर मैं काम तो कर रही थी, लेकिन मुझे कुछ और करने की इच्छा थी पहले से। मैं करना चाहती थी कुछ और करूं, कुछ और करके आगे बढ़ूं। जैसे मेरे पास इस योजना की जानकारी आई, मैंने तुरंत हाँ कर दिया। और उसके बाद सर दिसंबर में मैं 2023 में ड्रोन दीदी के ट्रेनिंग के लिए ग्वालियर चली गई, जहाँ पे 15 दिन रहकर ग्वालियर में ट्रेनिंग लिया सर। ट्रेनिंग लेने के बाद फिर हम लोगों को सरकार और इफ्को के द्वारा फिर ड्रोन प्राप्त हुआ। और फिर मैं ड्रोन को फील्ड में लेकर सर किसानों से मुझे स्प्रे का ऑर्डर आने लगा। तो ऑर्डर आया तो सर हम लोग 1 एकड़ में 300 रुपए चार्ज करते हैं। तो फिर मैं स्प्रे करने के लिए खेतों में जा रही थी, सारे किसानों का स्प्रे कर रही थी। तो इससे किसानों को भी फायदा हुआ, क्योंकि उनको फायदा ही हुआ, क्योंकि जो मजदूर थे उन लोग करवाते थे तो फसलों को नुकसान होता था। और ड्रोन चलाने से हम लोग मेड़ में खड़ा होकर ड्रोन के माध्यम से स्प्रे किए, तो किसानों को एक तो फसलों के नुकसान से बचत हुई और समय की भी बचत हुई सर। और इससे सर मेरी मैं ड्रोन दीदी की इनकम से मेरी इनकम में बढ़ोतरी हुई, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति भी सुधरी है।

0: शांति विश्वकर्मा।
1: ये नमो ड्रोन दीदी जो योजना है वो माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल है, जो ग्रामीण क्षेत्र से जो हमारी महिलाएं हैं, महिला समूह में जुड़ी हुई हैं SSG के थ्रू जो विहान योजना से है, तो उसी में ये सब महिलाएं लाभ उठा रही हैं। और ये मेरे को हो गया मतलब 2023 में हम लोग ट्रेनिंग लिए थे, हम लोग को ट्रेनिंग ग्वालियर से दी गई है, 15 दिवसीय था हम लोग का जो प्रशिक्षण है वो ग्वालियर से हुआ है हमारा 2023 में। अच्छा। इस योजना का उद्देश्य है किसानों की मदद करना, और मेन उद्देश्य तो ये है कि जो मेहनत किसान भाई लोग करते थे, जो डब्बा टांग के खेतों में काम कर रहे थे दिन दिन भर, एक एकड़ में उनको दिन भर लग जाता था, तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मतलब महिलाओं की भी मदद की है एक तरफ से, और किसान भाइयों की भी मदद हुई है। और समय भी एक एकड़ में उनको दिन भर लग जाता था, और यही ड्रोन से 10 मिनट लगता है अभी, और पानी जहां उनको 100 लीटर लगता था एक एकड़ में, आज 10 लीटर में काम हो रहा है सर। ये पूरी प्रधानमंत्री योजना के तहत ही है नमो ड्रोन दीदी, इसमें हम लोग को पूरा फ्री है, इसमें हम लोग को आमदनी बहुत है, बारिश में तो हम लोग दिन में 3,000-4,000 एक दिन में कमा लेते हैं सर, बाकी समय में हम लोग का भी वही महीने का 20,000-22,000 रुपए तो मिनिमम कमा ही लेते हैं। हम लोग रख रखाव करते हैं, उसकी साफ सफाई है, देख रेख करना है, जब भी आते हैं खेत से तो हम लोग उसको फिर मेंटेनेंस करने का काम हमारा ही रहता है। खाद का छिड़काव के लिए हम लोग 300 रुपए ही ले रहे हैं प्रति एकड़। अच्छा। और जो बड़े क्रॉफ्ट है उसका 500 रुपए है, जैसे गन्ना है, केला है, पपीता है, राहर है, उसका 500 रुपए रेट है, और धान का तो सरकारी रेट है 300 रुपए। हम लोग तो अभी मतलब जो कमाई का सीजन रहता है ये बारिश का ही समय। इस योजना के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ही फायदा उठा सकते हैं। ड्रोन तो एक ही है। अच्छा। जो मुझे मिला है लखपति दीदी योजना के तहत, और जिले में अभी ड्रोन दीदी मैं ही हूँ हमारे राजनांदगांव जिले में, और 2 भाइयों को भी मिला गया है, तो वो भी हैं अपने क्षेत्र में, वो भी काम करते हैं। स्वावलंबन की जो योजना जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बहुत सारा अभी रोजगार जो दिए हैं हमारी भारत देश की महिलाओं को, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को, बस उसमें लाभ उठाना महिलाओं का काम है, महिला समूह से जुड़कर। इसके तहत फिर मेरा नाम इसमें सेलेक्ट हुआ तो मैं ड्रोन दीदी बन गई। ये हम लोग को जनपद से ही आया था, इफ्को की तरफ से है ये। अच्छा। और जो ड्रोन भी मिला हम लोग को इफ्को द्वारा ही मिला है, इफ्को कंपनी से ही। एक ड्रोन की कीमत जो आयोटेक की कीमत है वो 10 लाख की है। अभी हमारे जो जिले से है कृषि विभाग, वो भी मेरी बहुत मदद करते हैं, और उन्हीं के द्वारा मैं अभी गांव-गांव में जा रही हूं शिविर में। अब ड्रोन दीदी बनने से तो बहुत सारा परिवर्तन आया है, अभी तक तो मैं गृहस्थ जीवन में ही बिजी थी, अचार पापड़ तक ही सीमित थी कि बस अचार बनाना है, सप्लाई करना है, लेकिन जब बाहर निकली तो बाहर की दुनिया देखी, और ड्रोन दीदी बनी हूँ तब से तो अभी तक मुझे छत्तीसगढ़ में दिल्ली तक सम्मानित किया गया है, वहाँ भी मुझे लोकमाता अहिल्याबाई का अवार्ड दिया गया है।

छत्तीसगढ़ के चहुमुखी विकास में महिलाओं की भागीदारी का अनुपात जिस तेजी के साथ बढ़ रहा है वो एक सुखद संकेत है। आने वाला समय ये तय कर रहा है कि प्रदेश में महिलाएं स्वावलंबी बनकर अपना भाग्य स्वयं लिखें। ये है भी स्वावलंबन और स्व सहायता समूह का मूल सिद्धांत। ड्रोन दीदी बनकर महिलाएं कृषि के क्षेत्र में जो योगदान दे रही हैं, वो समानता और सम्मान का अनुपम उदाहरण है। लहराते खेतों के निगहबान बनकर दीदियों के ड्रोन जब नील गगन में परवाज भरते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है बेहिसाब ख्वाहिशें अंधेरे को चीरती हुई बढ़ रही हैं उजाले की ओर।

फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 10:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए फोन इन कार्यक्रम।

0: सुमधुर गीत और संगीत के क्रम आप मन के मन पसंद कार्यक्रम जेकर नाम हावे हेलो संगी। आज के ये क्रम मा आप मन के संग मा मैं हावा जी आप मन के संगी रामविलास पटेल झोंकाओ मोर डहाले राम राम जय जुहार। तो चला आज के हमर संगी से बातचीत करी। कार्यक्रम है हेलो संगी।
1: जयराम भैया।
0: जयराम जी स्वागत है अभिनंदन है कार्यक्रम में। बतावा मितान कौन और कहां ले बोला था जी?
1: नामघाट के साथ मोतीलाल साहू भैया।
0: ओ हो मोतीलाल साहू जी के स्वागत है भाई। कैसे हावा साहू जी?
1: बढ़िया बढ़िया भैया।
0: बढ़िया हावा। काम धाम
1: कैसे? कल तो पानी गिरा थे।
0: काम धाम कैसे चला थे?
1: ठीक ठाक है भैया।
0: ठीक है। और कार्यक्रम कैसे लगा था जी?
1: कार्यक्रम तो बहुत बढ़िया है भैया।
0: बढ़िया है।
1: आपकी कुछ मौसम कैसे भैया?
0: मौसम बरसा हुआ थे, झिमिर झिमिर बरसा थे पानी जी। हाँ और बताओ का गीत सुनिए आज कार्यक्रम में?
1: आज पराक्रम
0: चला आप मतलब सुना था आप मन के पसंद के कलाकार के सुघर गीत ला फोन करे कर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: कार्यक्रम में हेलो संगी,
1: हेलो संगी,
0: स्वागत है जी।
1: धन्यवाद भैया।
0: बतावा नाम ला भैया।
1: राम कुशल पटेल बोला था भैया, हैदराबाद ले।
0: राम कुशल पटेल जी के हैदराबाद ले स्वागत है, अभिनंदन है। बतावा हाल चाल कैसे है पटेल जी?
1: बहुत यहाँ घाम है भैया, अभी तो
0: घाम करत है?
1: पोर्ट घाम करा थे, 8 दिन हो गए पानी नहीं गिरा थी यहाँ तो।
0: अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ में तो बढ़िया बरसा रानी बरसा करा थे जी।
1: हाँ,
0: और कार्यक्रम कैसे लागत है आकाशवाणी रायगढ़ के?
1: बहुत बढ़िया लगा भैया। मोबाइल ऐप के माध्यम से हमने सुना था,
0: जी,
1: और जबकर संगीत साथी थे सब मोबाइल ऐप में लोड है, सब बढ़िया आनंद कुशल से सुनो थे। गांव छत्तीसगढ़ के पूरा धरोहर, हमारे छत्तीसगढ़ के जतका त्योहार के बारे में सब जानकारी मोबाइल के माध्यम ले था भैया।
0: जी। बतावा राम कुशल जी, आज के कार्यक्रम में का गीत ला परोसिया?
1: ओखर सुना था भैया, प्रकाश देवांगन के मोर खेती खार रुझुन।
0: बहुत बढ़िया गीत है। कार्यक्रम में आप मोला सुना था मोर खेती खार रुंझुन ये सुघर गीत ला, और कार्यक्रम में जुड़ाओ एक बार। आप मोला बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद भैया, धन्यवाद।

0: हेलो संगी।
1: हेलो
0: हाँ जी, स्वागत है बासन झूरी ले।
1: जी, नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार। नाम ला बतावा।
1: बासिन झोरी से धन्नोधाम साहू, जिला कबीर धाम के पास
0: हाँ, कबीर धाम के डहर पानी गिरा थे और
1: गिरा था। तब अच्छा पानी है,
0: डोली खेत खार कैसे है? फसल
1: बढ़िया है सर।
0: निंदाई चलाई हो गए
1: हो
0: और बियासी भी हो गए?
1: गए
0: और बताओ फिर, राहेड़ राहेड़ लगात रहा उदारी तो पाछू उदारी राहेड़ हो गए?
1: अब ठीक है ना सर?
0: ठीक है ठीक है।
1: सब ठीक है।
0: हाँ, और बताओ आज के कार्यक्रम में का गीत सुनिए जी?
1: आज की कार्यक्रम सुना दो। ये भजन करो भैया, न
0: अच्छा
1: उत्तम ऐसे है।
0: हाँ, चला भजन करो भैया का गीत ला आप मोला सुनाथन। धन्नू राम जी, कार्यक्रम में जुड़ाओ एक बार, हृदय से आभार धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: कार्यक्रम में हेलो संगी।
1: भैया,
0: हाँ जी बताओ, कौन बोला था?
1: रंजीत कुमार बोलता हूँ भैया, भरतगांव जिला कोंडा गाँव से।
0: रंजीत कुमार जी, कैसे हावा जी?
1: भले हाँ भैया, आप
0: अच्छा,
1: मत कहते हैं
0: हाँ मन बढ़िया हवन। का करता आप मन रंजीत जी?
1: खेती कहानी चलाते भैया।
0: अच्छा, और मौसम कैसे? पानी बरसा?
1: पानी बरसा तो मौसम है भैया, लेकिन इस बार पानी तो कम गिरे है।
0: कम गिरे है? हाँ
1: साथ में चिंतित थे पानी कम गिरा देगा के। पानी
0: अच्छा,
1: कम गिरे कारण हम भैया अपन जो पेड़ पौधा है कटाई करते लगान नहीं ऐसे होते।
0: हाँ। और बताओ आप मन के आसपास के खास विशेषता बताओ हमारे संगवारी मल्ला।
1: हमारे आस पास में चित्रकूट वाटरफॉल है भैया, दंतेश्वरी मंदिर है रे, दंतेवाड़ा में है दंतेश्वरी मंदिर,
0: अच्छा,
1: और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा शुरू हो गए भैया।
0: प्राकृतिक सौंदर्य ले भरपूर हावे आप मन के क्षेत्र मितान। अच्छा
1: नदी नाला झरना मन है भैया आस पास में,
0: हाँ, एक
1: अभी पर्यटक मन के बाहरी ये है अभी बस्तर आ गए, प्राकृतिक सौंदर्य से यहाँ टाटा मारी भी है भैया, काफी
0: अच्छा अच्छा
1: भीड़
0: अच्छा
1: है भी अभी तो आए जाए मन के।
0: अच्छा, तो रंजीत जी हमारे कार्यक्रम ला आप मन कब ले सुनता हो?
1: भैया मैं बीजिंग सुनाता रहता हूँ भैया, मोबाइल ऐप आगे
0: अच्छा
1: जुड़े तो आसानी होगी।
0: हाँ, तो बताओ आज का
1: लक्ष्मण
0: सुनिए रंजीत जी।
1: मस्तूरिया के गीत सुना दिया भैया।
0: बिल्कुल, आप मतलब सुना था फिर लक्ष्मण मस्तुरिया के गाय गीत ला, और हमारे कार्यक्रम में आप मन जुड़ा हो, फोन करा अस्का धुरिया ने माया बना के, एक बार धन्यवाद रंजीत जी।
1: धन्यवाद।

0: हेलो संगी।
1: हेलो संगी, राम राम, जय जोहार गा।
0: राम राम, जय जोहार भैया। बताओ जी नाम जी।
1: मैं आपकी बीवी श्रोता मदनपुर कवर्धा ले श्रवण कुमार साहू बोला हूँ।
0: श्रवण मास में श्रवण कुमार साहू जी के हमारे कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है मदनपुर ले।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी।
0: और बताओ श्रवण जी, का हाल चाल है आप मन के डहर?
1: हाल चाल तो बढ़िया है पटेल जी।
0: बढ़िया है।
1: खाओ, खेती बाड़ी काम चलत है, निंदई कोड़ाई खातू माटी डरई के,
0: हाँ।
1: और सावन के महीना चलत है। अब सब श्रद्धालु मन कांवर लेके अमरकंटक ले धोरण देव आते, सब जल चढ़ाते,
0: जी
1: यही में सब है। हाँ
0: पूरा भक्ति के रंग में पूरा रंगे हावे सब भोजन अभी।
1: हाँ सावन महीना में पूरा भक्ति के रंग में रंगे हुए है।
0: हाँ और तीस।
1: धोरण देव माँ पूरा एक महीना के मेला लगे रहते सावन का,
0: अच्छा।
1: और बहुत भीड़ रहते है।
0: अच्छा और सावन वैसे तीज त्योहार ला लेके आते तो एक ऐसे खुशी के माहौल भी रहते, और किसान अपन के खेत में फसल भी बुआई कर डाल रहते तो अच्छा भी लागते। तो
1: हाँ, चारों तरफ हरियाली दिखाई देते तो मन और प्रफुल्लित होते।
0: जी। तो आज के कार्यक्रम में प्रफुल्लित करे बर का गीत सुना संगवारी मल्ला?
1: अब धुरवारा मलकाम और दुखिया भाई के स्वर में जल संगी देवता मनाबो, यही गीत सुना देते बढ़िया।
0: चला भाई, मिलजुल के देवता ला मनाना जरूरी है। और सुनाबो आप मल्ला आप मन के पसंद के सुघर गीत ला, फोन करा एक बार। धन्यवाद है मितान।
1: आपको मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद है मितान।
0: धन्यवाद धन्यवाद।

संगवारी हो हेलो संगी के क्रम यही सिरावत है कार्यक्रम में आज हमला तकनीकी सहयोग मिले रही से के एस पैकरा के प्रस्तुति सहयोग और संचालन रही से आप मन के मितान रामविलास पटेल के और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही ने रवि आनंद। तो देवा विदा, राम राम, जय जुहार।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी। प्रस्तुतकर्ता थे रवि आनंद, संचालन करता थे रामविलास पटेल। इसी के साथ फोन इन कार्यक्रम हेलो संगी अब संपन्न होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। इस समय सुबह के 11 बजे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से।

करेगा कौन? इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन?

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
1: दिना दिना, हे आला दिना, बदली दुनिया के आया नया।
3: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मिश्र संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग। आइए अब आपको सुनवाते हैं फाल्गुनी पाठक का गाया ये गीत। समीर ने इसे लिखा है, ललित का संगीत है और एल्बम का नाम याद पिया की आने लगी।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविद भारती पर।
3: अदनान सामी के संगीत निर्देशन और उन्हीं की आवाज में सुनिए तेरा चेहरा इस एल्बम का गीत, जिसे लिखा है समीर ने।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग और श्रोताओं, आज दिन में 4 बजे सुनना ना भूलें कार्यक्रम पिटारा के अंतर्गत सेल्युलॉइड के सितारे। आज आप इसमें सुनेंगे अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत का भाग 2, तो जरूर सुनिए ये कार्यक्रम। और चलिए अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं अल्ताफ राजा की आवाज में, दिल के टुकड़े हुए हजार, ये एल्बम का नाम है। अरुण भैरव ने इसे लिखा है, अल्ताफ राजा और वैष्णव देवा का संगीत।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: आइए अब आपको सुनवाते हैं सईद कादरी की लिखा ये गीत। गोल्डी ने इसे संगीतबद्ध किया है। एल्बम का नाम तू ही मेरे रब की तरह है।

आइए अब आपको सुनाते हैं फाल्गुनी पाठक का गाया ये गीत, गीत संगीत ललित सेन का, एल्बम का नाम मेरी चूनर उड़ उड़ जाए।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
2: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:55 होने को है। हमारा अगला प्रसारण थोड़ी ही देर में। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री आज रायपुर में आयोजित स्नेह की डोर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में विशेषज्ञों के सुझाव प्राप्त करने 27 अगस्त को रायपुर में होगी बैठक। और मौसम विभाग ने उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों के लिए आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अब समाचार विस्तार से। रक्षाबंधन से पहले आज रायपुर में आयोजित हो रहे स्नेह की डोर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हो रहे हैं। वे महतारी वंदन योजना की 31वीं किश्त जारी करेंगे। इस दौरान 67,28,918 महिलाओं के खातों में 631,38,37,700 रूपये की राशि अंतरित की जाएगी। इसके बाद वे बालोद जिले के दौरे पर रवाना होंगे। यहां डोंडी लोहारा के लाल रघुवीर सिंह मिनी स्टेडियम में आयोजित मातृशक्ति सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। वहीं करीब 5,000 बिहान दीदियों और स्व सहायता समूह की महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। रायपुर लौटने के बाद वह भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक में शामिल होंगे। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र की रीढ़ बन गया है। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुए यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 साल पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई सिस्टम का शुरू होना भारत के डिजिटल पेमेंट इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर गुरुवार को देश भर में कार्यक्रम खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से देश भर में 1,500 से ज्यादा स्थानों पर युवाओं, खिलाड़ियों और शिक्षण संस्थानों को एक साथ लाया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी युवाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही खेल जगत की बड़ी हस्तियां भी युवाओं से सीधा संवाद करेगी। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति की उपस्थिति में 27 अगस्त को राजधानी रायपुर के सिविल लाइन्स स्थित न्यूज सर्किट हाउस में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें आयोग, निगम, मंडल, विभिन्न सामाजिक संगठनों, समाज प्रमुखों, विकास प्राधिकरणों के पदाधिकारियों, प्रबुद्ध नागरिक, जनप्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल हैं। बैठक में समान नागरिक संहिता के विभिन्न प्रावधानों, सामाजिक प्रभावों और व्यवहारिक पहलुओं पर गहराई से चर्चा की जाएगी। राजधानी रायपुर में आज से भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों और पार्टी पदाधिकारियों की प्रदेश स्तरीय 2 दिवसीय बैठक होगी। इस बैठक में संगठन के कामकाज की समीक्षा के साथ आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद रहेंगे। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तरी छत्तीसगढ़ के कोरिया, मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, सूरजपुर, बलरामपुर में ऑरेंज अलर्ट, जबकि सरगुजा, जशपुर, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और बिलासपुर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ऊपर निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, इसके प्रभाव से प्रदेश में बारिश का दौर अगले दो दिनों तक जारी रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 में शामिल विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी है। मंडल ने परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को निर्धारित पात्रता के अनुसार स्कूलों में प्रवेश देने के निर्देश जारी किए हैं। विद्यार्थियों को प्रवेश लेने के लिए 27 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री आज रायपुर में आयोजित स्नेह की डोर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में विशेषज्ञों के सुझाव प्राप्त करने 27 अगस्त को रायपुर में होगी बैठक। और मौसम विभाग ने उत्तरी छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों के लिए आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और यह भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। 25 अगस्त 2016 को शुरू हुई यूपीआई के लेनदेन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। श्री रिजिजू ने संसद में बार बार हंगामा करने को लेकर विपक्षी दलों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि संविधान विपक्ष को सवाल पूछने, विरोध करने और मतदान करने का अधिकार देता है, लेकिन संसद की कार्यवाही बाधित करने का नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों देशों के नेताओं के बीच आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय तथा निवेश संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। इसमें पूंजी प्रवाह और निवेश साझेदारी को मजबूत करने तथा भारत की विकास यात्रा में जापान की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा की गई। इस दौरान भारत की आर्थिक संभावनाओं, उभरते निवेश अवसरों और जापानी संस्थागत निवेश को और सुगम बनाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल नई दिल्ली में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स के वित्त मंत्री नतालियो डी वीटली से मुलाकात की। दोनों के बीच वित्तीय सेवाओं, डिजिटल बदलाव, निवेश को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री داخل کرنے کی تاریخ سے دو مہینے کے بھیتر کچی چینی کو سفید چینی میں بدل کر گھریلو بازار میں بیچنا ہوگا۔ بل آف انٹری وہ گھوشنا پتر ہے جو آیاتک ودیش سے مال منگاتے سمے سیما شلک وبھاگ کو دیتا ہے۔ اس میں مال کی ماترا، قیمت اور اس پر لگنے والے کر کی جانکاری ہوتی ہے۔ ودیش ویاپار مہانیدیشالے نے اگست کی شروعات میں جاری نیموں میں سنشودھن کیا ہے۔ ان نیموں کے تحت ٹیرف ریٹ کوٹا یوجنا کے انترگت 10,00,000 ٹن کچی چینی کے آیات کی انومتی دی گئی تھی۔ موسم وبھاگ نے آج چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش میں موسلادھار ورشا کا اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ وبھاگ نے اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ، مدھیہ مہاراشٹر، ودربھ، پشچم بنگال میں ہمالیہ کے ترائی کھیتروں، پورووتر بھارت، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکال، تٹیہ کرناٹک، کیرلم اور ماہے میں تیز بارش کا انومان ویکت کیا ہے۔ اس بیچ راشٹریہ راجدھانی کھیتر دلی میں آج لگاتار دوسرے دن تیز بارش سے کئی علاقوں میں جل بھراو ہونے کے کارن یاتایات پربھاوت ہوا ہے۔ تیز بارش کے کارن دلی کے اندرا گاندھی انتراشٹریہ ہوائی اڈے پر اڑان سیوائیں بھی پربھاوت ہوئی ہیں۔ 18 اڑانیں آج رد کرنی پڑی جبکہ 146 اڑانیں دیری سے چل رہی ہیں۔ کولمبو میں بھارت اور شری لنکا کے بیچ انتم کرکٹ ٹیسٹ میچ میں تیسرے دن کا کھیل جاری ہے۔ تازہ سماچار ملنے تک شری لنکا نے پہلی پاری میں 4 وکٹ پر 130 رن بنا لیے ہیں۔ گھریلو شیئر بازار کے پرمکھ سوچکانک آج دوپہر کے سطر میں معمولی گراوٹ کے ساتھ کاروبار کر رہے تھے۔ تازہ سماچار ملنے تک سینسیکس 131 انگ گر کر 77,238 پر آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی سماچار بلٹن سماپت۔
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं चांद का टुकड़ा इस फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने। महेश और किशोर ने इसे संगीत से सजाया है।

0: श्रोताओं, आज हम याद कर रहे हैं हिंदी सिनेमा के बहुमुखी प्रतिभा के धनी निर्माता, निर्देशक और गीतकार सावन कुमार टाक को, जिनकी पुण्यतिथि पर उनके रचे और उनकी निर्देशित फिल्मों के गीतों के साथ उन्हें संगीत के सुरों में आज हम याद करेंगे। कभी गीतकार बनकर, कभी भावनाओं को शब्द दिए, तो कभी निर्देशक बनकर उन भावनाओं को पर्दे पर साकार किया। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही सावन कुमार टाक के कुछ गीत। पहले सुनिए ये संदेश।
1: कुछ दिल ने कहा,
2: सुनहरे ख्वाबों वाली एक लड़की।
3: अगर मेरी माँ बायोलॉजिकल मदर है तो टेक्निकल मदर मेरी विविध भारती है,
2: जिसे बचपन से ही गाने का शौक था।
3: कुर्सी पे बैठ के गा रहे थे और उसको लगा ट्रांजिस्टर ऑन छूट गया है।
1: हम चले तुम चलो सावन की हवा चले।
2: उसने तोड़े पारंपरिक समाज के बंधन।
3: अब जब हम बाइक लेके निकल गए, जब तीन चक्कर लग गया तब याद आया ये तो अब रोकना ही नहीं आता है।
2: एक कामयाबी जो मिलते मिलते रह गई।
3: कभी सोचते ही नहीं थे कि हम हारेंगे।
2: जिंदगी ने करवाया एक लंबा इंतजार।
1: सुंदर सपनों की है मंजिल कदम के।
2: संघर्ष की डाल पर कामयाबी का फूल खिला।
1: जैसे तो है पास मेरे, तेरे पास मैं।
2: जानी मानी गायिका दीपाली सहाय, बॉम्बे टॉकीज, 29 अगस्त से 12 सितंबर, हर शनिवार शाम 4 बजे, सिर्फ विविध।

साथियों, आप विविध भारती से इस समय सुन रहे हैं यादों की महफिल कार्यक्रम। और आपको बता दें कि आज दिन में 4 बजे सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे अभिनेता यशपाल शर्मा और अभिनेत्री प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत का भाग 2। और इस समय कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।

यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सौतन फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। सावन कुमार टाक ने इसे लिखा है और उषा खन्ना ने इसकी तर्ज बनाई है।

0: कसम, खाओगे ना?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: हाँ,
1: तेरी कसम आऊंगा।
2: महेश और किशोर का संगीतबद्ध किया ये गीत सुनिए। इसे रचा है सावन कुमार ने, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें। फिल्म का नाम सनम बेवफा।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: और आइए अब आपको सुनवाते हैं येसुदास और अनुराधा पौड़वाल के आवाजों में साजन बिना सुहागन इस फिल्म का गीत। इंदिवर की रचना, उषा खन्ना ने इसकी तर्ज बनाई है।

0: बेवफा से वफा इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। सावन कुमार ने इसके बोल लिखे थे, उषा खन्ना का संगीत।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत।

0: साजन की सहेली इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे उषा खन्ना का संगीत। और साथियों, इस गीत से पहले जो गीत आपको सुनवाया वो था फिल्म लैला से, जिसे गाया था लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह ने। सावन कुमार के ने इसके बोल लिखे थे और उषा खन्ना का संगीत।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: यादों के महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सावन कुमार का रचा ये गीत। उषा खन्ना ने इसकी तर्ज बनाई है, आशा भोसले की आवाज, फिल्म का नाम अब क्या होगा।

इस गीत के साथ ही आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। और साथियों आपको बता दें कि आज आप इस कार्यक्रम में सुन रहे थे सावन कुमार टाक के लिखे हुए या फिर उनके निर्देशित फिल्मों से गीत। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप हमारे फेसबुक पेज पर जरूर बता सकते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमारा अगला कार्यक्रम सुरीला सफर होगा थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आपके साथ मैं हूँ नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। जी हाँ साथियों, ये वही कार्यक्रम है जिसमें हम एक पहेली लेकर आते हैं इबारत के रूप में। आपको बुझानी होती है पहेलियां और बताने होते हैं वो शब्द जिनसे आज गीत बजने वाले हैं। तो चलिए जान लें एक बार कि कौन सी है वो पहेली और फिर आप बताएंगे वो शब्द। ध्यान से सुनिएगा। बात एक रात की थी, आसमान में चांद निकला था। खिड़की पर बैठी ज्योति अपने साजन का इंतजार कर रही थी। हवा चली तो दिलबर की याद आई, याद आई तो नैना भर आए। तभी दूर से किसी के आने की आहट महसूस हुई। दिल ने कहा, वो आ गया। पर ये क्या, ये तो बरसात की बूंदे थी। उदास मन लेकर ज्योति अंदर जा ही रही थी कि तभी सामने से कोई आया। चेहरे पर मुस्कान थी, हाथों में फूल थे, आंखों में प्यार था और लबों पे इजहार था। हाँ, यही तो था वो दीपक जिसका ज्योति को इंतजार था। इस पहेली को लेकर आप सभी ने कई सारी बातें लिखी हैं और उन कमेंट्स को भी आगे हम पढ़ेंगे, मगर एक बात हम आपको आज की इबारत को लेकर बता देते हैं। तो वो बात ये है कि अक्सर हम जब पहेली बताते हैं, कोई पहेली सुनाते हैं या इबारत पढ़ते हैं, तो उसके जो शब्द होते हैं उनसे कोई भी गीत हो सकता है, मगर आज के जो गीत हैं उनसे कहानी बननी चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए ना आज के कार्यक्रम में आपको क्या करना है। तो यूं तो अब उदाहरण के लिए आपको मैं एक बताती हूं, जैसे ज्योति शब्द से हो सकता है आप समझे ज्योतिष कलश छल के ये गीत बजेगा, और फूल से शायद आप समझें कि फूल तुम्हें भेजा है खत में ये गीत बजेगा। मगर नहीं, आज जो गीत बजेंगे वो कहानी के रूप में होंगे, यानी कि वो गीत ना सिर्फ शब्दों से जुड़ते हैं बल्कि पूरी पहेली की कहानी से जुड़ते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का, और पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं काला बाजार फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। पहचानिए वो शब्द।

इस गीत में जो शब्द था, जी हाँ, वो यही शब्द था चांद। और शायद आप समझ गए होंगे कि चांद शब्द से और भी गीत हो सकते थे, मगर चूंकि इनमें नींद ना आने की बात हो रही है तो ये हमारी कहानी से जुड़ता है, जो कहानी हमने पहेली में बताई है। हमारे एक साथी ने लिखा है कि दीपक अकेला हो तो बस एक दीपक है, ज्योति के साथ हो तो उजाला बन जाता है। शायद इसी को साथ की खूबसूरती कहते हैं, जहां एक की मौजूदगी दूसरे को अर्थ दे। दीपक और ज्योति हमें यही सिखाते हैं कि किसी की कीमत हमेशा अकेले नहीं आंकी जाती, कभी कभी किसी के होने से ही हमारी रोशनी पूरी होती है। एक छोटी मगर प्यारी सी बात, दीपक की सुंदरता ज्योति से है और ज्योति की पहचान दीपक से। दोनों साथ हों तो अंधेरे में भी उम्मीद दिखाई देती है। एक साथी लिखते हैं, आज की इस लघु कथा का सबसे भावुक क्षण वो है जहां उम्मीद भ्रम में बदलती है। बारिश की बूंदों को साजन के कदमों की आहट समझ बैठना विरह की उस गहरी अवस्था को दर्शाता है, जहां मन हर आवाज में अपने प्यार को ढूंढने लगता है। उस भ्रम के टूटने पर उपजी मायूसी दिल को छू जाती है। जिस तरह दीपक के बिना ज्योति का कोई अस्तित्व नहीं और ज्योति के बिना दीपक अधूरा है, उसी तरह दोनों का मिलन प्रेम की पूर्णता को दर्शाता है। चलिए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं शराबी फिल्म से, किशोर कुमार की और आशा भोसले की आवाजों में। अनजान के बोल हैं और बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

0: एक साथी लिखती है, इंतहा हो गई इंतजार की। ये गाना इंतजार सच्चे प्रेम और बेचैनी की भावनाओं का एक बेहतरीन और क्लासिक उदाहरण है। किशोर कुमार के दर्द भरे और रोमांटिक अंदाज तथा आशा भोसले के जवाब ने इस गीत में जान फूंक दी है। बप्पी लाहिड़ी का धीमा और कर्णप्रिय संगीत शब्दों के असर को और ज्यादा गहरा कर देता है। अमिताभ बच्चन का अभिनय और गाने के बोलों में निहित भरोसा कि बेवफा वो नहीं, इस गीत को एक अमर रोमांटिक रचना बनाता है। आपको बता दें, इस गीत को लिखा अनजान और प्रकाश मेहरा ने। एक साथी ने लिखा है, आज का गद्यांश प्रवास जनित वियोग श्रृंगार से संयोग श्रृंगार में संक्रमण को बहुत गहराई से दर्शा रहा है। खिड़की पर सजनी आसमान में चांद को देखते हुए बैठी है और हवा के झोंकों से उसके नयन भर आए हैं। बारिश की बूंदों से आने वाली आवाज से भ्रमित होकर उसे साजन के आने की आहट जान पड़ रही है। वो बहुत उदास है, ये वियोग की तीव्र पराकाष्ठा है और ऐसे में हाथों में फूल चेहरे पर मुस्कान लिए साजन का आना मानो योग के अंधकार के बाद मिलन के प्रकाश यानी संयोग श्रृंगार की अनुभूति होने लगी है। सच्ची प्रतीक्षा प्रेम को परिपक्व और गाढ़ा करती है। ऐसे में प्रेमियों का मिलन अपने चरमोत्कर्ष पर रहता है।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है, जहाँ उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय की दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: अब देखिए साथियों, बैठी है वो खिड़की पर अपने साजन को याद करते हुए और दुखी हो रही है। तो चलिए ये अगला गीत सुनवाते हैं। दो बदन फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी की रचना और तर्ज बनाई है रवि ने। शब्द पहचानिएगा आप।

0: तो देखिए कहानी बन रही है या नहीं। जैसे जब पहला गीत था लो आ गई उनकी याद, तो हमारी जो नायिका है यानी कि ज्योति, वो अपने दिल ही दिल में कह रही है कि उनकी याद तो आ गई पर वो नहीं आए। तो इसमें याद शब्द था, और इसी तरह ये जो गीत था नैना, इसमें शब्द नैन इन्हें लिया गया था कि अब पिया की याद में उस बिरह में वो रो रही है, आंसू बहा रही है। हमारे एक साथी लिखते हैं, जब हमारी सगाई हुई थी कुछ दिनों बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरी होने वाली धर्म पत्नी अपनी बड़ी बहन के पास अजमेर से जयपुर गई हुई है। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों मेरी जॉब के कारण मीटिंग भी जयपुर में थी, पर संस्कारों के कारण मिलने तो नहीं जा सकता था और मोबाइल भी उन दिनों नहीं थे। मीटिंग के बाद मैं ये गीत गुनगुनाया करता था और मन को तसल्ली देता था, खोया खोया चांद खुला आसमान, आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, हम दोनों एक ही शहर जयपुर में हैं पर मिल नहीं पा रहे। जी हाँ, ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं, और आपने अपनी बात साझा की, हमें अच्छा लगा। आइए अब अगला गीत सुनेंगे, मगर पहले ये संदेश।
1: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
2: मिलो जो तुम्हें बताए।
1: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
3: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
1: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: इस संदेश से पहले आपने जो गीत सुना वो था वो कौन थी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज, और इसे

रखा था राजा मेहदी अली खान ने, संगीत था मदन मोहन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं हकीकत फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा है, मदन मोहन का संगीत। आप बताइएगा कहानी में कौन सा शब्द जुड़ता है।

आप सभी ने बिल्कुल सही पहचाना है, ये शब्द था आहट। और एक साथ ही लिखते हैं, इबारत से उठाए शब्द से गीत और गीतों में छिपी इबारत की कहानी, ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है। गीत, हर गीत में कहानी होती है, चांद शब्द पर चांद फिर निकला, इस गीत में भी तो कहानी है। इंतजार शब्द वाले आपने चुने गीत के साथ, दूसरे गीतों में भी तो कहानी है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई दूसरा गीत भी हो सकता है कि यहाँ पर जुड़ता हो। मगर उदाहरण के लिए आपको बताया जाए तो जैसे एक लाइन मैंने आप लोगों को असमंजस में डालने के लिए लिखी थी, वो आ गया और उसे पढ़ा भी इसी तरीके से था ताकि थोड़ा सा मस्ती मजाक किया जाए और आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज किया जाए, थोड़ा असमंजस में डाला जाए। तो अब चूंकि अगर ये गीत लिया जाता तो जो हमारे प्रोग्राम का जो एक तारतम्यता चल रही है, क्योंकि गीत के भाव अलग हैं, गीत जोश भरा है, तो यहाँ वो फिट नहीं बैठता। तो बस उसी को बताया जा रहा है कि कुछ गीत ऐसे हो सकते हैं, मगर हमने उन गीतों को चुना है जो कहानी में फिट होते हैं। और ऐसे और भी गीत हो सकते हैं, हो सकता है आपने जो बताया वो भी गीत ऐसे ही हो। जैसे कि देखिए, एक साथी ने लिखा है, कहा जाता है कि जो बात होठ तक होठ नहीं कह पाते वो नैना कह देते हैं। किसी के प्रति स्नेह हो, बिछड़ने का दुख हो या मिलन की खुशी, हर भावना सबसे पहले आंखों में झलकती है। यही कारण है कि कवियों ने नैनों को हृदय का दर्पण कहा है। एक साथी ने लिखा है, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए, ये वेदना उस नारी की है जो बेबस है, लाचार है परंतु चाहत से लबरेज है। तो आइए इसी तारतम्य में सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है पेंटर बाबू। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और साथियों ने, कमर जलालाबादी और मनोज कुमार ने इसे लिखा है, उत्तम सिंह और जगदीश खन्ना का संगीत।

0: तो इस गीत का शब्द था बरसात, जिसमें नायिका यानी कि ज्योति अपने साजन को बुला रही है कि बरसात में आ, क्योंकि बरसात की जो बूंदे हैं उसी की आहट से तो उसे लगा था कि शायद ये उसी का हमदम है, लेकिन वो तो बरसात की बूंदे निकली। एक साथी ने लिखा है, आहट गजलों का राजा कहा जाता है और इस गीत में उन्होंने संगीत को बहुत ही धीमा और गंभीर रखा है। गीत की धुन में एक अजीब सी खामोशी और ठहराव है जो अकेलेपन के एहसास को और गाढ़ा करता है। वायलिन और गिटार का न्यूनतम उपयोग गीत के दर्द को उभरने का पूरा मौका देता है। हमारे कई साथियों ने इस गीत को लेकर अपनी टिप्पणियां लिखी हैं कि कई दिनों बाद उन्होंने गीत सुना और उन्हें पसंद आया। एक साथी लिखते हैं, आज के सुरीला सफर कार्यक्रम की इबारत में एक लाइन लिखी है, वो ये कि हवा चली तो दिलबर की याद आई। दिलबर की याद है या कोई एसी कूलर पंखा है कि जिसके आते ही हवा चलने का एहसास शुरू हो जाता है? चलिए, ये तो आपने लिखी मजाक की बात, मगर ऐसा है जनाब कि कुछ अनुभव जो होते हैं वो जब आप खुद अनुभव करते हैं तभी समझ आते हैं। चलिए फिलहाल सुनिए ये संदेश, फिर सुनवाएंगे आगे के गीत।
1: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
2: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
1: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
3: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
1: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
0: ज्योति की कहानी एक मोड़ लेने वाली है। जैसा कि बात एक रात की थी, आसमान में खोया खोया चांद निकला था। खिड़की पर बैठी ज्योति ने अपने साजन का इंतजार किया, लेकिन इम्तिहा हो गई थी इंतजार की। फिर उनकी याद आई, हवा चली तो दिलबर की याद आई, तो गीत बजा, लो आ गई उनकी याद, पर वो नहीं आए। और इसी के साथ याद आई तो नैन भर आए, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम। उसके बाद दिल ने कहा वो आ गया, पर उससे पहले तभी दूर से किसी के आने की आहट महसूस हुई। तो जरा सी आहट हुई तो लगा कि वो तुम ही हो। दिल ने कहा वो आ गया, पर ये क्या, ये तो बरसात की बूंदे थी। उदास मन लेकर ज्योति अंदर जा ही रही थी कि

जवानी दीवानी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और राहुल देव बर्मन का संगीत। अब ज्योति के सामने तो वो आ गया है, अब क्या होगा सुनिए इस गीत में। फिल्म का नाम कभी कभी, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, खयाम का संगीत।

चेहरा, ये शब्द इस गीत में था। चेहरे पर मुस्कान थी, हाथों में फूल थे, आंखों में प्यार था और लबों पे इजहार था। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत, आवाज मोहम्मद रफी की और सूरज फिल्म से ये गीत है, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

मेरा महबूब आया है। जी हाँ, तो जैसे हमारी कहानी चल रही है ज्योति और दीपक की, तो अब ज्योति का दीपक उसके सामने आ गया है। और इसी के साथ हमारी एक साथी ने लिखा है कि बहारों फूल बरसाओ, ज्योति का दीपक आया है, हवाओं रागिनी संभल कर गाना, क्योंकि

ज्योति का दीपक आया है। और हाँ, यही तो था वो दीपक जिसका ज्योति को इंतजार था। इसी के साथ सुनवाते हैं आपको गायत्री महिमा इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। भरत व्यास के बोल हैं और चित्रगुप्त का संगीत।

साथियों, कार्यक्रम का समय हो चला है। सुरीला सफर कार्यक्रम अब हमें ना चाहते हुए भी यहीं पर संपन्न करना होगा। इस गीत को फिर कभी पूरा सुनवाया जाएगा, फिलहाल आप इसका सिर्फ मुखड़ा सुन पाए हैं। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। दीजिए अपनी साथी नेहा अगरकर देसाई को इस कार्यक्रम से आज्ञा। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आज की त्रिवेणी में नेत्रदान की बातें होंगी। वैसे तो शरीर के सभी अंग समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, फिर भी आंखें कुछ अधिक विशेष मानी जा सकती है। ये हमें दृष्टि प्रदान करती हैं और दुनिया की सुंदरता का आनंद लेने में सक्षम बनाती हैं। अगर दृष्टि नहीं है तो पूरी दुनिया हमारे लिए अंधकारमय हो जाती है। आंखों में दृष्टि होना ईश्वर का दिया हुआ एक अनुपम उपहार है, किंतु सभी लोगों के पास ये उपहार नहीं होता है। कई लोग इससे वंचित रह जाते हैं। कारण कई होते हैं। कुछ लोग जन्म से ही दृष्टि बाधित होते हैं। कुछ लोगों में मोतियाबिंद, ग्लूकोमा या कॉर्निया की खराबी की वजह से दृष्टि चली जाती है। इनमें से अधिकांश खराबियों का इलाज संभव है और ये संभव हो सकता है नेत्रदान के माध्यम से।

कहा जाता है कि नेत्रदान महादान होता है। नेत्रदान का महत्व अनमोल है। ये दान दृष्टिहीन व्यक्तियों को नई उम्मीद और नया जीवन देता है। ये उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। अक्सर लोगों के मन में नेत्रदान को लेकर कई तरह के भ्रम होते हैं। विशेषज्ञ ये बताते हैं कि मृत्यु के बाद नेत्रदान करने की प्रक्रिया में केवल 20 से 30 मिनट का समय लगता है। नेत्रदान में पूरी आंख भी नहीं निकाली जाती, बल्कि आंख के सामने का जो पारदर्शी हिस्सा होता है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है, वही दान किया जाता है। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है। जागरूकता की कमी और सामाजिक बाधाओं के कारण नेत्रदान को अभी तक उतना महत्व नहीं मिल पाया है, इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम सभी नेत्रदान के महत्व को समझें।

नेत्रदान वास्तव में एक दिव्य कार्य है, किसी को प्रकाश का उपहार देकर और उन्हें रंगों से परिपूर्ण संसार देखने का अवसर देने से बढ़कर और क्या नेक कार्य हो सकता है। जो लोग मृत्यु के बाद अपनी आंखें दान करना चाहते हैं, उन्हें अपनी इस इच्छा को घर वालों को बताना होगा, उसके बाद नेत्र बैंक को इस बारे में सूचित करना होगा। इस तरह नेत्रदान की प्रक्रिया सरल हो जाती है। नेत्रदान केवल एक चिकित्सकीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल है। जब हम नेत्रदान का संकल्प लेते हैं तो यह कई लोगों के लिए आशा की किरण बन जाता है जो लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नेत्रदान से दृष्टिबाधित लोगों को अंधकार से निकलकर प्रकाशमय दुनिया में कदम रखने की संभावना मिलती है। ये एक ऐसा अनूठा तरीका है जिससे हम एक ऐसी विरासत छोड़ सकते हैं जो हमारे जीवन काल के बाद भी कायम रहती है। ये परोपकार का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

0: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहां, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
0: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
2: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमरीका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। और कोलंबो में भारत के साथ अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने पहली पारी में 7 विकेट पर 173 रन बनाए। श्रीलंका 330 रन से पीछे है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 1 दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। गृह मंत्री अमित शाह ने यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डिजिटल इंडिया ने लोगों को तेज, आसान और सुरक्षित डिजिटल भुगतान की सुविधा दी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की शुरुआत आज ही के दिन 2016 में हुई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
2: यूपीआई भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है और यह लोगों को बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। इसके माध्यम से लेन देन त्वरित, सरल और अधिक सुलभ हो गया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल संवाददाताओं को बताया कि करीब 2,30,000 आवेदकों में से अब तक 23,000 लोगों को पात्र मानते हुए नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाकी आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और संबंधित जिला अधिकारियों के माध्यम से प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों से CAA के अंतर्गत नागरिकता के लिए आवेदन करने का आग्रह किया। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
1: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने गुजरात में साइबर आतंकवाद से जुड़े मामले में कल 5 राज्यों में छापेमारी की। ये तलाशी महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, बिहार और दिल्ली में की गई। ये मामला पिछले वर्ष गुजरात में दर्ज किया गया था। आरोपियों ने कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार की 54 वेबसाइटों पर बड़ी संख्या में फर्जी अनुरोध भेजकर उसे बाधित करने वाले साइबर हमले किए। इन हमलों में महत्वपूर्ण कंप्यूटर संसाधनों और सूचना बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। दोनों नेता अन्य द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। श्री डोभाल और श्री वांग की वार्ता से पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता चीन के साथ अच्छे संबंधों के लिए पूर्व शर्त है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारत चीन सीमा मामलों पर विशेष प्रतिनिधि अजीत डोभाल ने आज चीन के उपराष्ट्रपति हान चेंग से मुलाकात की। पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता से पहले दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के तरीकों पर चर्चा की। श्री डोभाल और श्री हान ने आर्थिक, राजनीतिक और बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज जापान के प्रमुख वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में भारत में दीर्घकालिक निवेश बढ़ाने और भारत जापान आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने रूस में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के 27वें सत्र की संयुक्त अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने भारत रूस आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच वस्तुओं का व्यापार 4 गुना से अधिक बढ़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन में वृद्धि करना है।
4: तकनीक का हस्तांतरण एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे देश की कंपनियों को ज्यादा भागीदारी का मौका मिलेगा। इससे वे जरूरी योग्यता प्रमाण पत्र और सरकारी नियमों का पालन करते हुए देश में ही इस तकनीक से रक्षा क्षेत्र से जुड़े उपकरणों का उत्पादन कर सकेंगे। इससे मिसाइल प्रणाली के विकास के बाद उसे बड़े स्तर पर औद्योगिक उत्पादन में लाना आसान होगा। यह भारतीय उद्योग की क्षमता का उपयोग करके उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण को बढ़ावा देने के DRDO के प्रयासों का दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में रक्षा उपकरण तैयार करने की क्षमता को बढ़ाना, रक्षा उद्योग को मजबूत करना और भारतीय MSME कंपनियों तथा अन्य तकनीकी भागीदारों को इस उत्पादन श्रृंखला में शामिल करना है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि भारत की डिजिटल कनेक्टिविटी का मतलब केवल लोगों को जोड़ना नहीं बल्कि भरोसेमंद, सुरक्षित और मजबूत नेटवर्क तैयार करना भी है। नई दिल्ली में आज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C.DOT के 43वें स्थापना दिवस पर श्री सिंधिया ने दूरसंचार क्षेत्र में C.DOT की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की।
5: It will be defined by ensuring that connectivity and the networks that we evolve.
6: यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे द्वारा विकसित की जाने वाली कनेक्टिविटी और नेटवर्क विश्वसनीय, मजबूत और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सुरक्षित हों। आज भारत अपनी विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और साथ ही C.DOT प्रयोगशाला से बाजार तक, अनुसंधान से विकास तक और फिर अपने विकसित उत्पादों के वैश्विक विपणन की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है।
1: नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में देश में कार्गो परिचालन में लगातार वृद्धि हुई है और इसकी मात्रा करीब 40% बढ़ी है।
7: Like to congratulate FedEx and Delhi GMR Airport.
8: मैं फेडेक्स और दिल्ली GMR एयरपोर्ट को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक समर्पित एयर कार्गो सुविधा विकसित करने के लिए साझेदारी करने पर बधाई देना चाहता हूं। पिछले कुछ वर्षों में कार्गो परिचालन में लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इसलिए इसमें काफी संभावनाएं हैं और हमने सभी नेटवर्क में भी अच्छा बदलाव देखा है। इसी तरह विमानन क्षेत्र में भी हम देश भर में वैश्विक मानकों के अनुरूप एयर कार्गो सुविधाएं विकसित करना चाहते हैं।
7: वी वांट टू क्रिएट ग्लोबल स्टैंडर्ड एयर कार्गो फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री।
1: एयर इंडिया की फुकेत दिल्ली उड़ान से जुड़ी घटना पर श्री नायडू ने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो मामले की छानबीन कर रहा है और इसकी प्रारंभिक रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है। रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव संजीव कुमार ने कहा है कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013-14 में 43,000 करोड़ रुपए था। नई दिल्ली में राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि देश में रक्षा विनिर्माण का तंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। सरकार ने शुल्क मुक्त आयात की गई कच्ची चीनी के प्रसंस्करण और बिक्री की समय सीमा में बदलाव किया है। अब आयातकों को बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने की तारीख से 2 महीने के भीतर कच्ची चीनी को सफेद चीनी में बदलकर घरेलू बाजार में बेचना होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि संसद किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि भारत की जनता की है। एक अंग्रेजी दैनिक में आज प्रकाशित लेख में उन्होंने कहा कि सरकार ने महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और बातचीत के लिए कई प्रयास किए हैं। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर चर्चा और बहस के लिए दिए गए प्रस्तावों को ठुकराने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को घोषित सप्तधारा को विकसित भारत बनाने का रोडमैप बताया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा ने कहा कि सप्तधारा में विनिर्माण शक्ति, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था तथा सॉफ्ट पावर शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग ने H-1B वीजा की तय सीमा के अंतर्गत सभी आवेदनों पर मौजूदा शुल्कों के अतिरिक्त $1,03,000 का नया शुल्क प्रस्तावित किया है। इसमें उच्च डिग्री धारकों के आवेदन भी शामिल हैं। विभाग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार प्रस्तावित शुल्क आवेदन दाखिल करते समय लिया जाएगा। विभाग के अनुसार H-1B वीजा की निर्धारित सीमा के तहत आने वाले अनुमानित 85,000 आवेदनों के आधार पर इस शुल्क से प्रतिवर्ष लगभग 8,80,00,000,000 अमरीकी डॉलर का राजस्व प्राप्त होगा। मौसम विभाग ने झारखंड में 27 अगस्त तक 10 जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
9: IMD रांची के अनुसार पश्चिम बंगाल, उत्तरी ओडिशा और उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के

0: छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों पर आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तेज बारिश के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। 18 उड़ानें आज रद्द करनी पड़ी जबकि 146 उड़ानें देरी से चल रही हैं। क्रिकेट में कोलंबो में भारत के साथ दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 177 रन बना लिए थे। श्रीलंका भारत से 326 रन पीछे है। इससे पहले भारत ने अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई को भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में महत्वपूर्ण क्षण बताया। 11 देशों में शुरू होने के साथ यूपीआई को वैश्विक पहचान मिली। सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत सुनवाई करने और पात्र आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भारत चीन सीमा विवाद पर वार्ता करेंगे। अमरीका ने तय सीमा के अंतर्गत सभी H-1B वीजा आवेदकों पर मौजूदा शुल्क के अतिरिक्त $1,03,000 का शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदा बहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं घूंघट फिल्म के इस गीत के साथ जिसे गाया है आशा भोसले ने, शकील बदायूनी की रचना है और तर्ज बनाई है रवि ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं दुर्गा माता इस फिल्म का गीत एस जानकी की आवाज में। इसे लिखा है साज ने और इसका संगीत बनाया है जी के व्यंकटेश ने।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: अभी आपने सुना चश्मे व दूर फिल्म का गीत, शैलेंद्र आनंद कुमार और ए हरिहरन की आवाजें थी। इंदु जैन ने इसे लिखा था, राज कमल का संगीत।
1: रंगमंच से रुपहले पर्दे तक कुछ अनकहे किस्से, कुछ यादगार किरदार।
2: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था, और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी।
1: अभिनय के दुनिया की बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा, सुनिए उनकी जिंदगी, उनके रिश्तों और सिनेमा की बातें।
3: पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें, और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 25 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं खयाम का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम बारूद।

सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और आइए इस कार्यक्रम का अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं, जमीन के तारे। इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, आनंद बख्शी ने इसे लिखा है और एस मोइंदर का संगीत। और इस गीत के साथ ही नेहा अगरकर देसाई को आज के इस कार्यक्रम से दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और आरती आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
2: सोनाली आपको और सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: क्या हालचाल?
2: बिल्कुल ठीक।
1: मजे में है?
2: बिल्कुल मजे में है और बस एंजॉय कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं इस मौसम का।
1: जैसे कि कभी कभी बारिश हो जाती है तो कभी हल्की हल्की धूप खिलने लगती है।
2: बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि हाँ धूप को हम मिस कर रहे हैं या कोई हम बारिश को मिस कर रहे हैं, कि दोनों आराम से चल रही है बस लगातार।
1: और विविध भारती से जुड़े हुए हैं तो और भी आनंद है साथ में।
2: बिल्कुल। और हम बता दें अपने जो श्रोता मित्र हैं उनको कि आज हम कौन कौन से विषय लेकर आए हैं।
1: नेकी और पूछ पूछ।
2: तो हम आज लेकर आए हैं घर या पुराने सामान का गोदाम, जो अक्सर हमारा घर बन जाता है सुनाली।
1: यानी हर घर का यही हाल होता है ना?
2: बिल्कुल।
1: यानी हम थोड़े से ना लालची हो जाते हैं उस वक्त कि अरे ये प्लास्टिक की बोतल है, अरे काम में आ जाएगी।
2: बिल्कुल यही होता है सोनाली, सच बताऊं, अगर जब हम घर साफ कर रहे होते हैं ना उस समय हम सोचते हैं कि चलो सफाई कर दे, जो बेकार के सामान है वो फेंक देंगे, लेकिन वो चीज जो होती है ना वो हो नहीं पाती है।
1: घर में का कोई एक सदस्य कह देता है रुको रुको फेंको मत, फेंकना मत। पुराने टायर कह लीजिए, प्लास्टिक की थैलियां तो ऐसी होती है,
2: उन्हें तो हम खास तौर पर संभाल के रखते हैं।
1: हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं फेंकना मत, कुछ फेंकना होगा, कुछ देना होगा, कुछ करना होगा। या फिर जब हम रेस्टोरेंट से खाना मंगवाते हैं तो उसके जो प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं वो भी हम जमा करके रखते हैं कि कोई रिश्तेदार आएंगे तो उनको हमके कुछ भर के देना होगा, अगर हमें तो उसमें हम भर के देंगे। तो ऐसे ही हम लोग स्वार्थी हो जाते हैं, पर ये बहुत कह लीजिए कि गलत आदत है, क्योंकि हमारा घर जो है पुराने सामान का गोदाम बन जाता है। तो इस विषय पर हमारे श्रोताओं ने भी भर भर के कमेंट्स लिखे हैं।
2: जी हाँ, तो हम जानेंगे उनका अनुभव क्या है घर का, वो कितने लालची बनते हैं या नहीं बनते हमारी तरह,
1: या फिर वो अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं और बिल्कुल तुरंत से सामान फेंक देते हैं।
2: बिल्कुल। और हम साथ में लेकर आए सखी विशेष के अंतर्गत हेमलता अन्नमलई, जो की सह संस्थापक है एमपीआर व्हीकल्स की, उनके बारे में आज बात करने वाले हैं।
1: और हल्की फुल्की बातें इसमें पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी।
2: अरे ये तो सच में ऐसा विषय है ना
1: कि मजेदार।
2: हाँ, सखा हमारे बताएं, खास तौर पर हम सखाओं से अपने कहेंगे वो बताएं अपने अनुभव की वो कैसी, वो जब सब्जी लेकर आते हैं बाहर से या फल लेकर आते हैं तो घर में क्या होता है, मतलब कुछ ऐसा उनकी डांट पड़ती है या फिर खुश हो जाते हैं?
1: कल ही तो भिंडी की सब्जी खाई थी, फिर आज भिंडी उठा के लेके आ गए, या फिर करेले सबने खाते तो भी एक किलो करेले लेकर आ गए। इस तरह से होता है, हर घर का माहौल होता है। और फिर जी को यानी जो घर की जो होती है श्रीमती जी, उन्हें लगता है अरे यार इन्हें फालतू ही कह दिया सब्जी तो लाने के लिए।
2: बिल्कुल, फल लाएंगे तो वो एकदम से मुरझाए हुए से है ना, जो खाते ना बने कि उनको रखो, उनको सही से रख भी नहीं सकते,
1: फेंक भी नहीं सकते, रख भी नहीं सकते।
2: बिल्कुल। तो इस तरीके के आप अपने अनुभव बताइए हमें, ताकि हम भी आपके साथ में वो हंसी को साझा कर सके।
1: वो चटपटे अनुभव होंगे, चुटीले अनुभव होंगे, तो हमें भी बहुत मजा आएगा, हम भी हंसेंगे उन अनुभवों का पढ़ के।
2: बिल्कुल। और साथ ही हम बात करेंगे मुहावरों की। तो आज हम जो मुहावरा लेकर आए हैं सोनाली, वो है घाव पर नमक छिड़कना।
1: बहुत अक्सर होता है बहुत लोगों में, यानी कि ऐसा होता है ना कि कभी किसी के बच्चे का रिजल्ट थोड़ा सा बिगड़ गया है तो जानबूझ के लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, बच्चे का रिजल्ट क्या हुआ, पता होता है कि उसे थोड़े कम नंबर आए हैं या फिर अनुत्तीर्ण हो गया है। बहुत से लोगों की आदत होती है, पर ये बहुत गलत आदत है। तो आपके अनुभव भी साझा कीजिए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है
2: या
1: क्या?
2: आपने तो कभी ऐसा नहीं किया किसी के साथ। जी। तो ये सब हम लेके विषयों पे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हम करते हैं गीत से।
1: सुनते हैं गीत।

0: किसकी घर चोरी करने जा रही है छोटी? हम वैसे घरों में चोरी नहीं करते, हम दिलों की चोरी करते हैं।
1: ये तो आपने बहुत सही बात कही है ना।
0: बिल्कुल। और तो आज हम अपनी एक बहुत ही अच्छी सखी, समझ लीजिए सखी विशेष की हम बात करने जा रहे हैं,
1: प्रेरणादायी।
0: बिल्कुल, जिन्होंने जो प्रेरणा का काम किया है, इतना अच्छा काम किया है कि हम लोग को उनसे सीखना चाहिए कि हम अपने जीवन में किस तरीके से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो और हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि हमें इंतजार रहता है हर बार इस तरह की जब आप प्रेरणादायी कहानी बताते हैं, तो सचमुच हम महिलाओं के लिए नहीं पुरुषों के लिए भी एक प्रेरक बात होती है।
0: बिल्कुल। और क्योंकि इस तरीके की जो जब हम लोगों के बारे में जानते हैं, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में समझते हैं, तो क्या रहता है ना कि हमें भी ये इस बात का एहसास होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, है ना।
1: तो आज हेमलता अन्नामलाई जिन जो सह संस्थापक है एम्पियर व्हीकल्स की, तो आज हम बात कर रहे हैं इनके बारे में जो कि भारत की उन महिला उद्यमियों में से गिनी जाती है जिन्होंने उस समय इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कदम रखा जब भारत में ई मोबिलिटी अपने शुरुआती दौर में थी। और हेमलता का जन्म तमिलनाडु के सलेम में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक प्रोफेसर और माँ शिक्षिका थी।
0: बिल्कुल। उनका मानना है कि उनके बचपन का सबसे अच्छा पहलू वो स्वतंत्रता थी जो उनके माता पिता ने उन्हें दी थी। इसी स्वतंत्रता ने उन्हें अपनी रुचि के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। और हेमलता ने कोयम्बटूर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है।
1: और इसके बाद हेमलता ने ऑस्ट्रेलिया के रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IMIT से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। और हेमलता ने लगभग 27 वर्ष की उम्र में उद्यमिता की शुरुआत की। इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में आने से पहले उन्होंने प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग टूर और टिकटिंग और टैलेंट एक्विजिशन जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया।
0: बिल्कुल। और इस कारण उन्हें एक सीरियल एंटरप्रेन्योर के रूप में भी जाना जाता है, यानी उन्होंने बहुत सारे काम पहले करके देखे। ऐसा नहीं कि एकदम से उनको सफलता हाथ लग गई, बहुत सारे कामों को उन्होंने आजमाया, बहुत सारी चुनौतियों को उन्होंने झेला। और उनका कहना है कि उद्यमिता के क्षेत्र में हर नया दिन अपने साथ नई चुनौतियों और विजय को लेकर आता है, लेकिन मिलने वाला अनुभव अनमोल होता है। बाद में जब वो अपने पति के साथ जापान यात्रा पर गई, वहां एक सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों और आंतरिक दहन इंजन के भविष्य पर हुई चर्चा ने उन्हें काफी प्रभावित किया।
1: और उन्हें महसूस हुआ कि भारत में भी कम लागत वाले इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बड़ी संभावना है। इसी बात ने उन्हें एम्पियर इलेक्ट्रिक की नींव रखने के लिए प्रेरित किया। उनका उद्देश्य केवल इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना नहीं था, वे एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विकसित करना चाहती थी जो सस्ती, उपयोगी और ग्रामीण के साथ छोटे शहरों के लोगों के लिए भी व्यवहारिक हो।
0: जी। और उनकी कंपनी ने इलेक्ट्रिक साइकिल, स्कूटर, तीन पहिया और विभिन्न उपयोगों के लिए लोड कैरियर जैसे वाहन विकसित किए। किसानों, दुकानदारों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्पादनों ने विकसित किए थे। और कंपनी ने कचरा संग्रहण और अन्य उपयोगों के लिए इलेक्ट्रिक लोड कैरियर विकसित किए।
1: और उनकी उद्यमशीलता की एक खास विशेषता थी कि उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहनों को केवल बड़े शहरों और उच्च आय वाले ग्राहकों तक सीमित नहीं माना। हेमलता का मानना था कि इलेक्ट्रिक वाहन भारत के लिए केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि ऊर्जा बचत, रोजगार और सामाजिक विकास का माध्यम भी बन सकते हैं। जब हेमलता ने इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण शुरू किया तब भारत में ईवी उद्योग आज की तरह विकसित नहीं था।
0: बिल्कुल। उनके सामने कई चुनौतियां थीं जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति सीमित जागरूकता, उपभोक्ताओं का पारंपरिक पेट्रोल वाहनों पर भरोसा, बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण घटकों की उपलब्धता, निर्माण क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता विकसित करना, निवेश और पूंजी जुटाना, कुशल कर्मचारियों और टीम का निर्माण करना, ग्रामीण बाजार में नई तकनीकों स्वीकार करवाना।
1: और खास बात तो ये थी कि हेमलता का शुरुआती अनुभव ये था कि गैर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों में था, इसके बावजूद उन्होंने निर्माण क्षेत्र में प्रवेश किया और टीम के साथ तकनीकी ज्ञान विकसित किया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि महिलाएं केवल सेवा क्षेत्रों में नहीं बल्कि निर्माण और तकनीकी उद्योग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
0: बिल्कुल। अनुसंधान और विकास प्रारंभ से ही हेमलता की कंपनी की रीढ़ रहा है। इसके अलावा उनकी टीम ने बैटरियों के जीवन को बढ़ाने में उपयोगी एक चिप का भी निर्माण किया है। इस स्टार्टअप का दावा है कि ये तमिलनाडु और केरल में जो दिव्यांग जन है उनके लिए इलेक्ट्रिक वाहन तैयार करने वाली पहली कंपनी है।
1: क्या बात है। और इसके अलावा एमपीए ने कताई और कपड़ा मिलों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए त्रिशूल नाम का एक विशेष वाहन भी तैयार किया है। उनकी कंपनी ने लगभग 40% महिलाएं काम करती हैं। उनकी कंपनी के 3 पेटेंट रजिस्टर हो चुके हैं और भारत सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर से जुड़े इंडियन वुमेन इन एसटीईएम प्रकाशन ने उन्हें एंटरप्रेन्योर, एंजल इन्वेस्टर एंड मेंटर के रूप में प्रस्तुत किया गया।
0: इसमें उनके सामाजिक दृष्टिकोण और रोजगार सृजन पर भी जोर का भी उल्लेख है। वो ग्रीन कॉलर और एग्रीटेक सॉल्यूशंस की फाउंडर और वाइस चेयर के रूप में उल्लेखित हुई हैं। उनकी कहानी केवल एक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि तकनीक, पर्यावरण, रोजगार और सामाजिक जिम्मेदारी को एक साथ लेकर चलने वाली उद्यमिता का उदाहरण है।
1: और अब लेते हैं ब्रेक।

0: हमारा तो दिल यही लगता है.
1: सही बात है, क्योंकि नहीं इतनी अच्छी अच्छी कमेंट, इतनी अच्छी अच्छी से अपनी बातें, अपनी यादें साझा करते हैं ना जब सारे श्रोता, तो बहुत अच्छा लगता है उसे पढ़ के उनके साथ में एकदम उस चीज को साझा करते हुए ना.
0: आज तो आरती मैं सारे श्रोताओं के साथ सब्जी मंडी पहुंच गई हूँ.
1: हाँ सच में कितने अच्छे तरीके से सबने लिखा हुआ है ना.
0: अरे इतने मजेदार कमेंट्स है कि यहीं पे पढ़ते पढ़ते ही मैं हंसकर लोटपोट हो गई. एक हमारे साथी ने लिखा है कि भाई पुरुष और सब्जी की खरीददारी, हमारे घर सब्जी मेरी वाइफ ही खरीदती है, पर कई बार सब्जी लाना हो तो मुझे कॉल करके कहती है इतनी सब्जियां लेकर आना, लेकिन साथ में कौन सी सब्जी और कैसी क्या ये देखकर परख कर लेके आना, इसका पूरा ब्यौरा वर्णन भी करती है. जैसे कि बैंगन छोटे गोल और वजन में हल्का हो ऐसे लाना ताकि अंदर बीज ना हो, होल नहीं होना चाहिए वरना अंदर से सड़ा निकलेगा. टमाटर थोड़े कच्चे थोड़ा पका हो, नींबू पतली स्किन वाले लाना और वो जो भाव का है उतना नहीं देना, थोड़ा कम करवाना. साथ में कड़ी पत्ते की 3-4 डंडी मांगना वो दे देते हैं. वो बात अलग है कि डर के मारे भाव कम नहीं करवाता और कड़ी पत्ते इसके पास नहीं तो ऐसा करके फ्री में नहीं लाता.
1: बहुत अच्छी बात. सब उन्होंने अच्छे से बता दिया सब कुछ. तो अब हम एक और अपने श्रोता का लेते हैं मैसेज. वो कहते हैं कि असली परीक्षा तब होती है जब पुरुष थैला लेकर घर लौटते हैं और घर की होम मिनिस्टर पत्नी हो या माँ हो उसका मुआयना करती हैं. सजा की शुरुआत कैसी होती है, ये भिंडी लाए हो या लकड़ी, इतनी कड़क है, ये टमाटर तो आधे गले हुए हैं, और बचाव में क्या तर्क मिलता है, पुरुष तुरंत डिफेंस मोड में आ जाते हैं. अरे वो तो सबसे अच्छी दुकान से लाया था, उसने ही चुन कर दिया है, जबकि सब्जी वाले ने उन्हें आसानी से पुराना स्टॉक थमा दिया होता है.
0: और एक साथी कहते हैं मुझे सब्जी लाना पसंद नहीं है, पर सब्जी कोई लाकर दे दे तो मैं अच्छी तरह साफ कर संभाल कर तरीके से रखना बहुत पसंद है. मेरे पति भी सब्जी की बहुत अच्छी खरीदारी करते हैं और बेटा भी करता है. अब मॉल संस्कृति में तो ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है.
1: बिल्कुल सही बात कही. और एक और मैं श्रुतांशु लिखते हैं कि पुरुषों के द्वारा साग सब्जी की खरीदारी, भाई पूरे साग सब्जी की खरीदारी तो कर ही लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या होता है पूरी सब्जियों को बिना देखे ले आते हैं, जिससे सब्जियां कभी कभार खराब भी निकलती हैं. उसी समय पुरुषों पर बड़ा ही गुस्सा आता है, और साथ ही साथ लगता है कि इसे सब्जी लाने से कहने से अच्छा है कि हम खुद ही सब्जी लेने के लिए चले जाएं. ऐसे मेरे घर में तो कितनी बार हुआ है, और ऐसा जब भी हुआ है मुझे कुछ की जगह कुछ और ही बनाना पड़ा है. यानी प्लानिंग उन्होंने कुछ बनाने की कर रखी थी लेकिन वो वाली सब्जी आई नहीं, तो कुछ और ही बनाना पड़ा हल्की फुल्की बातों में. पुरुष के द्वारा सब्जी और साग सब्जी की खरीदारी, भाई पूरे साग सब्जी की खरीदारी तो कर लेते हैं, मतलब वो इन्होंने उसी चीज को लिखा है वापस.
0: एक साथी कहते हैं कि भाई पढ़ना चाह रही?
1: नहीं नहीं नहीं आप पढ़िए.
0: एक साथी कहते हैं सब्जी खरीदने की जिम्मेदारी श्रीमान जी पर है और कभी कभी मुझे भी जाना पड़ता है, क्योंकि एक सब्जी जब बार बार लेकर आते हैं तब उनको बोलना पड़ता है अब इस सब्जी को कुछ दिन पहले ही तो खाया था, अगली बार साथ में चलना. वैसे सब्जी खरीदते हैं, पहले हमारे यहाँ खेत था तो सब्जी बिल्कुल ताजी मिलती थी और इसलिए श्रीमान जी को सब्जी का अनुभव अच्छा है, तो सब्जी अच्छी ही लाते हैं. मैं साथ में हुई तब भी हम पसंद करते हैं, यानी देखिए दोनों मिलके जाते हैं. ये कितनी अच्छी बात है ना कि सब्जी के बहाने दोनों क्वालिटी टाइम बिताते हैं.
1: बिल्कुल. और साथ ही हमारे एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि पुरुषों के लिए सब्जी खरीदना किसी एडवेंचर ट्रिप से कम नहीं है, वो पूरी ईमानदारी लॉजिक और वफादारी से सब्जी खरीदते हैं, भले ही घर आकर उन्हें थोड़ी डांट सुननी पड़े, लेकिन ये नोक झोंक की भारतीय परिवारों के रोजमर्रा के जीवन को खुशनुमा और मजेदार बनाती है.
0: क्या बात है. और एक साथी भी लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी आपको जानकर खुशी होगी कि सखी सहेली प्रोग्राम के सखा यानी मुझे साग सब्जी की खरीदारी में माहिरता है, इसलिए घर की होम मिनिस्टर मेरी धर्मपत्नी ने ये डिपार्टमेंट मुझे ही दे रखा है. साग सब्जी फल अच्छी क्वालिटी के सही नापतुल के सही बाल भाव और सब्जियों के अनुसार क्वांटिटी की खरीदारी करना, आलू प्याज टमाटर लहसुन और कुछ फल होलसेल रेट में ज्यादा क्वांटिटी में सब्जी मंडी से लेकर आता हूं ताकि सब्जियों और फलों के साथ साथ बजट का भी ध्यान रखते हैं. खरीदना बच्चों को भी यही खरीदारी का तरीका सिखाने की मैं कोशिश करता हूं.
1: अच्छा. और साथ ही एक और श्रोता जो लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी एक ऐसा विषय है जिस पर हर घर में एक अलग कॉमेडी शो चलता है. ये एक ऐसा घरेलू मिशन है जहां पुरुष अपनी समझदारी का इस्तेमाल तो पूरा करते हैं लेकिन नतीजा अक्सर उम्मीद से अलग होता है. कई बार धनिया और पुदीना में उन्हें अंतर समझ नहीं आता. लौकी और तोरई जैसी सब्जियां चुनते समय वो थोड़ा संकोच करते हैं. वो अक्सर दुकानदार पर ही भरोसा करके थैला भर लेते हैं.
0: एक ने लिखा है कि जेंट्स ये सब्जी मंगवाना तो उन्हें क्वालिटी के बारे में नहीं पता होता कि कौन सी सब्जी कितनी मात्रा में लेना चाहिए. जो एक पाव चाहिए वो आधा किलो होगी और जो आधा किलो चाहिए वो एक पाव ही लेकर आती है. ये बिल्कुल होता है घर घर में कि घर में करेला बहुत कम लोग खाते हैं और जो कुछ पुरुष उन्हें मालूम नहीं होता एक किलो करेला उठा रहा है, या फिर भिंडी की सब्जी वो पाव भर लेके आ गए तो भिंडी तो पाव भर में कुछ होना ही नहीं है। पर अब हमें गीत सुनना है।
1: बिल्कुल गीत सुनना है।

0: तो आप किनका किन की बात लेने जा रही हो?
1: हाँ, आपके हाथ में है, कुछ कमेंट्स पढ़ दीजिए।
0: तो हम एक श्रोता जो लिखते हैं कि मैडम जी तो सब्जी खरीदने कभी बोल रहे हैं कि मैं तो सब्जी खरीदने कभी नहीं जाता हूँ, डर लगता है सब्जी थोड़ी भी गलत आ गई तो डांट पड़ेगी। मतलब ये बता रहे हैं कि इनको डांट के डर से ये कभी लेने जाते ही नहीं सब्जी। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मेरे घर के ठीक नीचे कुछ सब्जियों की दुकान लगी हुई है और मेरे इतनी उम्र का अनुभव मुझे ये कहता है कि हर एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी कोई भी घर की स्त्री हो कि ये पुरुष हो, सब लोग सब्जियां चुन चुन कर ही खरीदते हैं, लेकिन अंत में शाम के 7-8 बजे तक जब वो ठेले वाला अपने घर लौटता है तो उसके ठेले में एक भी सब्जी एक भी फल नहीं बचा होता है। तो कभी कभी मुझे इस बात से बहुत अचरज मालूम होता है कि मुझे अनूठी भी लगती है ये बात कि जब लोग चुन चुन कर फल सब्जियां घर ले जाते हैं तो आखिर में जो कुछ फल और सब्जी जिनका सभी ने अस्वीकार किया हो वो छूट जानी चाहिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है और सब कुछ बिक जाता है।
1: चलिए, कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक।

0: ब्रेक के बाद हम हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली और हमारे एक साथी लिखते हैं कि पुरुष और साग सब्जी की खरीदारी। भाई एक समय था जब पिताजी के साथ साग सब्जी खरीदने के लिए मंडी में जाया करता था। मंडी कुछ ही दूर पर थी और थोक मूल्य पर 2.5 किलो से कम सब्जी सट्टी में मिला ही नहीं करती थी, इसलिए हर तीसरे दिन जाना पड़ता था। और वहीं से जो यात्रा मंडी की शुरुआत हुई वो आज तक कायम है। पिताजी तो नहीं रहे लेकिन उनकी सीख रह गई, जबकि फुटकर में बहुतेरे मोल भाव हुआ करते थे। एक साथी कहते हैं कि साग और सब्जी खरीदने का अनुभव तो बचपन से ही था कि 1974 में दूर संचार विभाग में नौकरी ज्वाइन करने के बाद मैं और मेरा सहकर्मी हम दोनों किराए के रूम में पार्टनर थे। उस रूम के साथ एक किचन भी हमें उसी रेंट में साथ में मिला था। उसका उपयोग करते हुए हम खुद रसोई बनाने लगे थे। हमारी ड्यूटी रोटेशनल हुआ करती थी, एक ड्यूटी सुबह की होती थी तो दूसरे की शाम की ड्यूटी एडजस्ट कर लिया करते थे। सुबह सब्जी मंडी से साग और सब्जी खरीद लेकर आते, शाम की ड्यूटी वाला दोपहर की और सुबह की ड्यूटी वाला शाम की रसोई बना लेता था। कितनी अच्छी बात है,
1: बिल्कुल मिलजुल कर। और साथ ही एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पुरुषों द्वारा साग सब्जी की खरीदारी करना एक मजेदार और अनोखा अनुभव होता है, जिसमें उनके स्वभाव की सादगी और उलझने दोनों साफ दिखती हैं। पुरुष घर से मिली सब्जी की लिस्ट को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वो पर्ची पर लिखी हर चीज को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। लिस्ट के बाहर की कोई नई सब्जी वो खुद से नहीं चुनते। मनपसंद चीज न मिलने पर वो तुरंत घर में फोन करते हैं कि भाई ये चीज नहीं मिल रही है, क्या कर सकते हैं।
0: ये अच्छा ऑप्शन है ना,
1: बिल्कुल
0: डांट खाने से अच्छा ऑप्शन है,
1: पहले ही बात कर लीजिए आप।
0: एक साथी कहते कि पुरुष और साग सब्जी खरीदना, हमारे घर में पुरुष वर्ग ही ज्यादातर सब्जी खरीद के लाते हैं और पूरे मार्केट घूम घूम के सब्जी खरीदना, अच्छी सब्जी लाना पुरुष वर्ग बहुत अच्छी तरह निभाते हैं। हम महिलाएं भी करते हैं पर मेरा अपना मानना है कि पुरुष वर्ग अच्छी खरीदारी करते हैं, मैं ऊब जाती हूँ।
1: अच्छा, बिल्कुल। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि कभी साग सब्जी खरीदना घर की महिलाओं की जिम्मेदारी माना जाता था, लेकिन अब समय बदल रहा है। आज पुरुष भी पूरे उत्साह से सब्जी मंडी या बाजार में साग सब्जी खरीदते हुए नजर आ जाते हैं। पुरुषों की सब्जी खरीदारी का अपना ही अंदाज होता है। कोई दुकानदार से भाव ताव करने में माहिर होते हैं तो कोई बिना मोल भाव किए बस अच्छी सब्जी लेकर घर लौट आते हैं। कुछ लोग मोबाइल पर घर से आई लंबी सूची को देखकर सब्जी खरीदते हैं तो कुछ पुरुष अपने हिसाब से बढ़िया सब्जी खरीद लाते हैं।
0: तो चलो अच्छा है कि भाई कुछ भी हो पर सब्जी खरीद कर लाना है और उसे साफ धो के घर में पकाना है, तभी तो हम सभी स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ मनोरंजन के लिए गीत भी जरूरी है।

0: हरानी साहिबा बताइए।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है हाँ। कि जब मैं सब्जी लेकर आता हूँ तो मेरी पत्नी बहुत क्रिटिसाइज करती है, तो रानी है ना वो।
0: इसीलिए
1: और वैसे भी कहा है ना कि निंदक नीरे राखी है, तो भाई ऐसे क्रिटिसाइज होते होते होते बहुत अच्छी सब्जी लेकर आने लगेंगे आप,
0: बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे।

0: और अब हम अपने अगले विषय पे आ जाएं, जो है घर को हम पुराने सामानों का गोदाम ना बनाएं।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, घर या पुराने सामानों का गोदाम, विषय तो बहुत अच्छा है। अक्सर हम घर में इतनी ज्यादा पुराने सामान जमा कर लेते हैं लेकिन हमारे घर के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है, हमारे किसी काम का नहीं होता है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, अगर आपको लगता है कि आपका कोई पुराना सामान आपकी जरूरत का नहीं है तो उसे किसी जरूरतमंद को देना बिल्कुल सही है। आप चाहे तो उसे रिसाइकलिंग कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं या उससे कोई नया सामान बना सकते हैं जो आपके काम आए। इससे भी घर पुराने सामानों का गोदाम नहीं बनेगा, घर में भी पुराने सामान जमा नहीं होंगे, साथ ही साथ आपका सामान भी उपयोग में आ जाएगा। इसलिए अगर सामान ज्यादा पुराना हो गया है तो आपके काम का नहीं है तो आप इसे किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं या रिसाइकलिंग करवा सकते हैं।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि घर या पुराने सामान का गोदाम, इस विषय पर हमें आत्मनिरीक्षण करने पर मजबूर करता है यह विषय। हमें समय समय पर अपने घर की सफाई करते रहना चाहिए। जो सामान यानी पिछले साल से एक साल से इस्तेमाल नहीं हुआ है उसे दान कर देना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए। घर को यादों और सुकून का मंदिर होना चाहिए, ना कि पुराने सामान का गोदाम।
1: क्या बात है। एक साथी कहते, इंटीरियर और सजावट के जानकारों के अनुसार जरूरत से ज्यादा सामान फ्लैट या घर को सुंदर दिखने के बजाय एक खिचड़ी या कबाड़ खाने जैसा बना देता है। ज्यादा सामान होने पर घर के कोने कोने के नियमित सफाई नहीं हो पाती, जिससे धूल गंदगी और कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं। ये तो बात बहुत सही लिखी है उन्होंने।
0: और रिकॉर्ड श्रोता जो लिखते हैं कि घर में अनावश्यक और टूटा फूटा पुराना सामान जमा करने से हवा और रोशनी का आवागमन रुकता है, जिससे घर का माहौल भारी और तनावपूर्ण हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी अनुपयोगी चीजों को घर से जो चीजें होती है वो घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, इससे मानसिक अशांति और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। ये साइंटिफिक बात भी है, क्योंकि जब आप बहुत सारा सामान रखेंगे जमा करके तो धूल मिट्टी भी जमा होगी, कोनों में जाले भी लग सकते हैं, तो उससे क्या हुआ, पूरा
1: कॉकरोच हो जाएंगे,
0: बिल्कुल कीड़े मकोड़े हो जाते हैं और बुरा असर पड़ता है।
1: जी, एक साथ ही लिखते हैं, घर को साफ सुथरा रखने के बजाय उसे पुराने सामान का गोदाम बना लेना मानसिक और वातावरणीय दोनों दृष्टियों से नकारात्मक प्रभाव डालता है। जो वस्तुएं पिछले एक साल से इस्तेमाल में नहीं आई है उन्हें या तो बेच दे या किसी जरूरतमंद को दान कर दे। नियमित डिक्लॉटर घर को व्यवस्थित रखने के लिए महीने में एक बार बेकार पड़े सामान की छटनी जरूर करें।
0: बिल्कुल। और हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि घर या पुराने सामान का गोदाम ये विषय में बहुत कुछ दिखाता है, और साथ ही हमारा घर धीरे धीरे कब सामान के गोदाम में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। छोटी सी कोई चीज हाथ लगती है तो मन कहता है इसे फेंकना नहीं, कभी तो काम आएगी। यानी कितनी चीजें इसी उम्मीद में संभाल कर रख ली जाती है लेकिन वो कभी आता ही नहीं। सामान बढ़ता जाता है, अलमारियां भरती जाती है और घर गोदाम बन जाता है। सामान संभाल कर रखना बुरी बात नहीं है लेकिन हर चीज को बचाकर रखना भी समझदारी नहीं है। जो चीज वर्षों से काम में नहीं आई है उसे विदा करने में संकोच ना करें, शायद वो किसी और के लिए उपयोगी हो जाए और घर घर बन जाए।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि घर घर होता है, गोदाम गोदाम होता है, लेकिन बहुत सारा बेकार सामान घर में इकट्ठा होने लगे तो घर को गोदाम बनने में जरा भी देर नहीं लगती। पहले के जमाने में उपयोग में नहीं ले जाने वाली कुछ वस्तुओं को संभाल कर रखा जाता था, भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सके और घर भी बड़ा हुआ करता था, उसमें स्टोरेज करने की पर्याप्त जगह मिल जाती थी। आज उससे सब कुछ उल्टा है, न घर में इतनी बड़ी जगह है न पुराने सामान का उपयोग है। आज यूज एंड थ्रो का जमाना है, जमाने के साथ चलने में ही समझदारी है। हमने देखी उन घरों की महकती खुशबू, बेकार की चीजें इकट्ठा कर इसे गोदाम का नाम ना दो।
0: वाह, इन्होंने गाना ही बना दिया। और साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि बरसात के दिनों में घर की दीवारों छतों के किनारों पर ढेर सारे जंगली पौधे भी उगाते हैं, इनमें भी जहरीले जो जीव जंतु रहते हैं वो रहते हैं। अगर आपको लगे कि पौधे फालतू हैं तो उन्हें वहां से हटा दें, उखाड़ कर फेंक दें। खासकर पीपल बरगद के पेड़ ये बड़े होकर दीवारों को भी कमजोर करते हैं। अगर आपके पास जगह है तो इसे उखाड़ कर किसी दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। फेंकने की बजाय आप किसी दूसरी जगह पे लगा दीजिए जहाँ पे इसको ज्यादा जगह मिल सके उगने के लिए।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि अभी हमारे घर में यही चल रहा है, सब हटाओ, और हमने बहुत हटाया है। हम हर साल हटाते हैं फिर कुछ जमा हो जाता है, पर एक बात हमारी अच्छी है, जब कुछ नया लेते हैं तो पुराना किसी जरूरतमंद को दे देते हैं ताकि उसका भी काम चल सके। जैसे हमने नई बेडशीट ली तो अब नहीं बिछा रहे, वो हमने अपनी मेट को दे दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही करते रहना चाहिए कि घर को अपने गोदाम बनने से हमें खुद ही बचाना है। और अब क्या करना है,
0: गीत सुनना है,
1: सुनते हैं गीत।

सक्षम सक्षम सत्यते सिधा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तुमंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं

0: तो अब हम अपने एक श्रोता है उनका कमेंट ले लेते हैं, जो लिखते हैं कि सभी पुरानी चीजों को स्टोर करना तो ठीक नहीं है, पर मैंने अपने जो दादी जी हैं उनके टाइम का जो तांबे का जो पीतल के जो सामान होते थे उनको हमने अच्छे से रख लिया है, तो इस तरीके से मतलब प्रिजर्व करके रखा हुआ है, वो बताते हैं कि इस तरह की चीजें उनको रखनी है। ये इस तरीके की चीजें तो आप रख सकते हैं,
1: ये ना बहुत उससे जुड़ी भावनाएं भी होती है ना, तो रखना भी चाहिए। और अब तो ऐसा हो रहा है ना चलन कि अब पुराने जमाने की जो चीजें है ना उसका ही महत्व बढ़ गया है, कि पहले हम तांबे के बर्तन में पानी पीते थे, बीच के समय में हम बहुत ज्यादा स्टील का इस्तेमाल करने लगे थे, अभी अभी तो प्लास्टिक का इस्तेमाल करने लगे, पर अब फिर से लोग उसी की ओर बढ़ रहे हैं, फिर से तांबे पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: ये तो चीजें अच्छी हैं, इनको आप मत हटाइए, लेकिन बस आपको जो पुरानी जो इस तरीके की
1: खासकर प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक की बोतलें, रद्दी के जो पेपर है, उसके बाद में जो खराब टायर होते हैं उसे भी हम सहेज कर रखते हैं। होता यूं है कि बरसात के दिनों में उसमें पानी भर जाता है, छत का पानी भर गया और फिर डेंगू मलेरिया होने लगता है। तो इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है कि भाई हमें सफाई भी इस तरह से करें कि हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहे हमारा।
0: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो कहते हैं कि कबाड़ वाली जगह पर धूल और नमी जमती है, जिससे कई तरह के जीव जंतु, सांप, बिच्छू भी वहां पर डेरा जमा लेते हैं। लकड़ी के सामान में नमी के चलते फफूंद लग जाती है और कई तरह के बैक्टीरिया उसमें पनपने लगते हैं, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। बचपन से हम देखते हैं जैसी बारिश खत्म होगी लोग अपने अपने घरों की सफाई करने लगते हैं और दिवाली के पहले पुराने सामानों को कबाड़ी को बेच दिया जाता है और जरूरतमंद को दे दिया जाता है। तो मतलब आप पुराने कबाड़ को मत रखिए, उसको निकाल दीजिए,
1: यानी दिवाली तक इंतजार मत कीजिए। हर दो महीने में भी साफ किया तो बहुत अच्छा होगा, इससे हमारा ही अच्छा होगा,
0: घर भी साफ रहता है थोड़ा। जब देखेंगे ना बहुत भरा भरा जो घर रहता है ना, वहां पे थोड़ा

0: तनाव सा बना रहता है। आप खुद देखिए, अगर जितना हल्कापन रहेगा घर में उतना ही ज्यादा आपको अच्छी मानसिक शांति और सुकून रहेगा।
1: और ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा अपना समय, बहुत ज्यादा एनर्जी उन सब कामों में लगाते हैं कि भाई सामान बढ़ा लिया, फिर उसको पोछना है, उसको धोना है, उसे साफ करना है, उसे सुखाना है, उसी में लगे रहते हैं। और इसके कारण हम अपने कुछ क्रिएटिव काम, जैसे हमें पढ़ाई करना है, कुछ पढ़ना है, कुछ लिखना है, कुछ अच्छी बातें सीखने का हमें मौका ही नहीं मिलता और हम इन्हीं सभी कामों में उलझे रहते हैं,
0: लगे रह जाते हैं।
1: तो हमें इन सब बातों को
0: बिल्कुल
1: ध्यान
0: बिल्कुल
1: देना है।
0: बिल्कुल और घाव पे नमक नहीं छिड़कना चाहिए।
1: हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही कही आपने कि जब हम खाली रहते हैं ना तो नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आने लगते हैं और हम ऐसे करते हैं कि कोई भी हो, किसी के भी अगर जीवन में कुछ दुख है तो हमें उसे बार बार कुरेदना नहीं है, उस दुख की उन्हें याद नहीं दिलाना है, ये हमारी कोशिश होना चाहिए। एक मुहावरा है, घाव पर नमक छिड़कना, ये मुहावरा पूरी तरह से व्यावहारिक जीवन के अनुभव पर आधारित है। पुराने समय में और आज भी जाने अनजाने में अगर किसी कटे हुए स्थान पर नमक लग जाए तो इससे पीड़ा कई गुना बढ़ जाती है। इसी भौतिक सत्य को इंसानी व्यवहार और भावनाओं पर लागू किया गया है। जब कोई व्यक्ति पहले से ही किसी मानसिक या सामाजिक कष्ट में हो और कोई दूसरा व्यक्ति उसे ऐसे ताने मारे, ऐसी बातें करे जिससे उसका दुख बढ़ जाए, तो उसे घाव पर नमक छिड़कना कहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यही ये बात हमारे साथी ने लिखकर भेजी है।
0: अच्छा, तो ये मतलब कितने अच्छे तरीके से उसको उन्होंने बताया ना,
1: समझाया,
0: वर्णन किया। तो हमारे एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि मुहावरा घाव पर नमक छिड़कने का अर्थ है किसी के दुखी या परेशान व्यक्ति को और अधिक कष्ट देना या उसकी तकलीफ को और बढ़ा देना, दुखी व्यक्ति को और अधिक परेशान करना, किसी पुरानी या ताजा पीड़ा को अपनी बातों या हरकतों से और उसको ज्यादा गहरा कर देना। ये मुहावरा वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित है। अगर शरीर के यही जो आपने जैसे तरह से बताया तो वही बताने हुई बात को किस तरह से मानसिक पीड़ा होती है इस तरह से करने से, तो ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए इस तरीके की बातों को करने से कि दूसरे को पीड़ा पहुंचाना वैसे भी अच्छा नहीं होता ना। कहते हैं मुस्कुराहटों को बांटना चाहिए,
1: बिल्कुल सही,
0: दुखों को नहीं। दुखों को ये किसी को पीड़ा देने से अच्छा है किसी को आप मुस्कुराहट दीजिए।
1: हाँ, तो आप क्या करना है,
0: एक गीत सुन लेते हैं।
1: सुनते हैं गीत।

0: हाँ तो सोनाली, क्या आप बताने जा रही थी मुहावरों के बारे में?
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि घाव पर नमक छिड़कना भाई बहुत ही प्रचलित मुहावरों में से एक है, जिसके फलस्वरूप इस मुहावरे को इस प्रकार भी कहा जाता है कि जले पर नमक छिड़कना। इसका मतलब है किसी के दुख से दुखी नहीं होकर उसके दुख रूपी घाव पर शब्द बाण जैसे नमक का मौका देखते ही छिड़काव करते हुए अपने सहानुभूति को नहीं प्रकट करना ही है। क्या बात है।
0: और हमारे एक श्रोता जो लिखते हैं कि घाव पर नमक छिड़क यानी मुहावरा हमें ये सीख देता है कि संकट के समय लोगों को सांत्वना और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी के दुख को कम नहीं कर सकते तो कम से कम अपने कड़वे वचनों या व्यवहार से उसे और अधिक बढ़ाना भी नहीं चाहिए। ये मुहावरा भाषा को गंभीर, सटीक और मारक बनाने की क्षमता रखता है।
1: एक साथी कहते हैं कि दोनों बातें किसी दुखी व्यक्ति को और अधिक दुख या कष्ट देती है। नौकरी छूट गई हो इसके बाद अगर मकान मालिक किराया लेने आए तो ये घाव पर नमक छिड़कने जैसी बात होगी। और ये बहुत सारे साथियों ने इसी तरह की बातें लिखी है, कहते हैं कि कटे पर नमक छिड़कना और घाव पर नमक छिड़कना हिंदी का मुहावरा आम बोलचाल की भाषा में बहुतायत प्रयोग किया जाता है। इन सभी का अर्थ एक है, किसी दुख या परेशान व्यक्ति के दुख को और अधिक बढ़ा देना। जब कोई इंसान पहले से ही किसी मुसीबत, दर्द या सदमे में हो और कोई दूसरा व्यक्ति उस पूरी स्थिति में ताने मारकर, आलोचना करके, बुरी बात बोलकर उसे तकलीफ को और बढ़ा दे तो इसे ये मुहावरा कहा जाता
0: बिल्कुल
1: है।
0: अगर कोई दुखी है तो उसके उसके ऊपर आप अपने शब्द बाण चला के उसे दुखी और मत
1: बल्कि
0: करिए,
1: मरहम का काम करें अपने शब्दों के माध्यम से। और अब गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, गीत सुनते हैं।

0: तो आरती हम श्रोताओं को, सखियों को धन्यवाद कहेंगे कि उनके इतने सुंदर कमेंट्स के कारण इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर सी समृद्धि आ गई और बहुत मजा आया उनके कमेंट्स पढ़ के, और आशा करते हैं कि हमारे श्रोताओं को भी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा।
1: बिल्कुल, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए आप
0: और विविध भारती सुनते रहिए। और हमें दीजिए इजाजत, आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: बीते हफ्ते हमने आपकी मुलाकात करवाई थी एक युगल से। जी हाँ, ये हैं जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा। इनसे बातचीत ममता सिंह ने की थी और बातें अधूरी रह गई थी, तो चलिए इन बातों को आगे बढ़ाते हैं इस बातचीत के इस दूसरे और आखिरी भाग में।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। आज विविध भारती के स्टूडियो में एक मशहूर कलाकार जोड़ी की आमद है। वो है मशहूर अभिनेता यशपाल शर्मा जी और उनके साथ है उनकी शरीके हयात प्रतिभा शर्मा जी। यशपाल जी नमस्कार, प्रतिभा जी नमस्कार।
2: नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।
3: शुक्रिया।
1: श्याम बेनेगल साहब के साथ प्रतिभा जी आपने कुछ फिल्में की हैं, हरी भरी।
2: यशपाल ने भी की है। हाँ, मैंने हरी भरी की थी।
1: तो आप अपनी यादें साझा कीजिए, श्याम बाबू के साथ काम का अपना अनुभव साझा कीजिए।
2: मुझे याद है जब उन्होंने मुझे बुलाया था पहले, मतलब वो रोल बिल्कुल छोटा सा रोल था लेकिन उन्होंने मुझे उस तरह से समझाया और उस तरह से उसको एक्सप्लेन किया कि जैसे कि वो मेन रोल है फिल्म का।
1: जी जी जी,
2: ये उनकी खासियत थी। तो हर एक एक्टर को ना वो इस तरह से ही करते थे कि जैसे कि उस एक्टर का ये रोल जो है वो इतना इम्पोर्टेंट और इतना मेन रोल है इस फिल्म का कि मतलब बस इस एक्टर के बिना ये फिल्म नहीं हो सकती।
1: जी बिल्कुल, एक पाठशाला के रूप में जाने जाते हैं श्याम बाबू।
2: यस।
1: तो आपको क्या कुछ मिला उनसे, क्या पाया सीखने के लिए कुछ?
2: मतलब बहुत सहज इंसान थे, बहुत ही सहज। अपना ऐसे नहीं कि मतलब एक डायरेक्टर का वो कोई चोला पहन के वो काम करते थे, बहुत ही आम लोगों में बैठना उठना और बहुत सहज थे वो।
1: जी।
2: और वो ऐसे सहज लोगों के साथ काम करते करते आप भी खुद इतने सहज हो जाते हो।
1: बिल्कुल। अब बात सहजता की चली है और हम चलते हैं असहजता की ओर। यशपाल जी ने बचपन की बहुत सारी यादें साझा की
2: जी।
1: तो आप बताइए अपना बचपन, आपका बचपन कैसा था?
2: हाँ, ऐसे ही हमारा वही खेल की गुटली, हम भी खेलते थे वो सारी चीजें। गलियों में जब कीचड़ से सन जाते थे सारा, और वो जो एक सलाई होती थी उसको ऐसे गाड़ना और उस
1: मिट्टी में
2: वो वाला खेल तो अच्छा। हम खूब खेले, खो खो, संगीत कुर्सी, ये सारे खेल हम खेलते थे।
1: तो घर पे डांट नहीं पड़ती थी क्योंकि उस समय तो
2: अरे मार पड़ती थी, डांट किधर पड़ती थी।
1: तो बताइए ना वो एक आध किस्सा, किसी दिन दौड़ के खेल के आई हो और मार पड़ी हो।
2: स्कूल के लिए मुझे ना साइकिल सीखनी थी, कुछ पैसे देके साइकिल सीखनी पड़ती है। तो वो साइकिल मैं सीख रही थी तो मेरे पापा ने ना देख लिया मुझे, तो मैं गिर गई साइकिल से और सुबह तक मेरा पैर इतना
1: सूजा था।
2: तो मैं मतलब सुबह मैं जब उठी तो पापा ने देखा मेरा पैर इतना बड़ा सूजा हुआ है, तो उन्होंने बोला क्या हुआ, इतना बड़ा क्यों सूज गया पैर? तो मैंने कहा वो मैं गिर गई थी वहां पे, वो पत्थर था, कुछ ऐसे झूठ बोल दिया। तो वो ना सीधे सूजे हुए पैर पे खड़े हो गए और मुझे बोल रहे झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, मतलब इतना मतलब कि झूठ नहीं बोलना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: इस तरह का
1: नैतिकता बहुत सिखाई जाती थी।
3: माँ बाप दोनों टीचर थे।
1: अच्छा,
2: मेरे
1: कौन से गांव की बात है ये?
2: ये गांव के पास एक गांव है कासोदा, वहाँ गांव की बात है।
1: तो अपने माता पिता से फिर वो नैतिकता की शिक्षा लेकर आई, अपने बच्चों को सिखाया, कितनी मुश्किल पड़ी।
2: मोबाइल की जनरेशन है ये, यहाँ नहीं सिखाई जा सकती नैतिकता की बातें, लेकिन फिर भी कोशिश जारी रही मेरी उनको, मतलब जैसे मैं स्पिरिचुअल चीजों में थी तो मैं उनको लेके जाना वहाँ पे मेडिटेशन, ये वो सारी चीजें थोड़ा मैंने दिया वो सब कुछ उनको।
1: जी, तो कौन सा गाना यहाँ पर आना चाहिए?
2: गुलजार साहब की जो वो फिल्म है मेरा कुछ सामान,
1: तो सुनते हैं यही गाना
2: जी।

0: गाने के बाद फिर यशपाल जी की ओर चलते हैं।
1: मेरा कुछ सामान गाने में एक लाइन है, 116 चांद की रातें वो लोटा दो, तो गुलजार साहब के चार नाटक मैंने किए हैं लिखे हुए, तो वो हमारे साथ रहते थे इसलिए बहुत करीब रहे। तो लखनऊ में शो था उर्दू एकेडमी में, तो उसके बाद डिस्कशन थी, तो एक शरारती तत्व किसी ने पूछा गुलजार साहब से कि सर वो जो गाना है इजाजत में मेरा कुछ सामान, उसमें एक लाइन है 116 चांद की रातें, सर वो 116 ही क्यों है? तो गुलजार साहब बोले कि बेटा वो 117 थी, मुझसे गलती हो गई। भाई इतना ठहाका हॉल के अंदर और इतने हंसी, क्या कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है बाप रे गुलजार साहब का।
0: ऊपर से जितने गंभीर दिखते हैं हमने सुना है, गुलजार साहब काफी ह्यूमरस बातें भी करते हैं।
2: नहीं नहीं, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका। हाँ, कमाल
0: जी। आपकी बहुत सारे किरदार में, कहीं बेबसी है, कहीं एक इंस्पेक्टर है बेबस है, कहीं लाचारी भी है, और कहीं नकारात्मक किरदार निभाया है, और कहीं कॉमेडी है, तो ये जो किरदार की विविधता है, इन सारे किरदार की विविधता को कैसे आप मेंटेन करते हैं, कैसे आप भीतर तक ले जाते हैं, कोई राज की बात बताइए, हमारे बहुत सारे श्रोता सीख रहे होंगे। जो
1: नहीं देखिए, कई बार ना एक रिजिडिटी आ जाती है ना एक्टर के अंदर अगर, और वो बाहर की चीजें ग्रहण ना कर पाए तो फिर वो मोनोटोनस हो जाता है लाइफ, हर रोल में एक जैसा दिखता है
0: जी।
1: तो रिजिडिटी नहीं आनी चाहिए, आपको एक पात्र की तरह, घड़ा एक पात्र है जैसे, खाली रहना बहुत जरूरी है, सरेंडर करना, मतलब आपके कोई करेक्टर आए तो आप अपने आप को यशपाल को सरेंडर कर दो थोड़ी देर, जितना हो सकता है कोशिश करना चाहिए, वैसे तो नहीं हो पाएगा पूरा, तो क्योंकि यशपाल के बॉडी है, आवाज़ है, हाव भाव हैं, इतने साल हो गए उसकी कुछ आदतें हैं, वो तो रहेंगी रहेंगी, लेकिन स्क्रिप्ट बता देती है कि आपको क्या करना है
0: जी।
1: तो इसलिए जो कहानी है और स्क्रिप्ट है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए किसी भी आर्टिस्ट के लिए, किसी भी डायरेक्टर के लिए, किसी भी कैमरामैन के लिए, ना कि कोई स्टार, क्योंकि स्टार को देख करके कई लोग डर जाते हैं या अपने आप के आइडियाज चेंज कर देते हैं ना, वो बहुत गलत है।
0: बिल्कुल
1: स्ट्रिक्ट रहना चाहिए स्क्रिप्ट के ऊपर, क्योंकि मैंने कुछ स्टारों की फिल्में बर्बाद होती हुई देखी हैं इसी चक्कर में कि स्टारों के प्रभाव में डायरेक्टर और कैमरामैन आ जाते हैं, तो उस चक्कर में वो फिल्म बर्बाद हो जाती है
0: जी। क्या
1: अगर वो बिल्कुल अपनी कहानी पे रहें और अपना करें, और बहुत सारे डायरेक्टर हैं ऐसे, चाहे कितना ही बड़ा स्टार आ जाए, मेरी कहानी ये है तो यही रहेगी, तो वो सफल भी है, वो अच्छा काम भी करते हैं, और ज्यादातर लोग तो ये विविधताएं जो है करेक्टर्स की, ये स्क्रिप्ट देती है। आपको स्क्रिप्ट पढ़ के पता चल जाता है कि ये किस ओर जा रही है, ये कॉमेडी की तरफ जा रही है, ये वेलकम टू द जंगल टाइप है, या ये गंगाजल टाइप है, या लगान टाइप है, या इसका जॉनर क्या है
0: जी, जी,
1: तो वो सारा पता चल जाता है पढ़ते पढ़ते, तो आदमी फिर उसी दिशा में काम करता है
0: जी,
1: बाकी दिशाएं सब छोड़ भूल जाता है
0: जी। वेलकम टू द जंगल का जिक्र किया, तो ये इसके बारे में जरा बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: मल्टी स्टारर फिल्म है, इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव और हाँ जैकी श्रॉफ और फरीदा जलाल, जैकलिन फर्नांडिस, दिशा पटानी और रवीना टंडन और मुकेश तिवारी और कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक और दलेर मेहंदी, और बाप रे बहुत लोग हैं इसमें,
2: राजपाल
1: देशमुख।

0: है, आपकी कैसी
1: हमारी
0: भूमिका?
1: भूमिका हमें भी नहीं पता अभी तक, वो देखने के बाद ही पता लगेगा, क्योंकि सच में कुछ नहीं पता, क्योंकि ये फिल्म ही ऐसी बनी है। मैं देखना चाहता हूं क्योंकि ये फिल्म कैसी बनी है, क्योंकि इसमें ना कोई कहानी जैसा कुछ हमको नहीं सुनाया गया, बस हमको खड़े हो जाओ यहाँ पे, ये करना है, ये मूव करना है, ये बोलना है, ये बोलना है, हमने बोल दिया, बस खत्म।
0: अच्छा।
1: और इसमें ऐसा कुछ करेक्टराइजेशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस धमाका है और धमाकेदार फिल्म है। और अक्षय कुमार ने फिर से एक बार वर्सटाइलिटी की है, एक्टिंग बड़ी वैरायटी है उसकी एक्टिंग में, और बड़ा अच्छा मुझे सुनील शेट्टी के साथ भी, इनके साथ एक नया अच्छा काम करने को मिला, काफ़ी देर तक परेश रावल जी के साथ, बड़े
0: जी
1: सीनियर एक्टर हैं, तो बड़ा अच्छा लगा। और ये 26 जून को रिलीज़ है, अहमद खान डायरेक्टर हैं इसके, और वेलकम दो तो आ चुकी हैं, एक एक और दो, तो ये वेलकम थ्री है मान लो, वेलकम टू द
0: जी
1: जंगल।
0: जी अब आपकी उन फिल्मों का हम जिक्र करते हैं जो काफी चर्चित हैं और जिसमें आपने एक खास तरह की भूमिका निभाई है, वो है अब तक छप्पन, जिसमें आप इम्तियाज सिद्दीकी सब
2: मेरी
0: इंस्पेक्टर,
2: सबसे फेवरेट फिल्म है
0: क्या बात है, प्रतिभा जी
1: मेरी
0: की
1: भी
0: फेवरेट फिल्म। और फिल्म धूप है, इंस्पेक्टर राम सिंह मलिक बने हैं, आजा नचले इंस्पेक्टर साहेब, टशन में एसीपी कुलदीप सिंह बने हैं आप, वेल्डन अब्बा में पुलिस कांस्टेबल बने हैं, और इतनी बार पुलिस की
1: ये आपने
0: भूमिका।
1: सारी पुलिस पुलिस वाली उठा ली है फिल्म
0: हाँ बिल्कुल, तो हम वही वही आ रहे हैं, हम ये नहीं जानना चाहते कि वो
1: जी।
0: पुलिस की भूमिका निभाई तो कैसे मिली, ये नहीं, हम तो ये जानना चाहते हैं कि पुलिस की भूमिका हर फिल्मों में क्यों चुना गया, एक बात। दूसरी बात कि इसके लिए आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी, तो पुलिस
1: सारी
0: की बात।
1: फिल्मों में तो नहीं, वेल्डन अब्बा धूप वगैरह में तो ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि इट वाज वेरी इजी फॉर मी। लेकिन हाँ, अब तक छप्पन और एक कालकूट है वेब सीरीज, उसमें जो विजय वर्मा के साथ मैं पुलिस में हूँ, वो पूरी पुलिस की ही कहानी है एक्चुअली। तो इन फिल्मों में मुझे बहुत काम किया मैंने, मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ी,
0: जी
1: और क्योंकि ये करेक्टराइजेशन था, उसमें नाना पाटेकर थे सामने, तो
0: जी
1: आप अपने आप को बहुत बुढ़ा चढ़ा करके जो ओवर करोगे तो फेल हो जाओगे, इसलिए उसमें मैंने बहुत सब्ज्यू करके किया, कोशिश की मैंने पूरी फिल्म के अंदर कि मैं बहुत लाउड ना हूँ और जेन्युइन रहूँ जितना हूँ, और उसमें मैं सक्सेसफुल भी हुआ। तो
0: जी
1: नाना पाटेकर ने भी बहुत दी फिल्म देख के मुझे बहुत पीठ थपथपाई, गले लगाया और बोला कि तुम जान हो फिल्म की, रियली तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था ये रोल कि कोई कैसा करेगा, बड़ा डर रहा था मैं, बट यू हैव डन ब्रिलियंट जॉब, तो उन्होंने किया। फिर बाद में हमने अपहरण भी किया, तो इसमें क्या तैयारी करनी पड़ी मुझे बाकी।
0: तो राम गोपाल वर्मा के बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को, उनसे जुड़ी हुई कोई किस्सा बताइए, बहुत सारे किस्से हैं आपके पास।
1: बहुत ज़्यादा किस्से नहीं हैं, अब तक छप्पन में एक मेरी डेथ का सीन था, जो वो करने वाले थे डायरेक्ट, तो शमित अमीन को बोला कि मैं इसको कुछ करता हूँ देखता हूँ, तो हमने कुछ जंगलों में जा करके वो सीन शूट किया था बरसात में, और वो स्पॉन्टेनियसली हुआ था, लिखा हुआ नहीं था वो सीन, वो बस ऐसे ही बोले कि चलो करते हैं देखते हैं क्या होता है, और ऐसे ही हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने बोला था कि यशपाल यू विल बिकम ए वेरी बिग स्टार आफ्टर दिस फिल्म, देन विल यू डू माई फिल्म ऑल्सो अगेन, मतलब कुछ ऐसा बोला, मुझे समझ नहीं आया कि मतलब
0: स्टाइल
1: मेरे साथ, हाँ
0: भी
1: मेरे साथ दोबारा काम करोगे। मैं बोला सर काहे टांग खिंचाई कर रहे हैं, अभी अभी जुम्मा जुम्मा तो मैं खड़ा हुआ हूँ एज एन एक्टर, बस हो जाए फिल्म हिट हो जाए, फिल्म अच्छी बन जाए, मैं तो इसी में खुश हूँ। तो एक बार मुझे हैदराबाद में मिले, फिर तो एक प्रोड्यूसर के साथ बैठे थे, तो यशपाल, मैंने कहा हाँ जी, अरे अरे, मैं कहा कहाँ,
0: जी
1: बुलाया उन्होंने, एक फाइव स्टार कोई होटल था उसी में बैठे थे हम, तो वो नीचे बैठे थे, तो मैं क्रॉस कर रहा था, तो उन्होंने बुलाया एक प्रोड्यूसर, मीट हिम, ही इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस इंडस्ट्री,
0: क्या
1: तेलुगु
0: बात है।
1: इंडस्ट्री। मैंने कहा नमस्कार जी, नमस्कार, हाँ, ही हैज डन अब तक छप्पन विद मी, यू शुड सी दैट फिल्म, व्हाट अ
0: क्या बात है,
1: परफॉर्मेंस ही हैज डन,
0: क्या बात है।
1: मतलब इस तरीके से मिले, आई थिंक इन दिस फिल्म यू विल बी देयर, ऐसे बोल के चले गए, बाद में कभी बुलाया नहीं
0: क्या बात है। अब यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनाए।
1: याद है तुमको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे, क्या कौन सा गाना है, बिगनिंग क्या है इसकी,
3: क्या

0: दादा।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया गुनगुनाया प्रतिभा जी आपने। ये बताइए, क्या हुआ तेरा वादा? कभी कोई वादा तोड़ा है यशपाल जी ने आपका? बहुत
0: इन्होंने मेरा
1: सारे
0: बहुत बार दिल तोड़ा
1: बताइए ना कुछ अंदर की बातें, क्योंकि हमारे श्रोता उत्सुक हैं सुनने के लिए।
0: हाँ, 6-6 महीने शूटिंग चलती थी और मैं इधर अकेली रहती थी बहुत
2: अगर ये
0: समय
2: बोल
0: तक।
2: रही है कि बहुत बार दिल तोड़ा है, तो फिर वो गाना हो जाए, एक दिल के टुकड़े
0: बहुत
2: हजार
0: ज्यादा पुराना
2: हुए,
0: गाना है
2: कोई
0: वो
2: यहाँ गिरा कोई। अरे लेकिन
0: यहाँ
2: गाना कमाल है
0: गिरा।
2: ये।
1: नहीं, अच्छा चलिए ये बताइए हमें, यशपाल जी की कौन सी बात आपको नापसंद है?
0: वैसे तो कोई ऐसी बात नहीं है पर्टिकुलर कि मुझे ये ना पसंद है। जिस व्यक्ति को आप पसंद करते हो तो उसको सिरे से लेके
1: वो
0: पैर
1: तो
0: तक पसंद
1: पसंद तो
0: करते
1: शादी
0: हो।
1: के पहले होता है, शादी के कुछ साल तक, उसके बाद तो शिकायतें शुरू हो जाती हैं हर पति
0: नहीं,
1: पत्नी
0: वो
1: में।
0: लड़ाई वड़ाई तो हमारी आज भी चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, मैं सोच नहीं सकती
2: ठीक है, अब हम क्या उससे
0: उनके
2: ऊपर उठ चुके हैं।
1: बारे
2: पहले शुरू में प्यार रहा, फिर खूब लड़ाइयां हुई, फिर लड़ाई कर करके जब थक गए, फिर
1: ऐसा
2: दोबारा से प्यार हो गया।
1: जी
2: अभी हम वो वाली स्थिति में चल रहे हैं।
1: एक आध लड़ाई वाला किस्सा बता दीजिए, ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि इतने झगड़े के बाद फिर वापस प्यार होता है।
2: अरे हम लड़ते हैं तो सुबह उठते गुड मॉर्निंग बोलते हैं, भूल चुके होते हैं कल क्या हुआ था।
1: अच्छा,
2: कभी
1: बहुत
2: ऐसा
1: बढ़िया।
2: हुआ ही नहीं कि हम उसको लेकर के जिंदगी भर गांठ बांध करके चलें, नहीं तो जी नहीं पाएंगे, रिश्ते खत्म हो जाते हैं ऐसे। सब लोगों के लिए है ये बात, हमारे लिए ही नहीं। भूलना बहुत जरूरी है लड़ाइयों को, गलतियों
0: रात
2: को।
0: गई बात गई
2: हाँ, गई बात गई,
1: बिल्कुल
2: क्योंकि आपको जिंदगी बितानी है, बच्चे हैं अभी, हम कितनी उम्र बची है इसमें भी, अब लड़ झगड़ के बिता देंगे तो फिर क्या बचेगा।
1: बिल्कुल। और ये समय होता है एक दूसरे का हाथ थाम के चलने
2: बिल्कुल
1: का।
2: बहुत जरूरी है।
1: अब जरा प्रतिभा जी बताइए, कौन सी बात नहीं पसंद करती हैं?
0: ये मुझे ये पसंद नहीं है कि ये वही वही कुर्ते पहन के आ जाते हैं
1: बिल्कुल। और कोई बात?

0: घरेलू चीजें जैसे कोई चीज रखने की इधर उधर
1: नहीं नहीं ये बहुत तरीके से रखते हैं हर चीज।
0: अच्छा
1: घर में उल्टा ये ज्यादा तरीके से रखते हैं, मैं जबकि इतर बितर करके रखती हूँ।
0: अच्छा क्या बात है, बहुत
1: मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है वैसे।
0: और आप बताइए यशपाल जी, प्रतिभा जी की कौन सी बात आपको पसंद नहीं है?
2: इसकी यही चीज पसंद नहीं है कि खाना खा के बर्तन वहीं पड़े रहते हैं। कपड़े चेंज किए तो कपड़े वहीं फेंक दिए। कुछ चीजें मतलब मान लो कोई फोटो है वो कैंची से काटे हैं तो उसके कटे हुए कतरने वहीं बिस्तर पे पड़ी हैं, कैंची वहीं पड़ी है। फिर लाइट बुझाना नहीं, बिल बढ़ता रहे, कोई लाइट जलती रहे, उसको भूल जाती है लाइट बंद करना, ये वाली चीजें जो है ना ये बहुत बेकार।
0: सच बोल रहे प्रतिभा जी, चलिए मान लेते हैं। बताइए अब एक दूसरे का पसंदीदा रंग कौन सा है? आप बताइए यशपाल जी को कौन सा रंग पसंद है?
1: यशपाल तुमको कौन सा रंग पसंद है?
0: नहीं नहीं आपको अपने से बताना है।
2: जो कुर्ता हमेशा पहनता हूँ,
1: जबकि मेरा भी पसंद का कलर ब्लू ही है।
0: क्या बात है, आप बताइए प्रतिभा जी की पसंद
2: नहीं,
0: का रंग?
2: इसका जो चॉकलेट कलर का जो एक सूट था NSD में, वो जो उसमें लगती थी ना वो आज तक किसी भी ड्रेस में नहीं लग पाई।
0: ओहो क्या बात,
2: वो ड्रेस में सोच रहा हूँ, और वो यूनिक मतलब जैसे एंटीक पीस नहीं होते जो राजस्थान के या किसी फोक देसी टाइप की, जो इंडियन ड्रेस, वो ड्रेस इसके ऊपर इतनी फबती थी, और इसके बाल भी ऐसे काले काले मोटे मोटे लंबे लंबे, सारी मतलब दुनिया रश्क करती थी।
0: क्या बात,
2: और इसकी जो बिंदी लगाती थी सांप जैसी ऐसे घुमा फिरा करके काली सी, अभी भी लगी है देखो। अच्छा वो टीवी नहीं है, रेडियो है। कि अरे नहीं रेडियो में कैसे दिखेगे, पर लगा रखी है, मैं बता रहा हूँ,
0: श्रोता सुन रहे हैं वो इमेजिन कर रहे हैं।
2: तो वो वाली ड्रेस जो उसका मेरा फेवरेट कलर तो जो इस पे फबता है वही है कोका कोला कलर का।
0: इतनी सारी आपकी तारीफ खूबियां बता दी यशपाल जी ने, अभी आप सोच के चुन के बताइए क्या खूबी है यशपाल जी के, कोई खास याद हो NSD वाले दिन और या फिर अपनी जिंदगी में?
1: यशपाल जी की एक फॉरगिव गिविंग बहुत अच्छी नेचर है, कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को। वैसे मेरे अंदर बहुत वो वाली क्वालिटी नहीं है कि मैं फॉरगिव कर पाती हूँ, मतलब
0: आप गांठ रख लेती हैं मन में।
1: हाँ थोड़ी सी मैं तो रख लेती हूँ।
0: अमूमन पुरुषों में ये बात आती है कि महिला जब कहीं समानांतर चल रही तब तो ठीक है, थोड़ा बहुत भी ग्रो करती है आगे जाती है, तो पुरुषों में ये बात आती है यशपाल जी?
2: अरे बेकार में बदनाम है पुरुष, काहे को ऐसे है, मैंने तो जितनी जगह भी देखा है हर जगह बेचारे पुरुष भीगी बिल्ली की तरह ही रहते हैं हमेशा, हमेशा पत्नी को सम्मान ही देते रहते हैं, हमेशा मतलब महिलाओं का सम्मान ही करते हैं, बोलते भी हैं करते भी हैं, फिर भी बेचारे बदनाम है। बताइए
0: देखिए यहाँ
2: सारी उंगलियां एक जैसे नहीं होती, सारी महिलाएं एक जैसे नहीं होती, वैसे सारे पुरुष भी एक जैसे नहीं होते, हमने ये भ्रांतियां बना ली हैं। तो इसीलिए हमको इंसान को पहचानना चाहिए, ना कि उसके रंग रूप जाति भेद भाव धर्म इन चीजों को लेकर के हम किसी को प्यार नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, और हम तो कलाकार हैं तो कलाकारी ही सबसे बड़ा धर्म है हमारा।
0: बिल्कुल सही बात है। अब वापस फिल्मों की ओर आते हैं यशपाल जी, बहुत सारी फिल्में हैं आपकी, और अगर हम आपसे कहें कि आप अपनी सब फिल्मों में से कोई 5 पसंदीदा फिल्मों का नाम लीजिए तो क्या याद कर पाएंगे, बताएंगे 5 या 6?
2: हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं,
0: और उससे जुड़ी कोई खास बात कोई खास याद साझा करना?
2: अब तक 56 इज माई फेवरेट फिल्म, और अपहरण, गंगा जल, लगान, और एक है वेलकम टू सज्जनपुर श्याम बेनेगल
0: की। जी जी
2: ये ऑलमोस्ट मेरी सबसे ज्यादा अच्छी फिल्में हैं, और दास कैपिटल प्रतिभा के साथ हमने की थी, और मेरी एक फिल्म है दादा लक्ष्मी
0: जी,
2: जो कि आई थिंक इज द बेस्ट, क्योंकि उसमें हर पहलू, परफॉर्मेंस हो, डायरेक्शन हो, म्यूजिक हो, गाने हो, लिरिक्स हो, कैमरा हो, सारी
1: उसमें मैंने भी छोटा सा रोल किया,
2: प्रतिभा ने भी एक रोल किया, बहुत ही बढ़िया हरियाणवी बोली है इसने, तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, और 107 अवार्ड मिल चुके हैं पूरी दुनिया में उसको, कांस में भी मैंने बताया था नेशनल अवार्ड भी मिला है उसको, तो बहुत ही मेरी फेवरेट फिल्म है वो। उसका पार्ट 2 बनाना है अभी, बाकी है अभी, पार्ट 1 तो बन गया है, 2.5 घंटे का है
0: जी,
2: 5 साल लगे बनाने में।
0: क्या बात है,
2: लेकिन बनाई, अच्छी बनाई, अल्टीमेटली आई एम हैप्पी कि जो सोचा था वो हुआ
0: जी। आपने डायरेक्ट भी की है?
2: जी डायरेक्ट भी मैंने की है, को प्रोड्यूस भी की है।
0: तो ये विचार कहाँ से आया डायरेक्शन का? तो
1: मुझसे आया था
0: जी,
2: ये तो खैर है ही इंस्पिरेशन हमेशा से, लेकिन पर्टिकुलरली इस फिल्म का जो आइडिया है वो एक फिल्म देखी थी मुझे, नट सम्राट नाना पाटेकर की
0: जी,
2: उसमें एक कहानी थी, एक्टर की कहानी थी जो कि

0: हैं जो लीजेंड एक्टर हैं हरियाणा के, उनको हरियाणा का शेक्सपियर बोला जाता है,
1: जी जी जी
0: पंडित लक्ष्मी चंद। तो फिर मैंने उस पे काम शुरू कर दिया, रिसर्च की, 17 किताबें पढ़ी मैंने, और उनका बहुत बड़ा नाम था, उनका बहुत बड़ी कविताएं थी, उनके कमाल के वो इंसान थे, कमाल की कहानी थी। तो फिर हमने उस पे फिल्म बनाना शुरू कर दी। बाद में पता लगा कि इनको 2 घंटे में समेटना बड़ा मुश्किल है, कम से कम भी 6-7 घंटा चाहिए, क्योंकि म्यूजिक भी बहुत है,
1: जी
0: गाने भी बहुत हैं। तो उत्तम सिंह जी ने म्यूजिक किया,
1: जी
0: और मैंने फिर इस फिल्म को 2 पार्ट में बनाने की सोची, और एक पार्ट में जहां तक मैं नहीं हूं, मेरे आने से पहले, और एक पार्ट मेरे आने के बाद,
1: जी
0: जहां मैं नहीं हूं वो हो चुकी है, और अभी मैं जिसमें आऊंगा मेन, उसमें अभी आना है,
1: तो ये दूसरा भाग अब बनेगा
0: दूसरा भाग बनेगा। अभी थोड़ा सा
1: जी।
0: बरेली के बच्चन से थोड़ा सा फ्री हो जाऊं।
1: जी, तो शुभकामनाएं बरेली के बच्चन के लिए, तो शुभकामनाएं हमने दी है और इस फिल्म के लिए भी शुभकामनाएं। तो अब बताइए, यहाँ कौन सा गाना सुनवाए अपने श्रोताओं को?
2: बा

0: रावड़ी राठौड़ में एक आपने किरदार निभाया है, उस किरदार के बारे में बताइए।
1: रावड़ी राठौड़ में मेरा करैक्टर इंस्पेक्टर का था, जो कि पॉजिटिव था और मजबूर इंस्पेक्टर था, जिसकी वाइफ को ये उठा के ले जाते हैं गुंडे लोग और विलेन लोग, और जिसमें मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वहाँ की पुलिस, शहर की सब सारा सिस्टम बेकार हुआ पड़ा है। तो ये बात जब नया नया इंस्पेक्टर आता है अक्षय कुमार, उसको पता चलती है, तो फिर वो जा कर के सबको मारता पीटता है और वही वाइफ को छुड़ा के लाता है और फिर वो सिस्टम को चेंज करता है धीरे धीरे। इस टाइप की कहानी है कुछ ये, तो बड़ा अच्छा लगा, मज़ेदार था। और कर्नाटका में एक जगह है जो बहुत मंदिर है जहाँ, उसकी जगह पे शूटिंग हुई थी इसकी, और बहुत ही कमाल की लोकेशन थी। अगर आप देखें उसमें पहाड़, बड़े बड़े पत्थर
0: जी,
1: और
0: जी,
1: ये लोकेशन बहुत कमाल की थी, इसलिए वो वहाँ पे शूटिंग की गई थी। तो वहाँ गए थे शूट करने,
0: जी।
1: अच्छा रहा।
0: यशपाल जी, फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताइए।

0: लोग फिल्म फेस्टिवल आयोजित करते हैं,
1: जी
0: आप
1: हाँ,
0: और प्रतिभा
1: प्रतिभा
0: मिलकर?
1: उसकी फाउंडर मेंबर है, मैं भी उसका फाउंडर मेंबर हूँ। और बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नाम से होता है, अभी 7वां साल चल रहा है और हम हर साल करते हैं। पूरी दुनिया से फिल्में मंगवाते हैं, फिल्म फ्रीवे के जरिए या ऐसे डायरेक्ट भी, तो उसमें शॉर्ट फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्में और गाने, वीडियो सॉन्ग्स और AI फिल्में भी इस बार ऐड किया है।
0: जी
1: तो इस तरीके स्टूडेंट फिल्म, मोबाइल फिल्म, ये सारे कैटेगरी होती हैं। तो पूरी दुनिया से फिल्में आती हैं, तकरीबन 300 के आसपास फिल्में आ जाती हैं
0: जी
1: टोटल, जिसको हम देख करके सेलेक्ट करते हैं उसमें से तकरीबन 100 के आसपास। फिर उस वो 100 फिल्में हम नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टरों को देते हैं, जूरी फिल्म मेकर्स को,
0: जी जी
1: जूरी को, कि आप फीचर फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप शॉर्ट फिल्म्स का रिजल्ट दीजिए, आप लॉन्ग शॉर्ट फिल्म का रिजल्ट दीजिए, आप डॉक्यूमेंट्री का, इस तरीके से हम देते हैं और वो फिर रिजल्ट देते हैं। फिर जो वो रिजल्ट देते हैं वो हम अनाउंस करते हैं और 3 दिन का फेस्टिवल रखते हैं, 2 या 3 दिन का, अब 3 दिन का हो गया है। तो वेदा कुंभा में बॉम्बे में हर
0: पुरस्कार
1: दिसंबर को
0: भी
1: हर
0: देते
1: साल
0: हैं।
1: तो होता है फेस्टिवल, और उसमें फिर हम सम्मानित करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, अवार्ड देते हैं, और कुछ सेलिब्रिटी भी बुलाते हैं, जैसे मुकेश छाबड़ा आ गए क्लास के लिए, रघुवीर यादव आ गए, और अनुभव सिन्हा की फिल्म दिखाई थी इस बार ओपनिंग फिल्म। तो इस तरीके से लोग आते रहते हैं, देखते हैं।
0: जी, बात अनुभव जी की, चलिए अनुभव जी से कोई आपकी मित्रता या उनसे मुलाकात का लम्हा याद यहाँ पे साझा करेंगे आप?
1: नहीं, ये मैंने किया था ना, वेब सीरीज है, नेटफ्लिक्स पे है, IC, वो जो हवाई हाईजैक हुआ था, हवाई जहाज,
0: जी,
1: हाँ, उसमें
0: हाँ,
1: मैंने काम किया था, एक छोटा सा, बढ़िया, अच्छा रोल था, छोटा
0: जी,
1: था, वो एकमात्र व्यक्ति था जो उस आतंकवादी को थप्पड़ मारता है, तो उसका
0: जी,
1: ही रोल था मेरा।
0: बिल्कुल,
1: मैंने बोला आपके साथ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब कोई भी रोल हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला शुरू में, बेटा छोटा सा रोल है यार, देखो कहीं तुमको ऐसा ना लगे। बोले नहीं, कुछ नहीं लगेगा, लेकिन रोल इतना अच्छा था कि मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया। मेरे को देख के लोगों ने सराहा कि यार क्या सॉलिड रोल किया तूने, 2 या 3 सीन है मेरे, लेकिन जो भी है कमाल के, मतलब तुमने कर दिया है, ऐसी सिचुएशन पे है वो सीन। तो मैंने कहा चलो, तो अनुभव सिन्हा का मैं फैन रहा हूँ, प्रतिभा भी, हम दोनों उनकी फिल्मों के, क्योंकि उनकी सारी फिल्में किसी न किसी मुद्दे पे होती हैं
0: जी,
1: और बड़ा अच्छा वो करते हैं, तो इसीलिए
0: समाज को।
1: प्रतिभा ने ही सलाह दी थी कि अनुभव सिन्हा को बुलाओ ना, उनकी फिल्म दिखाते हैं। तो फिर थप्पड़ फिल्म दिखाई थी हमने, और वो ओपनिंग फिल्म, और
0: बेहतरीन फिल्म थी थप्पड़,
1: जी
0: हमने
1: जी
0: देखी।
1: तो उसमें फिर हम मिले थे।
0: जी प्रतिभा जी, आपसे जानना चाहेंगे, फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होता है आप दोनों के माध्यम से और आप भी फाउंडर हैं, तो आप अपना अनुभव साझा कीजिए। यशपाल जी ने अपना अनुभव साझा किया और आप बताइए इसके बारे में, आपका क्या अनुभव होता है कि एक बड़े फलक पर ये काम कर रही हैं, और अमूमन ये काम महिलाओं के खाते में कम ही आता है,
2: हाँ,
0: तो कैसा एक्सपीरियंस होता है इतने सारी फिल्मों को अपने पास बुलाना और एक एक मुखिया की तरह करना?
2: एक्चुअली ये मैं और मेरा एडिटर, हमारी फिल्म आमो आका एक से, ये मैंने काफी साल लगे थे मुझे इस फिल्म को बनाने में, तो वो हम लेकर फिल्म फेस्टिवल में गए थे एक बार नासिक में, तो इतना मिसमैनेजमेंट वहां था, और दादा साहब फाल्के के नाम से वो फेस्टिवल करते हैं और इतना मिसमैनेजमेंट और ये था, तो फिर मुझे वो मेरा एडिटर था, प्रतिभा जी आप तो ऐसे 10 फिल्म फेस्टिवल कर सकते हो,
0: क्या बात है।
2: तो मैंने कहा चलो फिर करते हैं, है ना, तो वो बात आई गई हो गई थी। और फिर मैं एक फिल्म लिख रही थी, उसके बीच में मुझे मेरी एक असिस्टेंट थी, वो मुझे कह रही थी कि आप क्यों नहीं करते कोई फिल्म फेस्टिवल, आपको करना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, ये बात मुझे काफी 2-4 लोग अभी तक कह गए हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इशारा है, तो मैंने सोचा कि फिर चलते हैं, करते हैं, शुरू किया हमने, और टाइटल भी बिल्कुल आसानी से मिल गया हमें, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जबकि मुझे लग रहा था नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी ले चुके होंगे,
0: जी, जी।
2: या कहीं तो ये होगा टाइटल रजिस्टर्ड, पर अनुमन ऐसा हो गया कि हमें बिल्कुल आसानी से मिल गया, और बहुत खुश हुए हम लोग कि चलो ये टाइटल का ही तो मेन खेल होता है ना फिल्म फेस्टिवल में।
0: जी।
2: तो वो सब कुछ मतलब हम कर रहे थे, फिल्म फ्रीवे से भी फिल्में आ रही थी, और पहले ईयर में हमें 250 फिल्में मिली
0: जी जी,
2: और जबकि वो कोरोना का पीरियड था,
1: लॉकडाउन था
0: जी,
2: लॉकडाउन था और कहीं आप कर नहीं सकते थे, ऑनलाइन हमने फिल्म फेस्टिवल किया था, पहले दो साल हमने ऑनलाइन किया, तो भी हमें इतना ह्यूज रिस्पांस ऑनलाइन में भी रहा।
0: और अब वेदा कुनवा में
2: ऑफ कोर्स अब तो फिजिकली करते हैं
0: तो बहुत बढ़िया है, और जो भी हमें लगता है श्रोता सुन रहे होंगे वो इसमें शामिल होना चाहेंगे तो शामिल भी हो सकते हैं,
2: बिल्कुल होना ही चाहिए।
0: प्रतिभा जी, बहुत सारी शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन आपने किया है जिसमें यशपाल जी भी,
2: यशपाल जी मेरे प्रोड्यूसर है।
0: अच्छा, वो प्रोड्यूसर है तो उनको डायरेक्ट करने का मौका नहीं मिला आपको?
2: नहीं नहीं, कभी नहीं मिला। नहीं, हालांकि वो चाहते हैं, कभी मुझे बोलने भी थे, तो मुझे सोच के कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखते ना
0: कोई रोल दे दो हमें भी ऐसा बोला तो उस शॉर्ट फिल्म के निर्देशन का अनुभव आप साझा कीजिए, कुछ फिल्मों के नाम बताइए।
2: एक पिज्जा एमएमएस है मेरी फिल्म, एक नई अम्मी है
0: जी,
2: एक खुली खिड़की है, फिर आमो आखा एक से है, है ना, ये सारी फिल्में यूट्यूब पे अवेलेबल है। लेकिन पिज्जा एमएमएस का मैं खास करके बताना चाहूंगी कि दो ही एक्टर थे उसमें और दो ही एक्टर की 16 मिनट की नॉन कट मतलब फिल्म है वो, नो एडिटिंग, एक ही कट है वो 16 मिनट का।
0: अच्छा, क्या बात है।
2: हाँ, तो वो फिल्म का हम लोग एटलीस्ट हफ्ता भर रिहर्सल किए थे और उसके बाद वो एक कट करने के लिए एटलीस्ट पूरा दिन लग गया था फाइनल कट आने तक।
0: अब एक गाना सुनते हैं फिर थोड़ी सी बातें और करते हैं
2: जी।
0: एक गाना बताइए, कौन सा सुनवाए?
2: कुहू कुहू बोले कोयलिया।

0: थोड़ी देर पहले जब आपकी निजी जिंदगी की बातें हो रही थी तो यशपाल जी ने आपकी बड़ी खासियत बताई, खूबसूरती को बयां किया। आप भी कुछ ऐसा वर्णन कीजिए ना, बताइए यशपाल जी की कौन सी बात आपको बहुत पसंद आती है और उनकी क्या चीज देखकर आप फिदा हुई थी?
1: उन्होंने मैं तो इनकी तो एक्टिंग ही देख के बहुत फिदा हुई थी।
0: और बाकी
1: मुझे ऐसा लगता था कि बस ये मतलब एक शानदार एक्टर का एक कमाल का एक बंदा है और कमाल का पर्सोना है।
0: उनकी एक्टिंग वाली कौन सी फिल्में हैं जो आपको हर वक्त याद आती हैं और जिसका
1: लगान तो ऑफकोर्स मेरी बहुत ज्यादा और कुछ फिल्मों के नाम है और अब तक 56 और मुंबई से आया मेरा दोस्त, इनकी बहुत ही मतलब ये बिल्कुल इसमें प्रिंस जैसे लगते हैं बिल्कुल।
0: क्या बात है।
1: हाँ,
0: और कभी उनकी आलोचना भी करती हैं उनकी एक्टिंग की कि ये एक्टिंग?
1: हाँ, मैं बोलती हूँ उनको कि ये थोड़ा सा वही वही वही वही तुम कर रहे हो।
0: तो उनकी जब आलोचना करती हैं तो क्या रिएक्शन होता है यशपाल जी का?
1: बिकॉज हम लोग क्लासमेट्स हैं और बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं तो ऑफकोर्स बहुत सीरियसली लेते हो मेरी चीजों को, ऐसे नहीं लेते कि हाँ इसको क्या समझ में आता है टाइप्स।
0: जी जी। और आप महाराष्ट्र की मराठी भाषी, वो हरियाणा के हिसार के, वो हरियाणवी, तो आपने हरियाणवी सीखी, उन्होंने मराठी सीखा, एक दूसरे को भाषा आदान प्रदान?
1: हाँ, मुझे तो हरियाणवी तो सारी समझ में आती है, इन्होंने लेकिन एक ही वाक्य सीखा मराठी का।
0: कौन सा?
1: माझे भाई को मराठिया है।
0: दो चार वाक्य सुना देते हैं, सिखा देते हैं ना कुछ।
2: देखो मैं ना मराठी समझ जाता हूँ अब।
0: हाँ।
2: मैंने समझने की कोशिश बहुत की क्योंकि मैं ससुराल में जाता था, सब मराठी बोलते थे। इसके दोस्त लोग आते थे कोई मराठी, सब मराठी दोस्त बोलते थे मराठी। फिर इसकी सहेलियां आती थी मराठी, वो मराठी बोलते थे। इसका मतलब जो भी आता था मराठी बोलते थे। तो मैंने कहा मुझे समझ में कहीं मेरी चुगली उगली तो नहीं कर दें। तो हुआ क्या कि ये NSD में जब थे तो मुझे ना बड़े प्यार से बोलते थे, माझा शेमड़ा, माझा गाढ़ो, माझा पता नहीं क्या क्या बोलती थी। तो मैंने एक दिन पूछ लिया अभय कुलकर्णी से कि भैया ये शेमड़ा और गाढ़ो का मतलब क्या होता है? बोले गाढ़ो का मतलब गधा और शेमड़ा का मतलब जिसका नाक बहता रहता है। मामला उत्तरा भला हो जाए। अब ना मैं एक्सप्रेशन पे नहीं जाऊंगा, मीनिंग पे जाऊंगा। एक्सप्रेशन तो बहुत अच्छे थे, माझा शेमड़ा और माझा गाढ़ो, और मतलब मीनिंग कुछ और। फिर मैंने सोचा मराठी सीखना बहुत जरूरी है, बोलो चाहे ना बोलो समझना बहुत जरूरी है।
0: तो ये जो मराठी में आपको बोला करती थी, आपने कभी हरियाणवी में इनके लिए कुछ नहीं बोला ऐसे?
1: मैं तो सब समझती हूं।
2: मेरे को वैसे वाला प्यार आता नहीं है, बाबू सोना। हाँ बस बेटा जरूर बोलता हूँ, नहीं बेटा ऐसे नहीं। ऐसे ही प्यार से बस, बाकी मुझे कुछ क्या बोलते तरीके, हाँ एक नॉन रोमांटिक बिल्कुल, ना मनाना ना तारीफ करने की मुझे अकल है कुछ। मैं बिल्कुल अखड़ आदमी हूँ बिल्कुल, मुझे समझ में नहीं आता बेचारी ये किसे सहेली। कई सालों बाद इसको भी समझ में आया कि ये है ही ऐसा। हाँ नहीं तो पहले तो उन्हीं बातों पे लड़ाई की, कोई बात बोल दी, कोई मजाक कर लिया मान लो तो बुरा मान गए। और मैं सोचू यार मैंने तो जोक मारा था, ये तो नाराजी हो गई। तो इसलिए जोक भी थोड़ा सोच समझ के मारना पड़ता था, लेकिन अब थोड़ा ठीक हुआ है। अब हम एक दूसरे को स्पेस भी देते हैं, अपना समझते हैं कि यार हर चीज में हर बात पे नाक चढ़ा कर बोलना जरूरी नहीं है, रिएक्ट करना हर चीज को जरूरी नहीं है। जिंदगी में मैंने तो देख लिया अगर पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती है तो डाउट होता है।
0: बिल्कुल सही, ये आपने बहुत सही बात कही।
2: और पति पत्नी में पति को बहुत जरूरी है कि खुद की गलती ना भी हो, सामने वाले की भी गलती हो, तो अब तुम खुद बोलो कि नहीं मेरी गलती है, तब रिश्ते बिल्कुल ठीक रहते हैं। मैंने वो सीख लिया है। तो इसलिए जब ये भी गलती करती है तो मैं अपना मनी मेरी गलती है मैं बोलता हूँ, तो हम सुधर रहे हैं बिल्कुल
0: सही रहते हैं। ऐसा
2: कभी कुछ होता नहीं
0: कि आपकी गलती हो और ये मानते हैं कि हमारी गलती
1: है? नहीं नहीं, इतने भी शरीफ नहीं है।
0: ये तो बहुत अच्छा हुआ कि दोनों लोग एक साथ आए और ये दोनों की पोल खुल रही है, नहीं तो पता चलता कि अच्छी अच्छी बातें यशपाल जी बता जाते और फिर हम भ्रम में रह जाते। तो बहरहाल यहाँ पर एक ऐसा गाना होना चाहिए आप दोनों साथ में गए एक दूसरे के लिए, कभी विवाह के बाद या विवाह से पहले एक दूसरे के लिए गुनगुनाया होगा जाहिर सी बात है।
2: हाँ।
0: तो
2: ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल

0: क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। सचमुच बातें इतनी दिलचस्प हो रही हैं, हमारा तो दिल कर रहा है कि और बातें करती जाऊं, लेकिन अब कुछ चीजें छोटी छोटी जानना चाह रहे हैं कि गाना एक साथ गाते हैं फिल्मों में, आप दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, आप हरियाणा के, ये महाराष्ट्र जलगांव के गाँव के पास, खान पान का कल्चर तो काफी थोड़ा सा अलग है। हरियाणा में बहुत सारा दूध, मट्ठा, दही, तो वो खान पान का मेल जरा बताइए, दोनों लोग बताइए अपने अपने स्वाद और अपने पसंद।
1: मैं तो बोलता रहता हूँ भाई ये बना दो, जो मेरा तब देसी कढ़ी चावल हो गया या वहाँ का राजमा चावल हो गया या आलू गोभी की सब्जी होगी पंजाबी स्टाइल में। लेकिन अभी मैंने क्या है कि अभी मैं मराठी खाना भी सारा, क्योंकि दिल्ली में ही इसने जब रेपेट्री में थे तो मराठी खाना बनाती थी, हम साथ रहते थे जब, तो मेरी आदत पड़ गई थी और मैं उसका कायल हो गया था, क्योंकि मैं सबसे पूरी रिपेट्री में सबसे अच्छा खाना इसी का होता था और सब लोग यही वेट करते थे कि आज प्रतिभा क्या बना के लाएगी।
0: क्या बात है।
1: और हमारा ही खाना हमारा ही नसीब में नहीं होता था, बाकी सब थोड़ा थोड़ा
0: अच्छा।
1: खा जाते थे।
0: तो आपको हरियाणवी खाना बनाना आता है?
1: हाँ बिल्कुल बनाना आता है।
0: बना के खिलाया आपने प्रतिभा जी को?
1: हाँ बिल्कुल, कई बार खिलाया है।
0: सच है प्रतिभा जी? अच्छा,
2: खिलाते हैं
0: जी जी। तो चलिए ये स्पष्ट हो गई कि दो तरफा बातें हो रही। आप हरियाणा की कुछ बातें और बताइए यशपाल जी, पिताजी की, माँ की। आपने बताया था कि बहुत शरारतें बताई थी, वैसी कोई बात है तो चलते चलते बताइए हमारे श्रोता।
1: नहीं नहीं, बस ये तो बड़ा एक अजीब सा माहौल था जो कि एक मुझे ड्रीम की तरह लगता है अब, क्योंकि वो जो वैल्यू थी ना चीजों की उस वक्त, वो जैसे हमने पूरे परिवार ने पैसे इकट्ठे किए, तकरीबन 750 रुपए इकट्ठे किए। मेरी मदर स्वेटर बुनती थी, सिलाई करती थी कपड़े, और बड़ा भाई जो है वो एक लेमन की बोतलें सप्लाई करता था इधर रिक्शा पे, तो इकट्ठा कर करके हमने तकरीबन 750 रुपए इकट्ठे किए और साइकिल,
0: अरे वाह क्या बात है,
1: आनी थी उस दिन। और मेरे बड़े भैया साइकिल लेने गए थे और हम पूरा परिवार, क्योंकि 6 भाई बहन थे उस वक्त, और सब लोग पहले मैं चलाऊंगा और अंदर बाहर कभी इधर कभी उधर थोड़ा सा बैठे फिर उठ जाएं, मतलब इतनी बेचैनी कि कब आएगी साइकिल। फिर वहां से दूर से साइकिल आती दिखाई दी गली में, 20 मकान थे हमारा बीच में था, उस दर से 10 मकान उधर से साइकिल आती दिखाई दी गली में, भैया आए चलाते चलाते हरे की हीरो साइकिल, और फिर जैसे ही आए हमने जकड़ ली और फिर एक एक करके कैंची फैंची चला चलू के, इतना मजेदार दिन था वो कि मैं बता नहीं सकता। कट्टू बॉम्बे में गाड़ी खरीदनी थी, पहली गाड़ी थी हुंडई एक्सेंट, और ड्राइवर हमने पहले ही रख लिया था क्योंकि वो एक टैक्सी वाले से बात की थी, तो उसने ड्राइवर दे दिया था यूपी का घनश्याम, तो उस घनश्याम को हमने भेजा और उसके मोबाइल पे हमने फोटो मांगी कि हमको फोटो दिखाओ कौन कौन सी गाड़ी है, तो गाड़ी के कलर दिखाए उसने, मैंने कहा ये वाली लेनी है, और फिर ले आए और फिर पेमेंट हो गई। मेरे दिमाग में दिल में बिल्कुल भी हमारे एक्साइटमेंट नहीं था गाड़ी खरीदने का। तो ये थी वैल्यू, एक चीज पैसे की वैल्यू, चीजों की वैल्यू। आज लाखों रुपए की चीजें आ जाती हैं, कोई मतलब वैल्यू ही नहीं रहती, बच्चों में खासकर।
0: जी बिल्कुल,
2: आजकल के
1: हम तो
0: एक खिलौना बहुत कीमती हुआ करता था।
1: हम तो 20-20 पैसे 10-10 पैसे कैसे संभाल के खर्चते थे, क्या क्या आ जाता था उन दिनों। आज तो लाखों रुपए अभी बच्चे खर्च देते हैं तो पता नहीं चलता।
0: चलते चलते हमारे तमाम श्रोताओं से, बहुत सारे श्रोता जो हैं एक्टिंग की फील्ड में आना चाहते हैं, मुंबई आना चाहते हैं, आपके हरियाणा से, हिसार से, और देश के तमाम जगहों से आना चाहते हैं।
1: मैं तो सबको यही कहना चाहूंगा कि ऑडिशन देते हो या कहीं भी कुछ जाते हो, कोई भी नाटक करते हो, कोई भी कहीं भी कुछ करते हो, तो कभी भी दिखावा मत करो। हमने दिखाते बहुत हैं, देखो देखो मैं हंस रहा हूँ, देखो देखो मैं कितना अच्छा हूँ, देखो देखो मैं कैसी एक्टिंग कर रहा हूँ, देखो मैं रो रहा हूँ, देखो नहीं दिखाओ, रोवो हंसो, अपने आप पता चल जाएगा लोगों को। और दूसरा, आपके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है जो आपको पता नहीं होता, जैसे हनुमान के अंदर थी, जामवंत ने याद दिलाया था कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज हैं, तुम उड़ सकते हो, इतने योजन पार कर सकते, तो वो चीजें आपके अंदर हैं। आप ऐसा कोई साथी, ऐसा कोई गुरु होना चाहिए जो आपको सही दिशा दे, क्योंकि हम अपनी पोटेंशियलिटी का 30% ही यूज करते हैं मैक्सिमम, बाकी सारी अंदर दबी रहती है और हम यूज ही नहीं करते उसका। कुछ इनहिबिशन होती है, कुछ डर होते हैं, कुछ खौफ या कुछ शर्म लड़कियों में खास कर के, हम खुल करके अपने आप को नहीं कर पाते इजहार।
0: जी, जी, बिल्कुल।
1: तो मुझे लगता है कि वो चीजें आपको करनी चाहिए और आप खुल करके करेंगे और दिल से करेंगे, अंदर से करेंगे, आप रोएंगे वाकई में तो दुनिया को पता चल जाएगा कि आप रो रहे हैं, और आप हंसेंगे तो पता चल जाएगा कि आप हंस रहे हैं, खुश हैं तो खुशी पता चल जाएगी। तो इसीलिए उसको दिखाने की बजाय होना चाहिए, बी देयर।
0: जी बिल्कुल,
1: करो मत, हो जाओ।
0: बिल्कुल प्रतिभा जी, आप ये बताइए हमें कि कोई ऐसी तमन्ना है, कोई ऐसा सपना है जो अधूरा रह गया जिसे पूरा करना चाहती हैं? महिलाओं के साथ अक्सर होता है, बहुत सारे ख्वाब देखे जाते हैं लेकिन अधूरे रह जाते हैं, कई बार परिस्थितियां नहीं साथ देती हैं, कई बार परिवार, तो ऐसे कभी कोई नौबत आई है समझौते की?
2: नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को ना शादी पहले नहीं कर लेनी चाहिए, पहले करियर कर लेना चाहिए, फिर शादी करनी चाहिए। मैं सभी लड़कियों के लिए बोल रही हूँ कि जो भी लड़कियां अगर इस फील्ड में आना चाहती है, अगर उनको कुछ लाइफ में कुछ करना है तो पहले खुद करियर कर लो, उसके बाद शादी के बारे में सोचो।
0: बिल्कुल,
2: हमारे वक्त तो ऐसा वक्त था तो परिस्थितियां भी ऐसी थी, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। पर आजकल अगर कोई लड़की अगर इस फील्ड में आती है और इस फील्ड में अपना काम करना चाहती है, करियर बनाना चाहती है, तो सबसे पहले अपना मुकाम हासिल करो और उसके बाद शादी के बारे में सोचो।
0: बिल्कुल सही बात है। और एक लाइन गुनगुनाइए दोनों लोग। बस यहाँ पे हम अब एक हैप्पी नोट पर खत्म कर रहे हैं प्रोग्राम।
1: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहां से हुजूर।
0: क्या बात है यशपाल जी और प्रतिभा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।
1: नमस्कार ममता जी, थैंक यू सो मच, सो नाइस इंटरव्यू, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।
2: बहुत स्वीट, बहुत प्यारी यादें आपके साथ हमने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: बहुत शुक्रिया।
3: ये थी जाने माने अभिनेता यशपाल शर्मा और उनकी पत्नी प्रतिभा शर्मा से ममता सिंह की बातचीत। आज आपने सुना दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है FM 110.7 MHz पर। शाम के 5 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

0: साथी बने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अरचोका, बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और रामानुज नगर में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये अभय पुर, मेंड्रा, चंदन नगर, टुकुडाण, सिलफिली, कनक नगर, करसी, बूढ़ाडाण, गणेशपुर, गुड़गवा, मदन नगर, सिंघरा, दलदली, भरदा, गौरा, धर्मपुर, सरहरी, केवरा, करंजवार, सेमई, दरहोरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, रघुनाथ नगर, धमनी और रामानुजगंज में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये पिंडारी, कोटराही, मदनपुर, गुरमुटी, सोनहत, नवगई, गैना, धौरा, बिशुनपुर, सिलाजू, उचेरवा, चीनिया, महावीरगंज, इंदरपुर, शिवपुर, रामपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये उदारी, अस्कला, दोरना, जरहाडी, शिवनाथपुर, घासीडी, सरगा, ढोढ़ा गांव, कठबुड़ा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और बगीचा में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये मयूरचुंदी, कुंजारा, पाकरटोली, श्रीटोली, ढोंगा आंबा, उपका पानी, शाहीडांड, कर्मा, नंदो ओली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो और कापू में हाथियों की कुल संख्या 108 है। ये आमगांव, गेरसा, उदउदा, पोटिया, आमापाली, नागदरहा, कुड़ेकेला, छाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला और कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 16 है। ये कांसीपानी, जामपानी, साजापानी, गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के पसान, जडगा, एतमानगर और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 52 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, सिटी पखना, फुलसर, कोरबी, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 57 है। ये बंगूरसिया, बरकछार, चक्रधरपुर, धुमा बहाल, नागदरहा, कया, कमतरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के देवपुर और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये अचानकपुर, कोठारी, तालदादर, नवा गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारीपानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायलीखंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल न करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
2: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।
0: प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ आप सुन रहे थे। कार्यक्रम के प्रायोजक थे सीएफ वन विभाग सरगुजा। 107 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 5:05 हुए हैं। सुनिए कार्यक्रम विवरण। 5:10 पर झलकी प्रहसन आप सुनेंगे। युवाड़ी होगा 5:30 पर। कार्यक्रम में आज के बाद का विषय रहेगा नेत्रदान का ले संकल्प, किसी के अंधेरे जीवन का बने विकल्प, राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा। और सुनेंगे संगीत संध्या, चर्चा में मोबाइल की लत से दूर होकर अपना करियर बनाएं। फिल्म संगीत 6:20, 7:00, 8:30 पर सुन सकेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 7:30 पर 8:00 हमारे केंद्र से सुनेंगे गैर फिल्मी गीत। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से ही 8:15 पर रिले करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे साइबर जागृति अभियान पर विशेष कार्यक्रम। विविध संगीत का समय रहेगा रात 10:00 का। 10:30 पर पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें आपको सुनवाएंगे। रात 9:00 आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों को। कार्यक्रम का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से करेंगे।
3: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
4: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
3: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
5: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
6: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: संदेश पहले आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण FM 100.7 MHz पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 5:10 हुए हैं। वक्त हो चला है कार्यक्रम झलकी का। झलकी कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं पतला दूध, जिसे लिखा है संतोष श्रीवास्तव ने।

0: ना। अरे बाप रे बाप, देखो कितने जाले लगे। ये सेठ भी तो खूब, अरे सेठानी जी भी खूब है। अरे भैया ये, अरे भैया, अरे रे रे, देखो अरे कितना कचरा पड़ा हुआ है, इतने रेडियो के नीचे भी पड़ा हुआ है। कमखत इतना काम करवाता है सेठ मुझसे, इतना काम करवाता है, मेरी तो हड्डी पसली एक करवा लेता है। भैया मैं तो बाज आया सेठ के नौकरी करके। अरे कहता है दाल पकाने के लिए 2 मिनट, सब्जी के लिए 30 सेकंड, चावल के लिए 1 मिनट में गैस जलाऊं, नहीं तो कहता है पैसे काट लूंगा। यानी फ्री में महीने भर का काम करवाएगा ससुरा। मैं तो बाज आया ऐसे मालिक से,
1: कसम 100 रुपये की। अरे ओ मालिक के बच्चे, कितनी देर हो गई, अभी तक ना नाश्ता ना चाय, क्या भूखो ही मार डालोगे?
0: अरे मालिक भूखे मरे आपके दुश्मन। हाँ मैं तो मालिक ये कह रहा था कि बस गर्मा गर्म हलवा तैयार हो गया है, अभी लाता हूँ, आप टेबल पर बैठिए तो सही।
1: ले आ नाश्ता। अरे ओ भगवान, अरे ओ दयावान, अरे ओ सौभाग्यवती, अरे ओ परमवती।
2: अरे ओ परमवती के सौभाग्यवती पति, क्यों मोहल्ले को सिर पर उठा रहे हो? अरे आ तो रही हूँ, कसम 200 रुपए की, कहो।
1: अरे परमवती, आज तो दिनकर ने कमाल कर दिखायो।
2: क्या?
1: अरे गरम गरम हलवा बनायो
2: है। हैं?
1: अरे लेकिन ये तो बता दिनकर भाया, ये हलवा के लिए तूने मटेरियल किधर से लियो?
0: अरे सेठ जी, आकर मैं हूं ना आपका नौकर, खासम खास कसम 300 रुपए की मालिक। अरे वो अपनी दुकान के पड़ोस में राम प्रकाश की दुकान है ना, वो परचूनी की। बस शाम को जब राम प्रकाश ने दुकान बंद की तो उसकी दुकान के सामने पड़ी सूजी शक्कर उठा रहा बस मालिक।
2: अरे वाह।
0: अरे बस मालिक, खर्च हुई तो 1 मिनट की गैस कसम 300 रुपए।
1: अरे लूट गए रे, ये दिनकर ने मारे को लूट लियो। अरे कसम 100 रुपये की। अरे 30 सेकंड की गैस के काम में तूने 1 मिनट लगायो, समझ ले तेरे 30 सेकंड की गैस के पैसे कट गए, कसम 100 रुपये की।
2: कसम 200 रुपये की, काहे शोर मचा रहे हो? अरे एक तो बेचारे दिनकर ने हलवा खिलाया और ऊपर से, चिंता मत कर दिनकर, मैं सेठ जी से पूरे पैसे दिलवाऊंगी। हाँ
0: सेठानी जी, कसम 300 रुपए की, अपने सेठ जी बहुत दयालु है, बहुत दयालु है। एक बार बड़े तालाब के पास ढाबे पर गया था।
2: है? क्यों रे? बड़े तालाब के पास कौन सा ढाबा है?
0: ढाबा तो सेठ जी बता दूं।
1: ओ दिनकर के बच्चे, क्यों इज्जत उतारने में लगे हो?
2: हाय राम, कसम 300 रुपए की, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। अरे मैं समझी वो कलमुही अनारकली है ना, सेठ जी की पुरानी सहेली। अरे फिर यहाँ धमकी है? हाँ
0: हाँ सेठानी जी, एक बात और बताऊं। अरे एक जगह सेठ जी ने कार रोककर पीछे ले जाने को कहा। ड्राइवर कार पीछे ले जाता रहा, और सेठ जी कहते रहे और पीछे।
2: फिर?
0: अरे तब कहे सेठानी जी, एक जगह सेठ जी ने कार रुकवाई, फिर खुद नीचे उतरे और वहाँ एक मूंगफली पड़ी थी।
2: मूंगफली?
0: हाँ सेठानी, मूंगफली। सो सेठ जी ने उसे छीला, उसमें सेठानी जी कसम 300 रुपए की 3 ही दाने थे।
2: 3?
0: हाँ सेठानी जी, 3 दाने। फिर सेठ जी ने एक दाना खुद खाया, एक मुझे दिया और सेठानी जी एक ड्राइवर को दिया, और फिर बोले, क्या बोले सेठ जी?
1: हमारे साथ रहेगो तो ऐसे ही ऐश करेगो।
0: हाँ सेठानी जी, कसम 300 रुपए की, ठीक ऐसा ही कहा था सेठ जी ने।
2: जैसे तुम वैसे तुम्हारे सेठ जी। कसम 200 रुपए की, तुम्हारे सेठ जी ने एक मूंगफली के लिए 10 रुपए का पेट्रोल जला दिया। हाँ
1: अरे ओ दिनकर के बच्चे, यह बात तुझे उसी समय बतानी थी कि नहीं? अब तेरी तनख्वाह से समझ ले, कसम 100 रुपये की कट गए 10 रुपये।
0: अरे मालिक, इस गरीब पर काय का अन्याय कर रहे हो? अब सेठ जी को ऐसा चूना लगाऊंगा, ऐसा चूना लगाऊंगा, पूरी कसम निकाल लूंगा। हाँ
1: अरे क्या क्या भगता रहता है, चूनो चूनो किसे लगाएगा?
0: अरे अरे अरे मालिक, चूना तो मैं पान में ही लगाऊंगा ना। अरे वो आपके पान में? हाँ सेठ जी, कसम 300 रुपए की।
2: तू इधर चूना लगाने में लगा है और उधर दूध वाला पानी मिलाने में। सच कहूं सेठ जी, इस दूध वाले का कुछ करो। रोज रोज पानी मिलाकर ऐसा दूध पिलाता है कि ठंडे दूध में शक्कर मिलाने पर वो लस्सी जैसा हो जाता है।
0: सेठ जी, 300 रुपए की कसम, वही मैं कह रहा था, इस दूध वाले का कोई इलाज होना ही चाहिए। हाँ
1: हाँ हाँ, ठीक है दिनकर, जब वो अपने को दूध में पानी मिलाकर दे हुए है, इस महीने से दूध वाले को पैसों भी पानी में मिला कर दें।
2: कसम 200 रुपए की, मैं तो सेठ जी की अक्ल पर अपना सिर पीट लूं तो वो भी कम है। अरे दूध वाले को पैसे सूखे दो या पानी में मिला कर दो, उसे क्या फर्क पड़ेगा, लेना तो उसे पूरे पैसे ही है ना।
0: कसम 300 रुपए की, सेठानी जी सही बात कहती है मालिक।
1: अरे मालिक के बच्चे, नौकरी मेरी कर तो है और चाकरी सेठानी जी की, तेरे आज के पैसे भी कट समझ।
2: अरे ऐसे कैसे दिन करके पैसे कट, उसे पूरे पैसे मिलेंगे, काटने हैं तो दूध वाले के काटो। हाँ
1: दूध वाला? अरे दूध वाले ने तो बड़ा परेशान कर रखो है, कसम 100 रुपये की, अब इसका इलाज तो करने ही पड़ेगा।
2: कसम 200 रुपये की, तुम करो दूध वाले का इलाज, मैं तो चली मैके।
1: अरे अरे अरे मेरी दम्मो, दम्मो, अरे तुम मैके क्यों चली, अरे तुम भी यहीं रहो और दूध वाले भी यहीं रहेगो। अरे अपनो प्यारो सो मोटो सो ये दिनकर भी यहीं रहेगो।
2: अरे झूठ बोले कौआ काटे, दूध वाला तुम्हें पतला दूध दे या गाढ़ा दूध, मैं तो चली अपने मैके। हाँ
1: अरे अरे अरे वो मेरी दम्मो चली गई रे, दिनकर कसम 100 रुपये की, मुझे अभी दूध वाला मिल जाए तो सच का उसकी जान ले लूंगो।
3: पान बनारस वाला, खाई के पान बनारस वाला, सेठ जी तुहार प्यारा सा दूध वाला आया, पानी कम दूध ज्यादा लाया।
1: अरे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अरे दूध वाले तेरी वजह से मारी दम्मो मैके चली गई। अरे दिनकर दिनकर इसे पकड़ियो तो।
0: जी मालिक, अरे कसम 300 रुपए की,
4: ये क्या हो रही है
0: सेठ जी, मारी सेठानी तुझसे नाराज होकर चली गई। हां
1: अरे क्यों, मुरली मनोहर, कृष्ण गोपाल, बंसी वाले, गोपियों के ग्वाले।
3: सेठ जी, जे कितनी डिग्रियां दे डाली हम को, आज तक तो ऐसा का बहु नहीं बोले।
1: अरे आज तक नहीं बोलो, इसी को तो तू फायदा उठा तो रहो।
3: नहीं सेठ जी,
1: अरे दूध में दूध कम पानी ज्यादा मिला तो रहो।
3: जा का कह रहा हूँ।
1: वो क्या कहता था तू, मारे को किस गाय को दूध देते थो?
3: रानी गाय।
1: वो रानी गाय को तो? हाँ हाँ, तो बोल बोल बोल रानी, तेरे दूध में कितो पानी?
3: अरे मालिक कसम ऊपर वाले की, दूध तो आपको मैं बिल्कुल खालिस लाता हूँ, वो दूध देने के पहले रानी को, अरे रानी हमार गाय, ठंडे पानी से नहाने की आदत रहिन मालिक।
1: अच्छा
3: वही पानी दूध में आ जाए मालिक।
1: अरे कम से कम दूध में पानी तो साफ मिलाया कर।
3: अरे मालिक नगर निगम ने पानी के रेट भी तो काफी बढ़ा दिए हैं, अब मालिक इसे होत का है, रानी नहा भी लेत है और हमार धर्म भी भ्रष्ट नहीं होत, अब हमहूं दूध में पानी नहीं मिलात।
1: हाँ तू नहीं मिलात है, दूध में पानी अपने आप मिल जाते है और तेरो काम भी बन जाते हो।
3: अरे मालिक अब हमहूं पानी नहीं मिलात, वो तो हमार पड़ोसी है ना दया शंकर मालिक, वो तो मालिक अब मुंह का खोलूं मालिक नाली का पानी मिलात है। अच्छा मालिक जा बताओ, हमार दूध से आपकी यहाँ आज तक कोई बीमार पड़ो का?
1: कसम कसम 100 रुपये की, मैं कुछ नहीं जानतो, कल से दिनकर रानी के पास खड़ो रहेगो जब तक तू दूध निकालेगो, और कल से तुझे आने की भी जरूरत नहीं, दिनकर ही दूध लेकर आएगो।
0: अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, मेरी पगार काटता था ये कंजूस मक्की चूस सेठ।
1: क्या चूस भाया?
0: वो कुछ नहीं मालिक, मैं दूध वाले की बात कर रहा था सेठ जी, आपको बहुत चूस रहा है। ओ दूध वाले भैया, अरे कहाँ हो रे?
3: कौन है भाया? यहाँ चले आओ।
0: अब मैं उस सेठ जी का चाकर यानी दिनकर।
3: आओ आओ दिनकर भैया बैठो, कछु चाय पानी लोगे का?
0: अरे नहीं भैया, मैं बहुत गुस्से में हूँ। तुम सेठ जी को बहुत चुना लगा रहे हो, एक किलो दूध में एक किलो पानी मिला रहे हो।
3: अरे नहीं भैया, तमाहू को कहू गलत फहमी रहन।
0: गलत फहमी है? अरे बिल्ली हमारी बिल्ली और हम ही से मियाऊ
3: का कहत हो। अच्छा दिनकर भैया एक बात पूछे।
0: हाँ हाँ पूछो भाई पूछो।
3: तुम्हारे कितने बच्चे हैं?
0: एक मोड़ा है प्यारा सा।
3: इस छोटी सी तनख्वाह में भला ऊखो दूध पिला लेते हो के नहीं?
0: हाँ भैया, गरीब आदमी की यही तो एक मुसीबत है।
3: अरे दिनकर भैया काहे की मुसीबत, हम एक बात कहें, जब सेठ जो है ना अकेले ही एक किलो दूध डकार जात है।
0: तो फिर?
3: अरे भैया हम बताते हैं, सेठ के दूध में आज से पाव भर दूध और कटौती, और वो दूध तुहार घर मुन्ना के लाने पहुंच जाएगा कल से।
0: सेठ है तो बड़ा कंजूस, इसको ऐसे ही सबक सिखाना पड़ेगा, उससे ऐसे ही निपटना पड़ेगा। हाँ ठीक है, देखो कल से पावर दूध मेरे घर पहुंच जाना चाहिए। अच्छा मैं चलता हूँ।
3: हाँ चलो चलो, चिंता ना करो, दूध पहुंच जाए तुम्हारे घर।
1: अरे ओ दिनकर, तुझको पैरे पर बिठाए हो तो और दूध में पानी और बढ़ गए हैं?
0: अरे नहीं मालिक, कैसी बातें कर रहे हैं, अपने सामने लगवा कर के लाता हूँ कसम 300 रुपए की। हाँ
1: चुप रहे, कल से तू नहीं जाएगा दूध लेने, कल से ड्राइवर जाएगा। ड्राइवर कल से अपने सामने दूध लगवा कर लाना।
5: हाँ मालिक। अरे वो दूध वाले भैया।
3: का भैया? अरे ड्राइवर साहब आवा आवा।
5: नहीं सुना है तुम दूध में पानी बहुत मिला रहे हो।
3: अरे का कहे तो भैया, आज से तुम्हारे मुन्ना के लाने भी पावर दूध बांध दे का। अच्छा? पावर दूध तो दिनकर भैया के यहाँ पहले ही जा रहा है।
5: अच्छा दिनकर पावर दूध ले रहा है, मगर सेठ जी को खबर नहीं होना चाहिए। मैं चलता हूँ, समझे? आज से पावर दूध मेरे घर भी। अच्छा अब मैं चलता हूँ।
3: पहुंच जाएगा, चिंता नहीं करो।
5: सेठ जी लो, मैंने खूब डांटा दूध वाले को।
1: हाँ
5: मैंने सामने ही लगवा कर लाया हूँ, पियो मजे से पियो।
1: हाँ, अरे वाह मजो आ गया, क्या प्योर दूध है। आज ही अपनी दम्मों को चिट्ठी लिख दे हूँ, दम्मों को कि आ जाओ दम्मो, आ जाओ मेरी दम्मो।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: झलकी के अंतर्गत आप सुन रहे थे पतला दूध, जिसे लिखा था संतोष श्रीवास्तव ने। इसके साथ ही कार्यक्रम झलकी अब समाप्त होता है। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र को 100.7 MHz पर। 5:25 हुए हैं, सुने कार्यक्रम विवरण। 5:30 पर आप सुनेंगे युववाणी, जिसमें आज के बाद का विषय रहेगा नेत्रदान का लें संकल्प, किसी के अंधेरे जीवन का बने विकल्प। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा और सुनेंगे संगीत संध्या। चर्चा में सुनेंगे मोबाइल की लत से दूर होकर अपना करियर बनाएं। आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसाद करेंगे 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी और 8:15 पर छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे साइबर जागृति अभियान पर विशेष कार्यक्रम।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
5: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
6: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagad यानी shrotarayagad@gmail.com।
7: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
6: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुँच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 14.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा फाड़ी।

स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले कि आप इस दुनिया से जाने के बाद भी आपकी वजह से किसी की जिंदगी सवर सके, उनकी जिंदगी में रोशनी आ सके, तो क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो बस इसी हाँ से शुरू होती है आज की हमारी बात, नेत्रदान यानी आई डोनेशन की बात। हम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ दूसरों के साथ शेयर करते हैं, अपनी खुशियां शेयर करते हैं, खाना शेयर करते हैं, अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान अपने जाने के बाद भी किसी के लिए कुछ छोड़ के जा सकता है, खुद से जुड़ा हुआ? जी हाँ, नेत्रदान का संकल्प इसी सोच से जुड़ा हुआ है। इसी संकल्प के साथ और भी कुछ जुड़ा है, और वो है राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा, जो 25 अगस्त से 8 सितंबर 2026 तक पूरे भारत में मनाया जा रहा है। इसका खास उद्देश्य आम लोगों को नेत्रदान के महत्व के प्रति जागरूक करना और कार्निया ब्लाइंडनेस वाले लोगों के जीवन में रोशनी लाने के लिए स्वैच्छिक नेत्रदान के लिए प्रेरित करना। इस दौरान अस्पतालों, चिकित्सा महाविद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा जागरूकता रैलियां, पोस्टर प्रतियोगिताएं, सेमिनार और संकल्प शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही कुछ भ्रांतियां भी दूर की जा रही हैं, जैसे किसी भी उम्र, लिंग, ब्लड ग्रुप या चश्मा लगाने वाले इंसान भी नेत्रदान कर सकते हैं, लेजर सर्जरी कराने वाले रोग भी नेत्रदान के योग्य हैं, मृत्यु के बाद केवल 6 घंटे के भीतर आंखों की कार्निया निकालनी होती है, इससे चेहरे पे कोई बदरंग या विरूपता नहीं आती। ये सारी भ्रांतियां दूर करके जागरूकता फैलाना इस नेत्रदान पखवाड़े का उद्देश्य है। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं कि हमें समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, लेकिन समाज के लिए काम करने के हजारों तरीके हैं। कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, कोई पर्यावरण के लिए, कोई रक्तदान करता है, कोई जरूरतमंदों की मदद करता है। इसी कड़ी में नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाना भी एक नेक पहल है। अगर हमारे जाने के बाद भी हमारी आंखें किसी दूसरे इंसान की जिंदगी में रोशनी ला सकें, तो इससे बड़ा योगदान भला क्या ही हो सकता है। नेत्रदान के बाद आंखों से प्राप्त कार्निया का उपयोग जरूरतमंद लोगों की दृष्टि वापस लाने में किया जा सकता है, यानी एक इंसान का लिया गया संकल्प किसी दूसरे के जीवन में नई उम्मीद बन सकता है। सबसे जरूरी है कि हम किसी अधिकृत नेत्रदान केंद्र या संबंधित स्वास्थ्य संस्था से सही जानकारी लें और अपनी इच्छा के बारे में परिवार को जरूर बताएं। हम युवाओं की भूमिका और भी खास हो जाती है। आज हम सिर्फ खुद जागरूक होने तक सीमित नहीं हैं, हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज को भी जागरूक कर सकते हैं। ये आंखें सिर्फ देखने का जरिया नहीं, किसी की जिंदगी में उम्मीद की किरण बन सकती है। इसलिए नेत्रदान का संकल्प कर किसी के अंधेरे जीवन का विकल्प आप और हम बन सकते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की बात, और आज है महीने का चौथा मंगलवार, जिसमें क्रम रहता है संगीत संध्या का। तो चलिए बढ़ते हैं क्रम की ओर में इस गीत के साथ, जिसे गाया है सुरेश वाडकर और लता ने। इस गीत को लिखा है साहिर ने, संगीत दिया है हृदयनाथ मंगेशकर ने, फिल्म का नाम है धनवान।

दोस्तों, अगले गीत से पहले चलिए करते हैं चर्चा। दोस्तों, अगर आपका मोबाइल आपसे कभी पूछे कि मेरे बिना तुम एक दिन रह सकते हो, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद होगा नहीं। आज मोबाइल हमारी जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुका है। पढ़ाई करनी हो, किसी टॉपिक की जानकारी चाहिए हो, ऑनलाइन फॉर्म भरना हो या कोई स्किल सीखनी हो, मोबाइल हर जगह काम आता है। लेकिन परेशानी तब होती है जब जरूरत खत्म होने के बाद भी हमारा हाथ मोबाइल से नहीं हटता। कभी हम कहते हैं कि बस एक रील देखना है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसा करते करते ना जाने कितना घंटा निकल जाता है। उसके बाद पढ़ने बैठो तो उसमें भी मन नहीं लगता। हर समय स्क्रॉल करना, नोटिफिकेशन चेक करते रहना, बिना काम के टाइम पास करना, यही लक्षण है फोन एडिक्शन यानी मोबाइल की लत का। इन सब वजह से हम अपने करियर पे फोकस ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो समय तो हम मोबाइल देखने में लगा देते हैं। ऐसे में अच्छा करियर भला कहां से बनेगा? दोस्तों, करियर के लिए भी मोबाइल काम आता है, बस उसका सही और जरूरत के हिसाब से उपयोग करना उचित है। और वो हम अपनी स्क्रीन टाइमिंग कम करके, खुद पे नियंत्रण रख के कर सकते हैं। पढ़ाई के समय नोटिफिकेशन बंद रखें, सोशल मीडिया के लिए समय तय करें और मोबाइल का इस्तेमाल नई स्किल्स सीखने, नॉलेज बढ़ाने और करियर अवसर तलाशने में करेंगे, तब जाके एक अच्छा भविष्य हमारा बन पाएगा। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ अपनी एक आदत बदलना ही काफी होता है। तो खुद से सवाल करिए, अपनी आदतों को पहचानिए और शुरुआत आज से ही कीजिए। अपने लिए अगर आप आज नहीं सोचेंगे तो खतरा आपके भविष्य को हो सकता है। खुद पे कंट्रोल रखिए, अपने स्वास्थ्य पे, अपनी आदतों पे ध्यान दीजिए। एक अच्छी आदत ही एक अच्छा करियर बनाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, इसके बाद लीजिए आपको सुनवाते हैं हमारे आज के क्रम संगीत संध्या में फिल्म आवारगी का ये गीत। इसे गाया है गुलाम अली ने, गीतकार हैं असद भोपाली, संगीतकार हैं अनु मलिक।

दोस्तों, इस गीत के बाद आपको सुनवाते हैं सईद कादरी का लिखा फिल्म वो लम्हे का ये गाना। इस गीत को गाया है ग्लेन जॉन ने, संगीतकार हैं प्रीतम।

दोस्तों, इस गीत के बाद लीजिए सुनिए सोनू और अलका के युगल स्वर में फिल्म बॉर्डर का ये गाना। इसके गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं अनु मलिक।

दोस्तों, अब वक्त हो गया है युववाणी कार्यक्रम के समापन का। मुझे अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।

युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी अभी आप सुन रहे थे। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आज ही के दिन वर्ष 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी। भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। यूपीआई भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के सबसे सफल स्तंभों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एक दशक पहले यूपीआई की शुरुआत हुई थी और ये भारत की डिजिटल भुगतान यात्रा में अब तक का सबसे निर्णायक फैसला साबित हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यूपीआई के लेन देन की संख्या में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है।
1: महज 10 वर्षों में यूपीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई की बड़े पैमाने पर तेज और भरोसेमंद सेवा को पूरी दुनिया में सराहा गया है, जिसके कारण आज यूपीआई प्रणाली को 11 देशों ने अपनाया है। इनमें फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस जैसे देश शामिल हैं। आज दुनिया में होने वाले हर 2 रियल टाइम डिजिटल भुगतान लेन देन में से लगभग 1 भारत में होता है। दुनिया भर में होने वाले डिजिटल भुगतान लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशालाओं ने आज नई दिल्ली में 3 स्वदेशी माइक्रो और छोटे गैस टरबाइन इंजन प्रस्तुत किए। इनमें NJ-05, NJ-50 और NJ-100 शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इन इंजनों को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री ज्ञानेश कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, सुलभ और नागरिक केंद्रित बनाना था। पश्चिम बंगाल में 2 बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज ला रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड NCCF और केंद्रीय भंडार के स्टोर में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। 6:05 हुए हैं, सुनिए कार्यक्रम विवरण। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 6:20, 7:00, 8:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाड़ी 7:30 पर, 8:15 पर छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे साइबर जागृति अभियान पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। विविध संगीत 10:00 सुनेंगे, 10:30 पर यादें आपको सुनवाएंगे।
3: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
4: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुँच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
2: श्रोताओं, कल सुबह 6:05 पर चिंतन सुनेंगे, वंदना प्रस्तुत करेंगे 6:10 पर। 6:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम कृषि मंच आप सुन सकेंगे। रामचरितमानस की संगीत में प्रस्तुति सुबह 6:40 पर होगी। देश गान होगा 6:50 पर। हमारे केंद्र से चित्रपट संगीत आप सुनेंगे 7:05 पर। 7:35 पर सुनेगा झरोखा, जिसमें आंखों की रोशनी बचाएं, ग्लूकोमा की जांच कराएं के विषय में चर्चा। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर होगा 7:45 पर। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम लोक रंजनी 8:30 पर सुन सकेंगे। सुगम संगीत 10:10 पर सुनिएगा, आपकी फरमाइश 10:30 पर सुन सकेंगे। कल शाम 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट सुनेंगे। पॉप टाइम का समय रहेगा 5:10 का। युवा लेकर आएंगे 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा करुणा की प्रतिमूर्ति मदर टेरेसा, और सुनेंगे घटना चक्र तरुणों की पसंद। चौपाल का समय रहेगा 7:20 का। कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा कम जमीन पर ज्यादा फायदा के लिए अंतर फसली खेती। नसीहत में सुनेंगे खेती की लागत घटाने में वेस्ट डीकम्पोजर की भूमिका। गैर फिल्म गीत का वक्त रहेगा 8:20 का। फिल्म संगीत 10:00 सुनेंगे, गुलदस्ता आपको सुनवाएंगे 10:30 पर। कार्यक्रमों की रूपरेखा कार्यक्रम विवरण में अभी आप सुन रहे थे। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से। 6:10 होने वाले हैं, कुछ पलों में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।

0: सरायपाली केंद्र है। 6:10 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग ललित साहू के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस के मौका में रायपुर के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव चौधरी समेत 21 जन शिक्षक मल्ला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दी। रायपुर में आज स्नेह की डोर कार्यक्रम के आयोजन करेगी। बहिनी मन जवान मल्ला राखी बांधिन और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बालोद जिला में राखे गए एकठन कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना के 31वां किस्त के राशि ला जारी करीन। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर शिक्षक दिवस

0: के मौका मा नई दिल्ली के विज्ञान भवन मा उच्च शिक्षा संस्थान और पॉलिटेक्निक के 21 जन शिक्षक संकाय सदस्य मल्ला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भेंट करही। एमा रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय मा शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव चौधरी ला घलो शामिल करे गए हे। मुख्यमंत्री विष्णु देसाय हा प्रोफेसर डॉक्टर राजीव चौधरी के चयन मा ओमन ला बधाई और शुभकामना दे हे। राखी तिहार के पहले रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आज स्नेह की डोर कार्यक्रम के आयोजन करेगी। कार्यक्रम में केंद्रीय सुरक्षा बल सेना और पुलिस जवान मन के हाथ में स्कूल में पढ़िया नोनी दिव्यांग नोनी और महिला स्व सहायता समूह के बहनी मन हा राखी बांधिन। ये कार्यक्रम में विष्णुदेव साय हा घलो शामिल होइन। ए मौका में बछर 2017 में राखी तिहार के एक दिन पहले माओवादी घटना में शहीद होए उप निरीक्षक युगल किशोर वर्मा के गोसाइन माधुरी वर्मा हा घलो मुख्यमंत्री ला राखी बांधिन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शाह कहिन कि ये डोरी हा सिर्फ भाई बहनी के माया के बंधना नहीं रह रहे भलुक यहा शहीद परिवार के विश्वास और माया के चिन्ह हरय। ए दौरान मुख्यमंत्री हा रायपुर जिला प्रशासन और आने आने विभाग डहर ले तैयार करेगे 5 अभिनव प्रोजेक्ट हरित पोषण प्रोजेक्ट निरामय तिरंगा शक्ति फेस्ट प्रोजेक्ट अही गुंडिक और रायपुर अनफील्ड के शुरुआत करीन। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौका में 27 अगस्त के देश भर में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के संग कार्यक्रम रखे जाही। ए दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा वर्चुअल माध्यम ले देश भर के अलग अलग जगह मन मा मौजूद 8 लाख ले ज्यादा युवा मन ले संवाद करही। ए कार्यक्रम ला हरेक जिला के 2 ठन प्रमुख महाविद्यालय मन मा रखे जाही। ए कार्यक्रम हा युवा कनेक्ट के माध्यम ले स्थानीय स्तर मा युवा मन संग गोट बात करे मा केंद्रित थे। एकर अलावा युवा प्रतिभागी मन ला स्थानीय खेल के माध्यम ले सांसद विधायक और जनप्रति मन के संग सोझे गोट बात करे के मौका मिली। कार्यक्रम के दौरान 15 मिनट के 1 ठन युवा संवाद सत्र घलो रखे जाही। ऐसो ए कार्यक्रम ला युवा भागीदारी खेल विकास और राष्ट्र निर्माण के थीम ऊपर रखे जाही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हा आज बालोद जिला के डौंडी लोहारा में राखे गए 1 ठन कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना के 31वां किस्त के राशि ला जारी करी। ओमन माइलोगिन मन के खाता में 631 करोड़ ले ज्यादा के राशि ला ट्रांसफर करे गए है। ए मौका में मुख्यमंत्री हकीन कि राखी तिहार के पहली बहनी मन के जिंदगी में खुशहाली पहुंचाए के मौका मिले है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करे बर राज्य सरकार डहर ले बनाए गए उच्च स्तरीय समिति के मौजूदगी में परम दिन 27 अगस्त के राजधानी रायपुर में बैठक रखे जाहे। खबर के मुताबिक विषय ऊपर बने विचार विमर्श करे खातिर अलग अलग क्षेत्र के करीबन 200 मनखे मल्ला आमंत्रित करे गए है। एमा आयोग निगम मंडल सामाजिक संगठन समाज के मुखिया विकास प्राधिकरण के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मल्ला घलो बुलाए गए है। ए दौरान समान नागरिक संहिता के प्रावधान सामाजिक प्रभाव और कैठिन पहलू ऊपर गोठ बात करे जाहे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन ला आप मन हा आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बांचे समाचार कुती। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI हा डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लावत आज 10 बसर पूरा कर ले है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा सोशल मीडिया पोस्ट में कहिन कि राष्ट्र के ए डिजिटल क्रांति में हम जम्मो झन भारतवासी मल्ला गर्व करना चाहिए। ओमन कहिन कि UPI प्रणाली के शुरुआत हा भारत के डिजिटल भुगतान हा देश के सबले बड़े फैसला रहिन है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल हा एसओ हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी द्वितीय मुख्य परीक्षा में शामिल विद्यार्थी मल्ला स्कूल में दाखिला दे मा सहूलियत दे है। मंडल डहाल ले जारी आदेश के मुताबिक हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में पास और फेल होए विद्यार्थी मन तय करे गए पात्रता के आधार में 27 अगस्त तक स्कूल मन में दाखिला दे जाही। मंडल है जम्मू मान्यता प्राप्त स्कूल के प्राचार्य मल्ला निर्देश दे है कि दाखिला के पहली विद्यार्थी मन के पात्रता के जांच जरूर करे। राज्य में कक्षा 6वीं ले 12वीं तक के पढ़िया लिखा मल्ला प्रदेश के कला संस्कृति इतिहास और लोक परंपरा मन के जानकारी दिवाए खातिर विशेष पाठ्य तैयार करे जाते। खबर के मुताबिक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद डहाल ले राजधानी रायपुर में 24 ले 26 अगस्त तक 3 दिन के कार्यशाला रखे गए है। एमा साहित्यकार संस्कृति के जानकार शोधकर्ता और विशेषज्ञ मन शामिल होके छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति ऊपर आधारित एक ठन कार्य योजना तैयार करे जाते। खेल और युवा कल्याण विभाग डहर ले अवैया अक्टूबर महीना में रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के पहली सीजन के आयोजन करे जाही। उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साह आज रायपुर में पत्रकार मन ले गोड बात करत बतेन कि लीग में राज्य के आने आने क्षेत्र के 6 टीम भाग ली। एमा राजधानी रॉयल्स, चित्रकूट चैलेंजर्स, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स, चक्रधर चैंपियन, न्यायधानी नाइट्स और मैनपार टाइटन्स शामिल है। ओमन बतेन कि यह देश के कोनो भी राज्य में होवैया पहली राज्य स्तरीय हॉकी लीग है जेला हॉकी इंडिया लीग के तर्ज में खेले जाहे। श्री साह बतें कि हॉकी लीग के लोगो छत्तीसगढ़ के मानचित्र में आधारित है। उन्हें लीग के टैग लाइन चलाओ रे संगी हॉकी खेलबो रखे गए है। लीग के अधिकारी शुभंकर बघवा हवाय और जौनहा छत्तीसगढ़ के समृद्ध वन्य जीवन विरासत के प्रतीक है। हॉकी लीग के मुकाबला दर्शक मन पर निःशुल्क रखे गए है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो रायपुर डहाले राजनांदगांव के सरकारी दिग्विजय स्वशासी महाविद्यालय में नशा मुक्त युवा फार विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत फोटो प्रदर्शनी और जन जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन करेगी। महाविद्यालय के प्राचार्य सुचित्रा गुप्ता कार्यक्रम के उद्घाटन करीन। ए मौका में उमन विद्यार्थी मल्ला नशा ले दूरिया रहे के शपथ दिवाइन है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग डहर ले 111 उप अभियंता मन के नियुक्ति आदेश जारी करे गए है। एमा 101 जन सिविल और 10 जन विद्युत यांत्रिक अभियंता शामिल है। नियुक्ति के संगे संग चुने गए जम्मो जन अभियंता मल्ला पदभार सौंप दिए गए है। चुने गए अभ्यर्थी मल्ला नियुक्ति आदेश जारी होए के 15 दिन के भीतर कार्यालय में पदभार संभाले के निर्देश दे गए है। उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साहो कहिन कि बड़ संख्या में युवा इंजीनियर मन के नियुक्ति होले विभाग के काम में तेजी आई। और अब थोरकुन समाचार सार मा। केंद्र सरकार है गेहूं के आटा उखर ले जुड़े उत्पाद में लगे निर्यात प्रतिबंध हटा दे है जेखर ले आटा मैदा सूजी और आने आने गेहूं आधारित उत्पाद के विदेशी निर्यात के रास्ता खुल गए है। जांजगीर चांपा जिला के बोड़सरा गांव में करेंट के चपेट में आए ले 3 साल के एक झीन नोनी के मौत हो गए। और राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में एक ठीन गाड़ी ले करीबन 5 क्विंटल गांजा बरामद करे गए है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव और रणजी खिलाड़ी राजेश दबेला अवैया महिला T20 एशिया कप 2026 बर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मैनेजर बनाए गए है। भारतीय क्रिकेट टीम कंट्रोल बोर्ड ले श्री दबेला जिम्मेवारी सौंपे गए है। और अब एक घाव फिर प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस के मौका में रायपुर के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव चौधरी समेत 21 जन शिक्षक मल्ला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिए। रायपुर में आज स्नेह की डोर कार्यक्रम के आयोजन करेगी। बहिनी मनहा जवान मल्ला राखी बांधीन। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बालोद जिला में रखे गए एक ठन कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना के 31वां किस्त के राशि ला जारी करीन। एकर संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
2: संप्रति वार्ता
3: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 107.7 MHz पर। 6:20 हुए हैं। डीजे अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। आनंद बख्श के लिखे गीत को आइए सुनते हैं। कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में फिल्म नाम का ये प्यारा सा नगमा जिसमें धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: हाँ, ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
4: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
3: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
5: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: बेखुदी फिल्म के गाने में आप सुन रहे थे कुमार सानू आशा भोसले को, संगीत था नदीम श्रवण का, अनवर सागर ने गीत लिखा था। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक के गायश नगमे को फिल्म सलामी से। संगीतकार हैं नदीम श्रवण, शब्द रचना सुरेंद्र साथी के हैं।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।

अनवर सागर के लिखे गीत को आप सुन रहे थे। फिल्म गुंडागर्दी के इस गाने में जिसे गाया था कुमार सानू, साधना सरगम और साथियों की आवाजों में, संगीत था जतिन ललित का। इसके साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:45 होने वाले हैं। कुछ पलों में प्रादेशिक समाचार रिले करेंगे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मेरा नाम मुनिया भाई राठिया है, मैं ग्राम केरा कछार से हूं। 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से 93,000 का वित्तीय राशि मिला खरीफ फसल में, कि फसल बीमा जरूर कराएं ताकि फसल में जो नुकसान होता है उसके लिए सहायता मिल सके। फसल बीमा कराना बहुत जरूरी है।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे

0: एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
0: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
4: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
3: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
4: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
3: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
4: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
7: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आज डोंडीलोहारा में आयोजित समारोह में महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त की राशि जारी की। रायपुर में आयोजित स्नेह की डोर कार्यक्रम में महिलाओं ने मुख्यमंत्री सहित सुरक्षा बल के जवानों को बांधे रक्षा सूत्र। शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उच्च शिक्षा संस्थानों के 21 सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें रायपुर के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव चौधरी भी शामिल हैं। और कल ईद मिलादुन्नबी का पर्व प्रदेश में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बालोद जिले के डोंडीलोहारा में आयोजित बिहान दीदी और स्व सहायता समूह सम्मान समारोह में महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त की राशि जारी की। उन्होंने महिलाओं के खाते में 631 करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन पर्व से पहले बहनों के जीवन में खुशहाली की एक और सौगात पहुंचाने का सौभाग्य मिला है।
8: हमारे प्रदेश की बहनों का रक्षाबंधन का त्यौहार ठीक से मन जाए, इसके लिए सितंबर महीने का महतारी बंधन का पैसा अगस्त में एडवांस में आज जारी किए हैं। कुल 68 लाख बहनों के खाता में 631 करोड़ से ज्यादा की राशि आज अंतरित हुई है। तो मैं छत्तीसगढ़ की समस्त बहनों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। रक्षाबंधन की भी उनको बधाई है।
7: रक्षाबंधन पर्व से पहले रायपुर स्थित बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आज स्नेह की डोर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस जवानों की कलाइयों पर स्कूली छात्राओं, दिव्यांग बालिकाओं और महिला स्व सहायता समूहों की दीदियों ने रक्षा सूत्र बांधे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। इस अवसर पर वर्ष 2017 में रक्षाबंधन से एक दिन पहले माओवादी घटना में शहीद हुए उप निरीक्षक युगल किशोर वर्मा की पत्नी माधुरी वर्मा ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राखी का ये धागा केवल भाई बहन के स्नेह का बंधन नहीं बल्कि एक शहीद परिवार के विश्वास और अपनत्व का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिवार के सम्मान, स्वाभिमान तथा सुख दुख में उनके साथ खड़े रहने का ये रिश्ता अटूट रहेगा।
9: स्नेह की डोर कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी, जिनके अदम्य साहस के कारण आज हमारा छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरा देश नक्सल मुक्त हुआ है, जो रक्षाबंधन जैसे त्योहार में भी अपनी बहन के समक्ष रह नहीं पाते हैं, और आज उनको हमारी बहनें, जो हमारी दिव्यांग बेटियां हैं, लखपति दीदियां हैं, बिहान की दीदियां हैं, उनकी कलाई में राखी बांधी है और हमारे जवानों ने उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया है।
7: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रायपुर जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों द्वारा तैयार 5 अभिनव प्रोजेक्ट्स, हरित पोषण प्रोजेक्ट निरामय, तिरंगा शक्ति फेस्ट प्रोजेक्ट अही गुंडिक और रायपुर अनफिल्टर्ड का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव चौधरी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रोफेसर डॉक्टर राजीव चौधरी का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देशभर से चयनित 31 उत्कृष्ट शिक्षकों में स्थान बनाकर डॉक्टर चौधरी ने प्रदेश को गौरवान्वित किया है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बदलाव लाते हुए आज 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र की इस डिजिटल क्रांति पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपीआई प्रणाली का शुरू होना भारत के डिजिटल भुगतान इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक क्षण रहा है। उन्होंने देशवासियों से यूपीआई के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 27 अगस्त को देशभर में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से देशभर के अलग अलग स्थानों पर मौजूद 8 लाख से अधिक युवाओं से संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम देश के प्रत्येक जिले के 2 प्रमुख महाविद्यालयों में आयोजित किया जाएगा। ये कार्यक्रम युवा कनेक्ट के माध्यम से स्थानीय स्तर पर युवाओं से संवाद करने पर केंद्रित है। इसके तहत युवा प्रतिभागियों को स्थानीय खेल हस्तियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद करने का अवसर मिलेगा। इसके माध्यम से पिछले 12 वर्षों में भारत के खेल इकोसिस्टम के विस्तार और जमीनी स्तर के खेल अधोसंरचना में आए सकारात्मक बदलावों को रेखांकित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान 15 मिनट का एक समर्पित युवा संवाद सत्र भी होगा, जिसके माध्यम से युवा अपने विचार, आकांक्षाएं और नीतिगत सुझाव व्यक्त कर सकेंगे। इस वर्ष ये समारोह युवा भागीदारी, खेल विकास और राष्ट्र निर्माण की थीम के तहत आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं, खेल हस्तियों और भावी कर्णधारों को एक राष्ट्रीय मंच पर जोड़ना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। कल ईद मिलादुन्नबी का पर्व प्रदेश में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिवस के अवसर पर रायपुर में जुलूस निकाला जाएगा, साथ ही अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मिर्जा एजाज बेग और अन्य प्रतिनिधियों ने आज मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ईद मिलादुन्नबी की बधाई देते हुए कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद ने जो आपसी भाईचारा और मोहब्बत का संदेश दिया है, उसे आत्मसात करने की आवश्यकता है। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा आगामी अक्टूबर महीने में रायपुर के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में छत्तीसगढ़ हॉकी लीग के पहले सीजन का आयोजन किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव ने आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इस लीग में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की 6 टीमें भाग लेंगी। इनमें राजधानी रॉयल्स, चित्रकूट चैलेंजर्स, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स, चक्रधर चैंपियंस, न्यायधानी नाइट्स और मैनपाट टाइटन्स शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यह देश के किसी भी राज्य में आयोजित होने वाली पहली राज्य स्तरीय हॉकी लीग है, जिसे हॉकी इंडिया लीग की तर्ज पर संचालित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को निर्धारित पात्रता के आधार पर 27 अगस्त तक स्कूलों में प्रवेश दिया जा सकेगा। मंडल ने सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देश दिया है कि प्रवेश देने से पहले विद्यार्थियों की पात्रता की जांच जरूर करें। गौरतलब है कि द्वितीय मुख्य परीक्षा का परिणाम 13 अगस्त को जारी किया गया था। स्कूलों को प्रवेशित विद्यार्थियों की जानकारी 31 अगस्त अगस्त तक ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करनी होगी। आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से चलाए जा रहे साइबर जागृति अभियान पर आज विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण आज रात 8:15 से 8:30 तक होगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव और रणजी खिलाड़ी राजेश दवे को आगामी महिला T20 एशिया कप 2026 के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मैनेजर नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिलासपुर में साइबर ठगों ने एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक को डिजिटल अरेस्ट कर करीब 35 लाख रुपए ठगने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तत्परता से वारदात नाकाम हो गई। ठग ने खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर बुजुर्ग को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी और उन्हें डिजिटल अरेस्ट कर लिया। इसके बाद अलग अलग बैंक खातों में जमा रकम को एक खाते में ट्रांसफर कराने के बाद करीब 35 लाख रुपए निकालने की तैयारी थी। बुजुर्ग के मित्र ने मामले की जानकारी एसएसपी रजनेश सिंह को दी। उनके निर्देश पर सरकंडा टीआई प्रदीप आर्य टीम के साथ मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग को ठगी का शिकार होने से बचा लिया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने आज नवा रायपुर अटल नगर में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल की करीब 120 करोड़ रूपये की आवासीय परियोजना का भूमि पूजन किया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 111 उप अभियंताओं की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इनमें 101 सिविल और 10 विद्युत तथा यांत्रिक अभियंता शामिल हैं। और जांजगीर चांपा जिले के बोरसरा गांव में करंट की चपेट में आने से 3 वर्ष की एक बच्ची की मौत हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने आज डौंडी लोहारा में आयोजित समारोह में महतारी वंदन योजना की 31वीं किश्त की राशि जारी की। रायपुर में आयोजित स्नेह की डोर कार्यक्रम में महिलाओं ने मुख्यमंत्री सहित सुरक्षा बल के जवानों को बांधे रक्षा सूत्र। शिक्षक दिवस पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उच्च शिक्षा संस्थानों के 21 सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इनमें रायपुर के प्रोफेसर डॉ राजीव चौधरी भी शामिल हैं। और कल ईद मिलादुन्नबी का पर्व प्रदेश में आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
10: FM 100.7 MHz पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 7 बजे हैं, अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण ललका याग्निक की आवाजों में छोटे सरकार फिल्म के इस गाने को, जिसे लिखा है रानी मलिक ने, संगीत से सजाया है आनंद मिलिंद ने।

श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती।
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन।
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।
6: संदेश से पहले आप सुन रहे थे उमर बचपन की दिल बचपन का। फिल्म का ये प्यारा सा गाना आवाजे कुमार सानू अलका याग्निक दिलीप सेन समीर सेन की थी। योगेश के बोल थे संगीत दिलीप सेन समीर सेन का था। कार्यक्रम में आप सुनिए अलका याग्निक कुमार सानू को हम हो गए आपके। फिल्म के गाने में गीतकार हैं समीर, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

रॉन्ग नंबर फिल्म के इस गाने को आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू की आवाजों में, दब्बू मलिक ने धुन बनाई थी, प्रवीण भारद्वाज की रचना थी। कार्यक्रम में सुनिए समीर के लिखे बोल को फिल्म दोस्ती के इस गाने में, आवाजें सोनू निगम, अलका याग्निक की, संगीत है नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम अलका याग्निक की युगल आवाजों में फिल्म दोस्ती का ये प्यारा सा नगमा। बोल थे समीर के, संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त तो होता है। हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 7:30 होने वाले हैं। कुछ पल में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।

0: मल मल के लुगरा झांझर मुड़ ढाके चंदा मल मल के लुगरा झांझर
1: संगवारियों अभी सुनेंगे सुगर सुगर गीत जिला गाय रहीन प्रकाश देवांगन और संगवारी मन कार्यक्रम सुनैया जम्मू संगवारी मल्ला मोनिका
2: और लक्ष्मीकांत के
1: राम राम, राम। बेरा है किसान वाणी के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

0: ये कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव मा डॉक्टर साहब आप मन के स्वागत है मरकरम मा
1: जी। नमस्कार किसान भाइयों। नमस्कार मैडम।
0: हेलो हेलो किसान वाणी।
2: हाँ हेलो किसान वाणी
0: जी भैया। राम राम। कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
2: मैं खिलेश कुमार साहू रानीगांव नगरी बोला था।
0: खिलेश भैया, जैसे कि आज हमार विषय है कि अगेती गोभी वर्गीय जन सब्जी होते, एकर खेती करके हम ज्यादा आमदनी कैसे कमा सकथन, तो एकले जुड़े का जानकारी चाहिए आप लोग?
2: अगेती खेती जैसे गोभी जो हमला अगेती खेती करना है तो ओकर नर्सरी कब डालना पड़ी, ओकर तैयारी कैसे करना पड़ी, जैसे कि अभी बरसात है, पानी वाली गिरे से चला से गिरते थे तो ओकर मौसम कब होगी
0: जी, तो ये सारी जानकारी आप ला आज हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन झा जी है बतावत है।
1: नमस्कार किसान भाई, जैसा कि आपने पूछा कि गोभी वर्गीय सब्जी जो है अगेती गोभी वर्गीय सब्जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी अगेती गोभी वर्गीय सब्जी जो होती है इसे आप जुलाई अगस्त में इसकी नर्सरी डालते हैं। तो आपने पूछा कि इतना पानी आ रहा है इसमें आप किसको कैसे डालेंगे, तो इसके लिए कुछ तकनीक होती है, वैज्ञानिक तकनीक, जिसमें आपको जमीन से लगभग 10 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर ऊंची बेड बनानी पड़ती है, जिसे कि ऊंची क्यारी पद्धति बोला जाता है। और इसमें आपको बीजों को लगाना रहता है, बीजों को लाइन से लगाना पड़ता है, आपको लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे लाइन से बीज को लगाते हैं इसमें। और लगाने के पश्चात इसको आपको ऊपर से, जैसे आपका जो बांस आती है उसको 1-1 मीटर की दूरी पर ऐसा आपका टनल, जैसे टनल होता है, नाली होती है, ऊपर से ऐसा लगाना है आपको मोड़ के, और मोड़ने के पश्चात उसमें 40 से 50 मैश की आपकी कीट प्रतिरोधी जो है आपका जाली आती है, नायलोन की जाली पतली मच्छरदानी जैसे रहती है उस टाइप की जाली आती है, उसको यदि आप लगा देते हैं ऊपर से, इसको कवर कर देते हैं, तो एक ऐसा टनल जैसा सुरंग जैसी बन जाती है वो जो आपकी नर्सरी होती है, तो वो हर प्रकार के कीड़े बीमारियों को बचाती है। तो इस प्रकार से आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और यदि पानी आने की समस्या लग रहा है कि पानी आने वाला है, तो उसके ऊपर से आप जो है प्लास्टिक की एक पॉलीथीन को रखते हैं और उसके ऊपर लगा दिया जाता है जब पानी आने की संभावना लगती है, ताकि ज्यादा पानी से भी आपकी क्यारी होती है वो गले ना, नर्सरी जो है वो खराब ना हो।
0: जी भैया धन्यवाद भैया। हेलो हेलो किसान वाणी।
3: हेलो किसान वाणी। राम राम मोनिका दीदी।
0: राम राम भैया। कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
3: जी मैं है ग्राम जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आपके नियमित श्रोता सुरित्रा में साहू बोला था बहिनी।
0: जी भैया। भैया आज ना हमारे हेलो किसान वाणी के विषय है कि अगेती गोभी वर्गीय जिन सब्जी होते, तो एकर खेती करके हम ज्यादा ले ज्यादा आमदनी कैसे ले सकते, तो ये विषय ले जुड़े आप मल्ला का जानकारी चाहिए?
3: अब हमला जानकारी ऐसे चाहिए रही इस बहिनी की, हम हाँ 1 एकड़ गोभी नवल गोल और कहा जाए कद्दू और रखिया लौकी ये मतलब लगा है, साथ शिमला मिर्च घलो में 1 एकड़ में लगभग ट्राई करे हूँ
0: जी।
3: वो तो जो विशेषज्ञ मन बताई तब ने की इसमें के बीज ला डाले हूँ, डाले के ला फूल वूल आए के आलू हो गए है बे, पर कुछ फूल मन झरत घलो है बहनी।
0: अच्छा, तो ये जन आप मन की समस्या है ना, एक समाधान हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन झा जी बतावत है।
1: किसान भाई सबसे पहले नमस्कार। किसान भाई आप ये बताएं कि किस वाली फसल में जो है आपका फूल झड़ रहा है?
3: जी जी जी, कद्दू का जो है ना कुम्हड़ा कहा जाए जिसको, कुम्हड़ा बोलते हैं छत्तीसगढ़ में
1: जी।
3: तो सर्वप्रथम तो आपको मेरा सादर अभिवादन, सादर नमस्कार विशेषज्ञ महोदय।
1: जी जी नमस्कार। हाँ जी, कद्दू में जैसे आपने बताया कि इसमें जो होता है आपका, एक होता है नर और मादा पुष्प होते हैं, तो इसमें यदि आपका जो पुष्प गिरता है शुरू में वो नर पुष्प होते हैं जो सूख के गिर जाते हैं, है ना, तो इसमें और पॉलिनेशन जो बोलते हैं परागण की क्रिया कीड़ों के द्वारा होती है, जो कीड़े होते हैं उनके द्वारा होती है, तो यदि जिसमें परागण नहीं हो पाता तो कई बार इसमें ऐसा होता है कि कद्दू के जो नर पौधे होते हैं उनको तोड़ के आपको मादा पौधे में इसमें थोड़ा सा ऐसा हल्का सा लगाना पड़ता है ताकि उसमें परागण हो जाए, कई बार परागण नहीं हो पाता मौसम के कारण, तो इसलिए फूल जो है झड़ने लग जाते हैं, तो इसमें आप इस प्रकार से करके देखें तो आपके जो फूल झड़ने की समस्या है वो नहीं होगी।
3: जी जी जी। और गोभी का जो है पत्ते सूख रहे हैं
1: अभी, गोभी किस अवस्था में है आपकी?
3: गोभी अभी जो है फूलने लगा है, अभी छोटे अवस्था है फिर भी फूल उसमें आने लग गए हैं,
1: तो उसमें किसी प्रकार के कीड़े या बीमारी दिखाई दे रही है आपको कि कोई छोटे कीड़े दिखाई दे रहे हो, जो आपका डायमंड बैक मॉथ बोला जाता है जो सबसे ज्यादा गोभी वर्गी सब्जियों में आता है फूल गोभी में, तो वो दिखाई दे रहा है या कुछ?
3: एकदम सूक्ष्म कीड़े तो नहीं दिखाई दे रही है, पर वो कुछ काला काला सा मैनी जो नहीं कहते
1: हैं जी जी जी जी जी
3: उसी टाइप का दिखाई पड़ रहा है।
1: जी जी, इसमें आप जो है 10,000 ppm की जो आपकी नीम ऑयल आता है उसका 4 ml 1 लीटर पानी में सॉल्यूशन बना के उसका आप स्प्रे करें और लगभग 10 से 12 दिन में इसको लगातार आप स्प्रे कर सकते हैं, जैविक होने के कारण किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा ये, तो आप इस प्रकार करेंगे तो ये जो आपका मैनी कीट बोल रहे हैं उसका नियंत्रण जो है आसानी से हो जाएगा।
3: जी सर। जी सर धन्यवाद सर जी, आपने मुझे बहुत बढ़िया जानकारी दिए और साथ ही साथ आप ही लोग तो है हमारे सलाहकार और हम लोगों को अधिक अधिक उत्पादन के जरिया बताते रहते हैं आदरणीय।
0: धन्यवाद भैया।
3: धन्यवाद मोनिका दीदी, आप बहुत बढ़िया बात करवाए हमारे विशेषज्ञ महोदय जी से, हम आपके हृदय से आभारी हैं, संगे संग हमारे किसान वाणी के लिए भी आभारी हैं, संगे संग आकाशवाणी आकाशवाणी रायपुर के घरों आभारी हैं बहिनी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: भैया। हेलो हेलो किसान वाणी।
1: हाँ हेलो किसान वर्णी।
0: हाँ भैया, राम राम।
1: हाँ राम राम दीदी, राम राम।
0: आप मन कौन बोले थे, कहाँ ले बोले थे भैया?
1: मैं ग्राम की दितली विकास खंड सहसपुर लोहरा जिला कबीर धाम से धर्म सिंह साहू बोलत हूँ दीदी।
0: जी भैया जी। तो जैसे भैया, आज हमारा विषय है कि अगेती गोभी वर्गीय सब्जी के जिन खेती करते हैं तो वो ज्यादा आमदनी के आधार हवा है, तो एकले जुड़े का जानकारी चाहिए आपला।
1: अगेती गोभी की खेती करें जिससे से हमें ज्यादा आमदनी चाहिए, इसे जानकारी चाहिए दीदी की। जिसे अगेती गोभी वर्गी में अपन खेती तो करथन, लेकिन सबसे पहली का है जिसे हम वेरायटी नहीं जान पान। जिसे कभी कभी दुकानदार जिन भी वेरायटी के धरा थे धर की हम आके हरा डाल देते हैं ना, वो लगा देते हैं, तो हम लोग सही उत्पादन नहीं मिला। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि अभी अगेती वर्गी गोभी के कौन सा थरा डालन जिसमें हम लोग अच्छा लाभ मिला है।
0: जी, तो आप मान लो ये जानकारी हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन झा जी बताएंगे।
2: नमस्कार किसान भाई, जैसा आपने पूछा उन्नत किस्म के बारे में, तो यदि आप फूल गोभी की तैयारी कर रहे हैं लगाने की, तो उसमें आपकी जो अर्ली किस्म होती है जो जल्दी फसल देती है आपकी, वो पूसा मेघना करके एक वैरायटी है, पूसा अश्वनी है, आपका अर्ली काशी कुमारी करके होती है, पूसा कार्तिकी या आयरिस हाइब्रिड F1 है, आपका अर्ली एक्सप्रेस है, ये सभी वैरायटी है जो अगेती है और फूल गोभी की उन्नत किस्म है जिसको आप लगा सकते हैं। और यदि हम पत्ता गोभी में जाना चाहें तो पूसा अगेती करके इसमें एक किस्म होती है, पूसा संबंध जो प्राइड ऑफ इंडिया, ये तीन चार वैरायटियां हैं जो काफी प्रसिद्ध भी हैं, किसानों के बीच में फेमस है और काफी अच्छा उत्पादन देती है।
1: तो मतलब ये जानकारी की है कि जिस ना थरहा कभी कभी डालता हूँ तो थरहा ढंग से नहीं उगा है।
2: जी जी जी,
1: तो ओकर लिए जिसे अपन ट्रेक में डाल सकते हैं का थरहा।
2: हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए आपको यदि जैसे अभी बारिश का मौसम है और ये बारिश में आपको थरहा तैयार करना है जो बहुत बड़ा टास्क होता है, तो इसके लिए आप यदि प्रो ट्रे में तैयार करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रो ट्रे में बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपको उसे मिश्रण तैयार करना होगा, आपका वर्मी कम्पोस्ट, थोड़ा सा आपकी जो काली मिट्टी होती है बहुत थोड़ी मात्रा में, और आपका रेत और वर्मी कम्पोस्ट, ये तीनों को मिला के आपको एक मिक्सचर तैयार करना है, और उसको फिर आपको प्रो ट्रे में भर के उसमें एक एक जो प्रो ट्रे के जो खंड होते हैं उसमें आपको एक एक बीज को लगाना होता है, और इस प्रकार से आप अपनी नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। इससे एक स्वस्थ नर्सरी तैयार होती है जो आसानी से मतलब खेत में ट्रांसप्लांट की जा सकती है।
1: तो जैसे नर्सरी तैयार करना है तो कल ये नेट लगाना पड़े कि ऐसी मतलब अपन घर के अंदर?
2: नहीं, जैसे आप प्रो ट्रे में तैयार कर रहे हैं तो यदि आपके पास ग्रीन शेड नेट है या जो आपकी ऐसी जगह है जहाँ पे की पानी का सीधा प्रभाव उसमें ना पड़े उस जगह पे रख सकते हैं, और यदि आपके पास प्रो ट्रे की समस्या है नहीं ले सकते हैं आप, तो आप सीधा जमीन में जो है ऊंची बेड ऊंची क्यारी तैयार करिए जो लगभग 15 सेंटीमीटर 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची हो, और उसमें सीड को लाइन से डालेंगे आप, बारीक सीड होता है तो उसमें थोड़ा रेत मिला लें, रेत मिला के फिर उसको जैसे हम रंगोली डालते हैं उंगलियों से ऐसे लेके, तो वैसा आप उसको लाइन ऐसा हल्की सी गहरी नाली बनाएंगे 1 सेंटीमीटर गहरी छोटी सी लकड़ी से, और उसमें उसको बीजों को डालेंगे छोटे बीज होने के कारण, और उसको वर्मी कम्पोस्ट से ढक दिया जाता है, और उसके ऊपर बांस की पतली पतली खपच्चियां काट के ऐसा आपका सुरंग जैसा उस बेड के ऊपर में बनाया जाता है 1-1 मीटर की दूरी, और उसके ऊपर आपकी 40 से 50 मैश वाली जो नायलोन की जालियां आती हैं, जो बोलना चाहिए आपकी जो जैसे मच्छरदानी होती है वैसी एक कीटरोधी जाली आती है आपकी, उसको आपको लगाना होता है जिससे कि आपके जो भी कीड़े बीमारी है वो बच जाते हैं, और यदि पानी की ज्यादा आशंका नजर आ रही है तो आप उसके ऊपर पॉलीथीन प्लास्टिक की पॉलीथीन की तैयारी रखें, जैसे ही आशंका लगे कि पानी गिरने वाला है तो उसके ऊपर से इसको कवर कर देना होता है। तो इस प्रकार से एक स्वस्थ नर्सरी आपकी तैयार होती है।
1: ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए।
2: जी जी धन्यवाद।
0: धन्यवाद भैया। डॉक्टर साहब हमारे संगवारी मन मान लिया इतना सुघर सुघर जानकारी लेवा थे, और हमारे संगवारी मन के फोन आवा थे तो पूछता नौकर मन की का जिज्ञासा है।
2: जी जी।
0: हेलो हेलो किसान वाणी।
3: हेलो किसान वाणी।
0: हाँ भैया, राम राम। कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
3: जय जवाहर बोला था, सहरसा बिहार अमेठी रायपुर ले।
0: जी जी जी मोहन भैया, आज हमारे हेलो किसान वाणी की विषय है कि अगेती गोभी वर्गीय जिन सब्जी होते है एकर खेती ज्यादा आमदनी के आधार है, तो एकले जुड़े का जानकारी चाहिए आपला।
3: मौसम के हिसाब से जैसे कि कौन कौन से साग सब्जी लगाना चाहिए, कौन से भाजी लगाना चाहिए, खाद डालना चाहिए, इसके बारे में पूछना चाह रहे हैं।
0: जी जी जी भैया, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन झा जी आप मतलब ये विषय में जानकारी देवा थे।
2: नमस्कार किसान भाई, जैसा आप अभी बता रहे हैं कि कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं, तो अभी जो मौसम चल रहा है यदि उसमें आप ज्यादा बोलना चाहिए आय का साधन यदि अपने आप उसमें रखना चाह रहे हैं तो आप एक गोभी वर्गीय सब्जी बहुत अच्छी ऑप्शन होता है, जो इस समय जो बेस्ट टाइम है आपका नर्सरी डालने का, जुलाई अगस्त जो होता है इसमें नर्सरी डाली जाती है, जिससे कि हमको सितंबर अक्टूबर में मार्केट में सबसे पहली जो गोभी होती है वो हमारे किसान भाइयों की आती है जो इस प्रकार से अगेती गोभी लगाते हैं, तो उसका जो रेट होता है वो बहुत कीमत बहुत अच्छी मिलती है उनको और ज्यादा फायदा देती है ये फसल जो होती है। तो यदि इस समय आप फूल गोभी पत्ता गोभी इसे लगाते हैं तो इसका मार्केट प्राइस प्राइस जो है काफी अच्छा मिलता है आपको इस समय नर्सरी डालते हैं तो इसका एक अच्छा समय है, आप इसको अभी लगा सकते हैं।
3: अच्छा अच्छा, और माटी उठी क्या होगा, मात्रा दवाई वाई के कहाँ डालना है?
2: इसमें जो नर्सरी तैयार करेंगे, नर्सरी को आप जब लगाएंगे मुख्य खेत में, रोपाई करेंगे तो रोपाई करते समय आपको लगभग 90 सेंटीमीटर मतलब कि आपका 2 फीट की दूरी पे आपको ऐसा मांदा तैयार करना है, जो लगभग ऊंचा मांदा तैयार करना है। और उस मांदा में यदि आप मल्चिंग आती है, मल्चिंग बिछा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, मल्चिंग यदि नहीं बिछा रहे हैं तो आपको जो ढलान होती है उसमें आपको गोभी का नर्सरी को रोपाई करना है, ताकि पानी जो है, क्योंकि बारिश का मौसम है, यदि आप उसको ऊपर लगाएंगे तो दिक्कत होगी, इसलिए आपको ढलान जो होती है उसमें दोनों तरफ ढलान में आपको पाई करना है, मेड में 2 लाइन आपको चलाना है गोभी की या आपकी पत्ता गोभी की।
3: और ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
0: धन्यवाद भैया। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं कहा आप मना हमारे संगवारी मन की जितना भी जिज्ञासा है ओला बड़े सुगर तरीका से बतावा था, तो हमारे मन में एक प्रश्न आवा थे कि जब मन जैसे गोभी वर्गीय फसल लगाना चाहते तो एक उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाए खातिर हमला कौन कौन से पोषक तत्व या पादप हार्मोन के उपयोग करना चाहिए और कैसे करना चाहिए?
2: इसमें देखिए, जैसे गोभी वर्गीय जो सब्जियां होती हैं, इसमें आपको यदि आपने लगाया तो आपने लगाने के पहले सप्ताह जब रोपाई किया, रोपाई के समय ही उसमें हम यदि कीटों से बचाने प्रति एकड़ 10 जो है चिपचिपी पट्टियां आती है, जो पीली चिपचिपी पट्टी और नीली जो आपके कीड़ों को जो होती है, जो थ्रिप्स जो चूसने वाले कीड़े होते हैं उनके लिए होती है, तो आपको लगभग 1 एकड़ में 10 नीली पट्टियां, चिपचिपी पट्टियां और पीली जो पट्टियां आती है उसे लगाना होता है, और 5 फेरोमोन ट्रैप लगाना होता है प्रति एकड़। तो इसको यदि आप लगाते हैं तो आपका जो कीटों का जो नियंत्रण है उसके लिए आप पहले ही तैयारी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप यदि पहले ही शुरुआती अवस्था में आपकी चिपचिपी, जैसे मैंने नीली पट्टी और पीली पट्टियां बताया प्रति एकड़ 10, और फेरोमोन ट्रैप जो होता है वो 5 आप यदि लगाते हैं तो ये कीड़ों को बहुत हद तक नियंत्रित करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और उसके साथ साथ में यदि आपको गोभी जो होती है उसके पहले 15 से 25 दिन में यदि आपको गोभी की साइज को यदि बड़ा करना है तो आप उसमें जिब्रेलिक एसिड जो आता है या एमिनो एसिड से आधारित जो बायोस्टिमुलेंट आते हैं उसका आपका 0.001% का सॉल्यूशन बनाकर।
0: जी डॉक्टर साहब फोन देख लेते हैं।
2: हाँ जी,
0: हेलो हेलो किसान वाणी।
4: हेलो किसान वाणी, नमस्कार दीदी।
0: नमस्ते भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था गा?
4: मैं लखनपुर कवर्धा से बोला था दीदी, दानी रामचंद्र वंशी।
0: जी दानी भैया, आज हमारे विषय है अगेती गोभी वर्गीय सब्जी है, खर खेती करके हमन ज्यादा आमदनी कैसे ले सकते हैं, तो ये विषय ले का जानकारी चाहता हूँ आप मन?
4: मैं गोभी खेती करे ला जो थरहा हुआ दे रहे दीदी, 15 दिन हो गए दे। अगेती की मतलब का होते का अगेती है तेल नहीं समझा तो मैं, लेकिन थरहा दे क्यारी ढंग से लगाना है वही बताती कि लगाए दीदी।
0: जी बिल्कुल, तो भैया आज हमारे जिन विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गुंजन झा जी, आप मल्ला ये जानकारी देवा थे।
2: किसान भाई, जैसा आप बता रहे हैं कि 15 दिन आपने लगा चुके हैं, 15 दिन हो चुका है, तो अगेती मतलब मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी ऐसी मतलब जो जल्दी मार्केट में आपकी आ जाएगी। गोभी का जो सीजन माना जाता है वो ठंड का होता है अक्टूबर में, लेकिन ये जो आप थरहा डालते हैं वो आप जून जुलाई और अगस्त में डालते हैं, 15 जून के बाद और अगस्त तक डाला जा सकता है। इस ड्यूरेशन में जो नर्सरी डाली जाती है उसे अगेती नर्सरी कहा जाता है, फूलगोभी की खेती कहा जाता है, क्योंकि इससे जो फसल होती है वो आपको अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही या सितंबर के अंत में जो है मिलने लगती है, इसलिए इसे अगेती गोभी की खेती कहा जाता है, जो मार्केट में बहुत ज्यादा फायदा देती है, उत्पादन भी अच्छा आता है और मार्केट का रेट भी अच्छा मिलता है इसमें आपको। बस थोड़ी सी सावधानी रखनी होती है कि नर्सरी जब आप तैयार कर रहे हैं, बहुत पानी का गिरने का समय होता है, तो इसमें आप ऊंची क्यारी पद्धति जो होती है, आप जमीन से 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी बनाना होता है, और उस क्यारी में आपको लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर गहरी नालियां, छोटी छोटी नाली बनाना है आपको लगभग आपकी 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पे, और उसमें फिर आपको जो बीज होते हैं छोटे होने के कारण उसमें रेत मिला के बीज को उस नालियों में डालना है और वर्मी कंपोस्ट से आपको ढकना है, और जो वो जो बेड तैयार होगा जब आपने ढक लिया उसके ऊपर से आपको जो बांस की खपच्चियां आती है पतली उसको ऐसा मोड़ के आपको सुरंग जैसा बनाना है इसके ऊपर से, और सुरंग बना के उसमें आपको जो कीट रोधी जालियां आती है 40 से 50 मैश वाली प्लास्टिक की जो जाली जैसा आता है आपका जो छरदानी जैसा रहता है जिसको कीट रोधी जाली कहा जाता है, तो उसको आप यदि लगा देते हैं तो हर प्रकार के कीट से जो है नियंत्रण हो जाता है नर्सरी का और आपको एक स्वस्थ नर्सरी है प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से यदि आप नर्सरी तैयार करेंगे तो एक स्वस्थ नर्सरी आपको मिलेगी।
4: ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
0: धन्यवाद भैया। डॉक्टर साहब, हमारे संगवारी लिए गुड बात हुई कि पहली आप मना पोषक तत्व के विषय में बड़ सुघर जानकारी देवत रहे हो, तो ये विषय में थोड़ा ना बता।
2: जैसे मैडम अभी हमारी बात हो रही थी पोषक तत्व में, तो पोषक तत्व में जैसे सबसे पहले बात आती है जैसे कर्ड जब बनना चालू होता है, गोभी का फूल जो बनना चालू होता है, तो उसमें लगभग आपका 15 से 25 दिन जैसे ही होता है तो उसमें हमको एक जिब्रेलिक एसिड हार्मोन्स होता है जो पादप हार्मोन्स होता है और नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, तो इसका यदि हम स्प्रे कर करते हैं 0.001% का सॉल्यूशन बना के, तो ये एक साइज को बढ़ाने का काम करता है और अच्छी साइज जो होती है उसमें गोभी की आती है लगभग आपका। और इसके साथ में यदि ये भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, और इसके साथ में ही आपका जैसे 35 से 45 दिन होता है तो उस समय यदि आपको बहुत ही गोभी का जो कर्ड होता है या फूल होता है उसकी साइज अच्छी करने के लिए और ठोस करने के लिए यदि आपको चाहिए होता है तो उसमें हमको नेफ्थलिक एसिटिक एसिड करके एक हार्मोन्स होता है जिसका लगभग आपका 4.5% जो होता है आपसे आता है वो, और उसका यदि हम उपयोग करते हैं तो ये बहुत अच्छा इसका भी रिजल्ट आता है। उसके साथ में ही बोरॉन करके हमारा माइक्रोन्यूट्रेंट रहता है और माइक्रोन्यूट्रेंट का भी साथ में बोरॉन, तो इसका यदि हम सॉल्यूशन बना के यदि स्प्रे करते हैं और इसको डालते हैं लगभग ये भी आपका 35 से 45 दिन के बीच में, तो ये बहुत अच्छा उत्पादन देता है। और जो आपकी गोभी में ब्राउनिंग जो एक समस्या आती है, भूरा होने वाली समस्या या हॉलो स्टेम जो बीच में तना जो है उसमें छेद होने लगता है, तो वो जो समस्या होती है इस प्रकार से यदि हम माइक्रोन्यूट्रेंट और बोरॉन का स्प्रे करते हैं तो इससे हम बच जाते हैं और एक अच्छी स्वस्थ गोभी जो है उसके कर्ड जो है प्राप्त होते हैं हमको।
0: डॉक्टर साहब, अभी अमन अगेती गोभी की जब बात करते हैं तो भाई कोनो भी फसल हो है उमा रोग बीमारी की समस्या देखा मारती, तो जब अमन अगेती गोभी की खेती करना चाहते हैं तो ये बताते हो कि उमा जैविक कीट या रोग नियंत्रण कौन प्रकार के रोग कीड़ा की समस्या आती
2: है? देखिए, जब गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं इसमें प्रारंभिक अवस्था से ही कीड़ों की समस्या बहुत ज्यादा आती है, तो इसलिए मैंने आपको नर्सरी अवस्था में जैसे बताया कि हमें कीट रोधी जाली का उपयोग करना चाहिए, और साथ में ही यदि उसके पश्चात यदि हम ऐसे प्रो ट्रे में या ओपन में कहीं कंडीशन में लगी हुई है तो उसमें हम यदि नीम ऑयल जो होता है उसका 4 ml 10,000 ppm का नीम ऑयल का 4 ml जो है पर लीटर पानी में मिला के उसका स्प्रे करना होता है। उसमें थोड़ा सा सोप आपका जो साबुन होता है उसको भी मिला लेना है सॉल्यूशन में ताकि उसका असर ज्यादा हो, और उसके बाद इसका नीम ऑयल का स्प्रे करना है आपको, तो जिससे जो आपके चूसने वाले मैनी कीट होते हैं, थ्रिप्स हो गए या फिर इस प्रकार के जो जितने भी कीट होते हैं सफेद मक्खी जो होती है, इससे हम बचाव कर सकते हैं इसका। यदि हमें कुछ इल्ली वाले कीड़े दिखाई दे रहे हैं जैसे कि डायमंड बैक मॉथ भी होता है, छोटी छोटी इल्लियां दिखाई देती है, तो इसके लिए जो बीटी होता है आपका बैसिलस थुरियोजेनेसिस करके उसका 2 g/l पानी में सॉल्यूशन बना के यदि हम स्प्रे करते हैं तो ये भी जैविक है आपका जो किसी प्रकार का नुकसान नहीं करता, और इसका स्प्रे हम यदि करते हैं तो हम जो इल्ली वाले कीड़े होते हैं उससे हम बच सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, अभी जैसे अब बरसात के मौसम है, कहूँ पानी कम गिरा थे कहूँ ज्यादा गिरा थे, कहूँ इसे कि कभी भी बरसात हो जाती
2: है,
0: तो अब अमन जैसे अगेती गोभी की खेती कर रहे थे तो इमा सिंचाई व्यवस्था या सिंचाई प्रबंधन कौन ढंग से होना चाहिए?
2: देखिए, यदि हम इसमें लगा रहे हैं तो सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया इसको मांदा बना के ही लगाना होता है, ऊंची क्यारी पद्धति में करके आपको उसका रोपाई करना है, और रोपाई करते समय यदि आपने इसमें मल्चिंग बिछाई हुई है तो आपको उस मल्चिंग में 2 लाइन आप एक मांदा में 2 लाइन चलाते हैं गोभियों की, 2 उसमें लगा सकते हैं, और यदि आपने मल्चिंग नहीं की है तो आपकी जो मांदा होता है उसकी जो ढलान होती है उसमें आप 2 लाइन चलाएंगे, और यदि ड्रिप लगा हुआ है आपके में तो ड्रिप जो है जैसा पानी की अभी समस्या बहुत ज्यादा नहीं होती है पानी की, तो इसमें केवल एक दिन में 15 से 20 मिनट के लिए आपको ड्रिप चलाना होता है, और यदि ओपन कंडीशन में लगी हुई है तो आप जब पानी देते हैं तो पानी जब आप ओपन उसमें पानी देते हैं तो जो आपकी बीच में नालियों में पानी भरता है उसमें बहुत ऊपर तक पानी को ना भरने दें ताकि पौधों को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, धीरे धीरे पानी उसमें रिस के पहुंचे, सीधा पानी ना पहुंचे नहीं तो गलन की समस्या आ सकती है इसमें, तो ये ध्यान रखें। और पानी यदि बहुत ज्यादा गिरने के कारण पानी भराव की समस्या आती है तो 1 घंटे से ज्यादा अपने खेत में पानी को भरा हुआ ना छोड़ें जिससे कि गलन की समस्या या अन्य बीमारियों से हम बचा जा सके।
0: डॉक्टर साहब, ये अगेती को भी गलोक कोनो नींदा या खरपतवार की समस्या आती है का, तो ओखर निदान कैसे करें?
2: देखिए, यदि हम इसमें जैसे गोभी और फूलगोभी पत्ता गोभी में जनरली हम जब लगाते हैं यदि घना जो जैसे मैंने बताया 2 लाइन लगाना है आपको, तो इस प्रकार की समस्या इसमें बहुत कम देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा समस्या नहीं आती है, लेकिन यदि किसी प्रकार की समस्या ऐसा लग रही है कि हमें खरपतवार दिखाई दे रहा है तो उस कंडीशन में हम इसमें यदि सकरी पत्ती वाली है तो उसके लिए ऑक्सीफ्लोरोफेन होता है या फिर आपका ऑक्सीफ्लोरोफेन का उपयोग कर सकते हैं, और जितनी भी जो सकरी पत्ती वाली होती हैं उनके लिए बहुत अच्छा एक खरपतवार नाशी होता है।
0: डॉक्टर साहब, हम कोनो भी खेती किसानी के काम बताला शुरू करते हैं तो हमारे ये रीति कि भाई वहाँ गुणवत्ता घलोक बने मिले, उत्पादन घलोक बने मिले, ये खातिर हमन जितना संभव हो सकते तो जैविक या रासायनिक खाद के उपयोग करते हैं, तो आप मन ये बताती हूँ कि जब हम अगेती गोभी की खेती करना चाहते तो इमा खाद उर्वरक कैसे और कितना मात्रा में डालना चाहिए?
2: जैसे कि हम खाद और उर्वरक के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें जो खाद होती है वो लगभग 100 से 130 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ और 150 से 200 किलोग्राम सिंगल सुपरफास्फेट और 40 से 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास जो पोटास बोला जाता है उसकी मात्रा प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है, और जिसमें से जो सिंगल सुपरफास्फेट होता है और जो आपका पोटास होता है उसे आपकी मांदा बनाते समय उसकी तैयारी के समय उसको मिला सकते हैं उसमें, और जो नाइट्रोजन यूरिया वाली जो खाद होती है उसे हम 2 split dose में डालते हैं। पहला जो होता है वो लगभग आपका 15 दिन बाद डाला जाता है।
0: गुड बात अगर वो फिर हमारे संगवारी मन के फोन आवा थे सुनथन का जानकारी चाहते हो मन
2: जी।
0: हेलो हेलो किसान वाणी।
5: नमस्ते
0: भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
5: हम बोले थे डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिला।
0: जी भैया, भैया आज हमारा विषय है कि अगेती गोभी वर्गीय सब्जी की खेती ज्यादा आमदनी के आधार, तो इकले जुड़े का जानकारी चाहिए आपला?
5: अगेती गोभी के बारे में जानना चाहता हूँ, जल्दी तैयार हो जाए, कम खर्चा लगे, बढ़िया बीज मिल जाए।
0: जी जी, तो ये विषय में जानकारी हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन झा जी बतावा थे।
2: जी, फूल गोभी की जो आपकी जो अगेती फूल गोभी की बात चल रही है, तो इसमें सबसे पहले उन्नत किस्म की आपने बात की, तो उन्नत किस्म में मैंने जैसे बताया कि पूसा मेघना, पूसा अश्वनी जो वैरायटी है, काशी कुमारी है आपकी, पूसा कार्तिकी वैरायटी है, या यदि हाइब्रिड में जाना चाहें तो आयरिस हाइब्रिड वन है आपका, या अर्ली एक्सप्रेस करके वैरायटी है। ये सभी वैरायटियां बहुत ही उन्नत और अधिक उत्पादन देने वाली होती हैं, तो इसका आप उपयोग कर सकते हैं फूल गोभी के लिए। और यदि पत्ता गोभी आप लगाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप पूसा गेती, पूसा संबंध हो गया, या प्राइड ऑफ इंडिया जो वैरायटी होती है, ये अर्ली किस्म होती है, जिसको आप लगा के अक्टूबर में या सितंबर के अंतिम हफ्ते में इसका उत्पादन आपको जो है मार्केट में आप इसको सेल आउट कर सकते हैं, बेच सकते हैं।
5: बहुत धन्यवाद देता हूँ।
2: जी जी,
0: धन्यवाद भैया। हेलो हेलो किसान वाणी।
6: राम राम दीदी।
0: राम राम भैया, कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
6: मैं भाठा पारा जतरंगी ले हीरू राम साहू बोला रहे मुनिका दीदी।
0: जी भैया, भैया आज हमारे ना हेलो किसान वाणी के विषय है कि अगेती गोभी वर्गीय जन सब्जी है, एकर खेती ज्यादा आमदनी के आधार है, तो भाई ये विषय ले जुड़े आपला का जानकारी चाहिए?
6: वही से लेना थोड़ा, हमारा खेती करना है तो कैसे आमदनी मिल रही, लेने से जानकारी।
0: मैंने ये जानना चाहता हूँ कि गोभी वर्गीय सब्जी करके आमदनी ला कैसे बढ़ा सकता, तो आप ले ये विषय में जानकारी दी है हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन झा जी।
2: किसान भाई,
6: नमस्कार भाई।
2: जी नमस्कार, नमस्कार। जैसा आप बता रहे हैं कि अधिक उत्पादन कैसे मिल सकता है, तो जैसा मैंने बताया आपको कि अभी जो सीजन होता है इसमें यदि आप गोभी वर्गी सब्जी लगाते हैं, थोड़ी प्रिकॉशन रखना होता है क्योंकि बारिश का मौसम होता है, तो इसमें आप यदि लगाते हैं तो प्रति एकड़ लगभग आपका 1.5 से 2.25 लाख रुपए आप इसमें कमा सकते हैं, और खर्चा जो होता है लगभग 40 से 50 हजार के बीच प्रति एकड़ आता है यदि आप गोभी वर्गी सब्जी लगाते हैं, फूल गोभी या पत्ता गोभी। और लेकिन इसमें जो उत्पादन के बाद आपको जो शुद्ध लाभ होता है वो लगभग आपका 1.5 से 2 लाख रुपए इसमें आपको प्रति एकड़ मिलता है, तो इसलिए एक बहुत अच्छी। जी जी, और यदि आपका मार्केट में रेट 30-40 रुपए के हिसाब से हम बता रहे हैं, यदि ज्यादा रेट आपको मिल जाता है तो आपको और ज्यादा अच्छा उत्पादन मिलता है, मतलब कमाई होती है आपकी। तो इस प्रकार से यदि इसका सिलेक्शन करते हैं इस सीजन में लगाने के लिए, तो फूल गोभी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है मौसम में लगाने के लिए फसल के रूप में।
6: धन्यवाद,
0: धन्यवाद भैया। तो डॉक्टर साहब, हमारे संगवारी मन के फोन आए कि पहले हम गुड बात करते रहे खाद और उर्वरक के विषय में।
2: जी जी,
0: तो यही विषय में आओ विस्तार बताते हो।
2: जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि एनपीके जो होता है, मेन फर्टिलाइजर जो हमारा होता है, यूरिया, पोटास और डीएपी, एसएसपी हम डालते हैं, तो इसमें मैंने जैसे बताया आपको कि 100 से 130 किलोग्राम जो है लगभग यूरिया प्रति एकड़ की मात्रा लगती है हमें, और लगभग 150 से 200 किलोग्राम आपका सिंगल सुपरफास्फेट, और 40 से 50 किलोग्राम जो है आपका म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा लगती है प्रति एकड़ हमें। और इसे देने की यदि कब देना चाहिए इसकी बात आएगी, तो लगभग आपका जो पोटास होता है और एसएसपी होता है उसे आप लगाने के समय ही, खेत की तैयारी के समय आपको देना होता है, और जो यूरिया की मात्रा होती है उसे 2 स्प्लिट डोज पे देना होता है। आप पहला जो होता है या 2 या 3 स्प्लिट डोज दे सकते हैं पहली 15 दिन बाद, उसके बाद दूसरी मात्रा 30 से 35 दिन बाद, और फिर 40 दिन बाद जो है इसे दिया जाता है 3 स्प्लिट डोज पे।
0: डॉक्टर साहब, अब जाति बिराती एक और प्रश्न मन में आवत रही से कि उत्पादन लागत और लाभ के बात करें, तो अगेती गोभी की खेती करके हम कैसे ले सकते हैं?
2: अगेती गोभी में देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ये सीजन के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि गोभी हमारी ठंड में, जो गोभी आती है वो ठंड में आना चालू होती है, और यदि हम मार्केट में सबसे पहले अक्टूबर में जैसे हमारी ठंड चालू होती है उस समय हमारी गोभी मार्केट में आती है, तो उसका रेट बहुत अच्छा मिलता है, मिनिमम आपको 30 रुपए किलो तक जो है किसानों के पास से मिनिमम जाता है, और यदि अच्छा रेट मिले तो 50-60 रुपए किलो तक वो गोभी चली जाती है। तो इस प्रकार से यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो लगाने में केवल आपकी लगभग 40 से 45 हजार प्रति एकड़ का खर्चा आता है, लेकिन इसमें जो उत्पादन होता है, उत्पादन के बाद जो हमें शुद्ध लाभ होता है लगभग आपका, यदि हम 30 रुपए केजी के हिसाब से भी लेते हैं कि हमारा सेल आउट हुआ है, तो उससे लगभग आपका 1.25 लाख से 2 लाख रुपए का आपको अर्निंग हो जाती है। तो यदि इस प्रकार से आप प्लानिंग करते हुए लगाते हैं तो फूल गोभी बहुत ही अच्छा फायदा देने वाली फसल है इस सीजन के लिए।
0: जी डॉक्टर गुंजन झा जी, आप मन बड़ सुघर सुघर तरीका ले हमारे संगवारी मन के फोन के माध्यम ले होकर मन के खेती किसानी की समस्या के निदान करे, और संगे संग हमरो जो समस्या या जानकारी के जिज्ञासा के विषय रही से ओला आप मन बड़ सुघर तरीका ले बताए, तो ये खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद मैम, धन्यवाद।
0: संगवारी हो हेलो किसान वाणी में आज के विषय रही से अगेती गोभी वर्गीय सब्जियों की खेती ज्यादा आमदनी का आधार, और ये विषय में आप मन के फोन के माध्यम ले समस्या और जिज्ञासा के समाधान बतावत रही समर संघ स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ डॉक्टर गुंजन झा जी। आप मन हाँ वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रभारी है कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव में, और आप मन संग फोन के माध्यम ले गुड बात करते रहो मैं मने आप मन के संगवारी मोनिका। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रही से मोहम्मद अशरफ, अंजू विजयन और उदय कुमार ठाकुर के, और प्रस्तुत करता रही इन्हें शशि प्रकाश पांडे जी है। तो भाई आज के ये क्रम ईचे सिरावत है।
7: क्रम हेलो किसान वाड़ी मा अगेती गोभी वर्गी सब्जी के खेती ज्यादा आमदनी के आधार ए विषय में सुघर हमर समस्या और जिज्ञासा के समाधान हमला मिलिस डॉक्टर गुंजन झा मन ले आप मन वरिष्ठ वैज्ञानिक हवे प्रभारी हवे कृषि विज्ञान केंद्र राजनांदगांव में संग में गोट बात करत रहिन है मोनिका दीदी और प्रस्तुत करता रहिन शशि प्रकाश पांडे।

0: हम हैं भारत के किसान हम
1: किसान हम
2: किसान हम।
1: लक्ष्मीकांत अब बेरा है हमार क्रम कृषक प्रश्न मंच के जिमा ये पता चलते है कि हमार संगवारी मन कितना चेत लगा के हमार कार्यक्रम ला सुनते। तो भाई बता तो आज के कृषक प्रश्न मंच में हमार आज के प्रश्न का है।
3: हमार आज के प्रश्न है अगेती गोभी काला कहे जाते। संगवारी हो प्रश्न एक बार फिर ले सुनो। हमार प्रश्न है अगेती गोभी काला कहे जाते।
1: और सही जवाब पर मेल आईडी मैं बता देता हूँ संगवारी हो। सही जवाब पर मेल आईडी है राय आज के प्रश्न 23@gmail.com। और पाछू हफ्ता के सवाल और जवाब बताही लक्ष्मीकांत।
3: पाछू हफ्ता प्रश्न पूछे गए रही से जैविक खेती में कौन कौन से खाद डाले जा सकते। अब एक सही जवाब है संगवारी हो कंपोस्ट खाद वर्मी कंपोस्ट जैव उर्वरक हरी खाद ये सब के उपयोग करना चाहिए।
1: और सही जवाब भेजिए संगवारी मन के नामला मैं बता देता। सही जवाब भेजिए संगवारी मन है लोरमी ग्राम चचेड़ी ले कमलकांत मरावी प्रमिला मरावी नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी मन गरा पार बांधा बाजार ले है गंगाराम साहू सुलोचना मानवेंद्र राकेश साहू रानी गांव नगरी ले है खिलेश कुमार साहू चित्र रेखा शुभम और सेजल साहू परसा टोला अम्बागढ़ चौकी ले है ओम प्रकाश मसिया सुलोचनी तुसारनी और खुमेंद्र मसिया अमलेश्वर ले है डोमन ठाकुर सुमन ठाकुर गुड़िया और यांश ठाकुर। सही जवाब भेजिए जम्मू संगवारी मल्ला गाड़ा गाड़ा
3: बधाई। संगवारी हो एरिस किसान वाड़ी प्रायोजक रहीन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: संगवारी हो हुआ थे जाए की बेरा फिर बता देवन काली के कार्यक्रम काली संजा बेरा चौपाल माँ क्रम हो ही चिट्ठी मिलीस और हो ही आज की सलाह क्रम जेमा गुड़ बात के विषय हुई जानकारी के विषय हुई बदलत मौसम माँ खेती ऊपर प्रभाव और किसान के तैयारी और ये विषय माँ जानकारी दी ही विशेषज्ञ नीलम सिन्हा। भाई एकरे संग संग हो ही हमार क्रम कृषक प्रश्न मंच जेमा आज के प्रश्न पाछू हफ्ता के प्रश्न संगवारी मन के नाम और सही जवाब बताबो संगे संग गीत संगीत के मधुरता तक बगर बेकर तदेव विदा। कार्यक्रम सुनैया जम्मू संगवारी मल्ला मोनिका
3: लक्ष्मीकांत के
1: राम राम, राम।

प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे। FM 107 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। पेश है गैर फिल्मी गीत। सोनू निगम की आवाज में सुनिए इस गाने को। फैज अनवर ने इस गीत को लिखा है। संगीत है निखिल विनय और साजिद वाजिद का।

तेरा ख्याल मेरे दिल से जा नहीं सकता, तमाम उम्र मैं तुझको भुला नहीं सकता।

मेरा तसव्वुर, मेरी दीवानगी तू ही तो है। काश तुझे खबर होती ये जिंदगी तुझ बिन हर लम्हा मुझे तड़पाती है। मैं क्या करूं जिंदगी से भागकर, कहां जाऊं तेरा पता भी तो नहीं।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

राजेंद्र कृष्ण की रचना को आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीत मदन मोहन ने दिया था। इसके साथ ही गैर फिल्मी गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, 8:15 होने वाले हैं। कुछ पल में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे साइबर जागृति अभियान पर विशेष कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: काफी वृद्धि देखी गई है। अधिकांश साइबर ठगी के मामलों में यह पाया गया है कि लोग जागरूकता, सतर्कता और समुचित जानकारी के अभाव में साइबर ठगों के जाल में फंस जाते हैं। छत्तीसगढ़ में लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए राज्य पुलिस द्वारा साइबर जागृति अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के बारे में विस्तार से चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं सहायक पुलिस महानिरीक्षक श्री रोहित झा। श्री झा इस समय छत्तीसगढ़ पुलिस में गुप्तवार्ता विभाग में पदस्थ हैं। रोहित जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: जी, धन्यवाद।
0: रोहित जी, बताइए कि जो साइबर जागृति अभियान चलाया जा रहा है वह कब से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा?
1: जी, छत्तीसगढ़ पुलिस का यह अभियान 15 अगस्त 2026 से शुरू हुआ है और इसे हम 2 अक्टूबर 2026 तक चलाएंगे।
0: जी, करीब 1.5 महीने का यह अभियान है।
1: जी, लगभग 1.5 महीने का अभियान।
0: इसका मूल उद्देश्य क्या है इस अभियान का?
1: इसको मुख्य रूप से शुरू करने का विचार यह था कि साइबर क्राइम आज के तारीख में बहुत ही ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दा है और प्रत्येक व्यक्ति जिसके हाथ में मोबाइल का फोन है वह साइबर क्राइम के लिए एक प्रकार से वर्नेबल है।
0: जी।
1: तो दिन प्रतिदिन लोग इस क्राइम से न केवल रूबरू हो रहे हैं बल्कि प्रभावित भी हो रहे हैं।
0: बिल्कुल जी।
1: और जरूरत इस बात की है कि हमको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम बच सकें ताकि हम साइबर क्राइम से प्रभावित न हों। इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों को, जन सामान्य को साइबर क्राइम के प्रति जागरूक करने और साथ ही साथ उनको यह बताने कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नहीं करनी है जिससे वो साइबर क्राइम से बच सके, यह एक संकल्पना ली गई कि हम एक ऐसा अभियान चलाएं जिसमें लोगों के बीच में जा करके हम लगातार उनको साइबर क्राइम के प्रति जागरूक कर सकें।
0: जी, इसमें जैसे करीब आपने जैसे बताया कि लगभग 1.5 महीने लंबी अवधि का यह अभियान है, 1.5 महीने एक बड़ी लंबी अवधि होती है, तो इस दौरान यह अभियान कितने चरणों में संचालित होगा और अलग अलग चरणों में समाज के किन किन वर्गों पर फोकस किया जाएगा, किस तरह से इस पूरे अभियान को प्लान किया गया है?
1: जी, यह कार्यक्रम 7 सप्ताह तक चलेगा। इसमें 7 सप्ताह को हमने अलग अलग विषयों के लिए बांटा हुआ है। पहले सप्ताह के दौरान हम इसे विद्यार्थी एवं युवा केंद्रित रखा है हमने। दूसरे सप्ताह में हमने वित्तीय धोखाधड़ी एवं UPI सुरक्षा से संबंधित विषयों को रखा है। इसका लक्षित समूह बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान है। इसमें हमारा टारगेट है कि हम बैंकों, ATM परिसरों, बैंकिंग सेवा केंद्रों एवं अन्य वित्तीय संस्थान के माध्यम से जो वहां के अकाउंट होल्डर्स हैं उनको, आम नागरिकों को UPI फ्रॉड, फर्जी कॉल मैसेजेस, OTP, पिन साझा करने संबंधी, QR कोड आधारित जो ठगी होती है, इन सब के बारे में मौके पर ही जागरूक कर सके।
0: जी।
1: इसके अलावा जो तीसरा सप्ताह हमारा शुरू होगा जो 30 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा, इसको हमने वरिष्ठ नागरिक केंद्रित रखा है।
0: अच्छा।
1: जैसा कि आपने अभी देखा होगा हाल ही के दिनों में कि डिजिटल अरेस्ट नाम की एक शब्दावली चल निकली है।
0: जी।
1: इसका मुख्य टारगेट हमारे वरिष्ठ जन है।
0: जी।
1: तो हमने इस सप्ताह में मुख्य रूप से डिजिटल अरेस्ट, फर्जी अधिकारी बन के जो फर्जी कॉल आते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से जो धमकियां होती हैं जिसमें हमारे वरिष्ठ नागरिक प्रभावित होते हैं, उनको जागरूक करने के लिए हमने तीसरा सप्ताह पूर्ण रूप से डेडिकेट किया है।
0: जी, वरिष्ठ नागरिकों को।
1: जी, इसके बाद हमारा जो चौथा सप्ताह होगा
0: जी,
1: उसमें हमने महिलाओं और जो बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, उनको केंद्रित रखते हुए महिला कॉलेजों में एवं अन्य महिला संगठनों में महिलाओं को जो स्मार्टफोन की प्राइवेसी की सेटिंग्स, सोशल मीडिया अकाउंट की सुरक्षा, इन सब विषयों पे जो व्यक्तिगत, चूंकि महिलाओं के साथ फेक आइडेंटिटी, फेक पिक्चर मॉर्फिंग करके बहुत सारे अपराध होते हैं
0: जी,
1: तो इन सब अपराधों से बचने के लिए तथा साथ ही साथ जो ऑनलाइन बहुत सारे उत्पीड़न होते हैं, आज के समय में साइबर स्टॉकिंग एक बड़ा मुद्दा है, तो इन सब विषयों पर जागरूक करने के लिए हमने अपना चौथा सप्ताह महिलाओं एवं बच्चियों को डेडिकेट किया है।
0: जी।
1: जो पांचवा सप्ताह है, इसमें हमने असंगठित क्षेत्र के युवा, श्रमिक, खासकर ऐसे लोग जो नौकरियों की तलाश में हैं, ऐसे लोगों को केंद्रित रखते हुए हमने रोजगार कार्यालयों में, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र, श्रमिक सहायता केंद्र, जो सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, जो पीएसयूज हैं, वहां पर जाकर के हम लोगों को जागरूक करेंगे। ऐसे क्षेत्रों में सामान्य तौर पर रोजगार की तलाश में युवा होते हैं, उनको फर्जी नौकरी के विज्ञापनों, ऑनलाइन जॉब ऑफर, फर्जी भर्ती एजेंसियों, रजिस्ट्रेशन एवं वेरिफिकेशन के नाम पे ठगी, इन सब चीजों से जागरूक करने का हमारा प्रयास रहेगा
0: जी।
1: इसके बाद हमारा छठवां सप्ताह जो है वो हम मुख्य रूप से शासकीय क्षेत्र की संस्थाओं को टारगेट करेंगे
0: जी।
1: आप और हम सब शासकीय सेवक हैं, ये लोग भी साइबर क्राइम से अछूते नहीं हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इसमें हमारा उद्देश्य है, जो हमारे शासकीय प्रतिष्ठान है, चाहे वो कोर्ट रूम हो, चाहे वो शासकीय कोई ऑफिस हो, कलेक्ट्रेट हो, ऐसी जगहों पर जाकर के हम जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी है उनको साइबर क्राइम के बारे में बताएंगे और उनको जागरूक करेंगे
0: जी।
1: इसके बाद जो हमारा आखिरी सप्ताह है, सातवां सप्ताह, इसको हमने साइबर चौपाल का नाम दिया है। हम ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में जाकर के ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों को ओटीपी, यूपीआई फ्रॉड और अन्य जो सामान्य ठगी के मामले हैं, जिसमें सामान्य लोग दिन प्रतिदिन प्रभावित होते हैं, इसके बारे में जाकर के हम जागरूक करेंगे
0: जी। बहुत ही व्यापक यह अभियान चलाया जा रहा है, जैसा भी आपने जानकारी दी है, बहुत अलग अलग वर्गों पर फोकस किया जा रहा है, तो इसके लिए निश्चित रूप से एक बड़ी टीम की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षित जो है वो मानव संसाधन की आवश्यकता होती है, जो लोगों को बताए। तो ये किस तरह से संचालित किया जा रहा है पूरे प्रदेश में, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: इसके लिए हमने एक राज्य स्तर पर एक टीम बनाई है
0: जी,
1: और सारी गाइडलाइंस हमने हमारे जो 33 जिले हैं उनके पुलिस अधीक्षकों को जारी की है
0: जी।
1: इस अभियान की जानकारी देने के लिए जिलों के पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेस वार्ता की गई है, आम जन को बताया गया है किन किन क्षेत्रों में चलेगा, इसकी जानकारी दी गई है
0: जी।
1: और ये पूरे का पूरा कार्यक्रम जो है हमारे जिलों से संचालित होगा
0: जी।
1: हम जो राज्य स्तर पर टीम है वो इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करेंगे, और हमारा जो थाना लेवल का अधिकारी और कर्मचारी है वो फील्ड में उतरकर मैदानी अमले के रूप में इस पूरे कार्यक्रम को संपन्न करेगा
0: जी। बहुत अच्छी बात है रोहित जी, जैसे आपने बताया कि थाने स्तर पर जो है वो अधिकारी और कर्मचारी जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, उनको जागरूक करेंगे, तो उनको भी इस बारे में प्रशिक्षित किया गया है कि किस तरह से उन्हें जागरूक करना है।
1: देखिए, साइबर क्राइम ये तो जब से मोबाइल फोन आया है, इंटरनेट की दुनिया ये तब से शुरू हुई है और ये नित परिवर्तित हो रही है। हमारा उद्देश्य ये है कि साइबर क्राइम का जो सबसे बेसिक अपराध है उस पे फोकस करना। तो हमारे जो पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी है उनको इस बारे में भली भांति जानकारी है, और निश्चित तौर पे यह अभियान उनके सक्रिय योगदान से सफल होगा।
0: बिल्कुल सही बात ये आपने कहा कि जो बेसिक तरह के जो साइबर अपराध होते हैं, जो ज्यादातर होते हैं, तो उनके बारे में आपने अभी जिक्र किया है। किस तरह के मामले साइबर ठगी के छत्तीसगढ़ में आमतौर पर सामने आते हैं, ये बताएं।
1: देखिए, सबसे महत्वपूर्ण तो है ओटीपी फ्रॉड। जाने अनजाने आपसे ओटीपी मांगता है, आपने ओटीपी दिया और एक आपके बैंक अकाउंट से पैसा चला गया अपराधी के पास। इसके अलावा दूसरा तरीका है फर्जी कॉल। आपको फोन कॉल आएगा और ये बोला जाएगा कि मैं किसी पुलिस अधिकारी के रूप में बात करेगा कि आपका जो कोई परिचित है वो किसी समस्या में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है या किसी अन्य प्रकार की समस्या में है, ताकि आप अधीर हो जाएं और उसमें आप निर्णय लेने की स्थिति में ना रहें,
0: जिसको पैनिक होना कहते हैं।
1: यस, और उस अनिर्णय की स्थिति का फायदा उठाकर जो अपराधी है वो आपसे पैसे अपने अकाउंट में ले लेगा और इस प्रकार से आपसे ठगी हो जाएगी
0: जी।
1: कई बार जैसे नौकरी के नाम पर फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर अपलोड कर दिया जाता है और उसके नाम पे ठगी हो जाती है
0: जी।
1: इंश्योरेंस के नाम पे कई बार ठगी होती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई इंश्योरेंस आपने कराया है
0: जी,
1: किसी कारणवश आपने क्या किया, एक आध साल का आपका प्रीमियम ब्रेक हो गया
0: जी।
1: तो वो आपको फोन करेंगे कि आपका प्रीमियम एक साल के लिए ब्रेक हो गया, अब हम आपको ऑफर दे रहे हैं कि आपको 30% कम प्रीमियम देना पड़ेगा
0: जी।
1: तो सामान्य तौर पर व्यक्ति ये समझता है कि ये एक ऑफर है, तो वो उस पे आगे इनिशिएट करता है, वो एक लिंक भेजता है। आज के समय पे मुझे लगता है कि 90% जो ट्रांजेक्शन है वो लिंक के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, इन्हीं माध्यमों से हो रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: उसका फायदा वो उठाता है, वो एक लिंक भेजता है और उस लिंक पे आपको कहता है कि इस लिंक पे आपको पे करना है
0: जी।
1: और आप पे करते हैं, आप ये वेरीफाई नहीं करते कि सही जगह पैसा जा रहा है कि नहीं, और वो बात भी उसी तरीके से करता है कि वो उसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है।
0: जी जी।
1: तो पैसा किसके पास गया? ठग के पास।
0: जी।
1: और आप ठगी के शिकार हो गए।
0: मतलब आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि या तो जो ठग लोग हैं व्यक्ति के डर का फायदा उठाते हैं या फिर उनके लालच का।
1: निश्चित तौर पे दूसरा विषय जो है वो ज्यादा
0: लालच वाला
1: जो विषय है वो ज्यादा प्रभावी है।
0: जी। अच्छा रोहित जी, क्योंकि आपका बड़ा अनुभव है, कई मामलों को आपने देखा होगा, डील किया होगा, लोगों को आप आसान भाषा में क्या सलाह देना चाहेंगे कि मूल रूप से वो क्या सावधानियां बरतें, किन किन चीजों का बुनियादी रूप से ख्याल रखें कि वो साइबर ठगी से बचें?
1: इसमें मैं तीन मूल मंत्र देना चाहूंगा।
0: जी।
1: कभी भी OTP किसी को नहीं बताना है।
0: अच्छा।
1: OTP आप अपने परिवार के किसी जन को भी ना बताएं।
0: जी।
1: दूसरी बात मैं कहूंगा कि कभी भी आप कोई भी किसी भी साइट पर जाते हैं तो क्लिक करने के पहले एक बार सोच लें कि आप किस चीज पर क्लिक कर रहे हैं।
0: जी।
1: तो मैं उसको बोलता हूं थिंक बिफोर क्लिक।
0: ओके।
1: और तीसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा, किसी भी अनजान नंबर से आने वाले वीडियो कॉल को न उठाएं।
0: जी।
1: ये जो तीन बातें हैं इसको आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए।
0: जी। एक बात और रोहित जी, इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम लोग हैं, ये बताइए कि आजकल लोगों की निर्भरता अपने मोबाइल फोन पर सबसे ज्यादा हो गई है, वही सबसे बड़ा माध्यम है, चाहे वो डिजिटल लेन देन की बात हो, बात करने की बात हो, व्हाट्सएप कॉल की बात हो, जो भी हो, तो मोबाइल फोन यदि किसी का गुम जाता है या चोरी हो जाता है ऐसे समय में उसे क्या करना चाहिए, और जब मोबाइल फोन है मान लीजिए कि कुछ अनहोनी हो जाए तो किस तरह की जानकारियां लोगों को पहले रख लेनी चाहिए कि जब वो पुलिस के पास जाते हैं तो क्या जानकारियां उनसे मांगी जाएंगी उनके मोबाइल फोन से संबंधित, और गुमने की स्थिति में सबसे पहला कदम व्यक्ति को क्या उठाना चाहिए?
1: देखिए, आपके मोबाइल का जो IMEI नंबर है
0: जी,
1: वो आपके पास सुरक्षित रहना चाहिए। जब भी आप रिपोर्ट कराने जाएंगे
0: जी,
1: तो वो पुलिस आपसे मांगेगी
0: जी,
1: क्योंकि वो आपके डिवाइस का यूनिक नंबर है। दूसरी बात, कभी भी अगर आपका मोबाइल चोरी हुआ या गुम हुआ
0: जी,
1: सबसे पहले अपना सिम ब्लॉक करा लीजिए।
0: अच्छा, जो सिम वाली कंपनी है टेलीकॉम की उससे संपर्क करके।
1: हाँ, उससे संपर्क करके अपना सिम ब्लॉक कराएं।
0: जी।
1: इसके पीछे कारण ये है कि जितने भी प्रकार के डिजिटल फ्रॉड होंगे
0: जी,
1: वो OTP बेस्ड होते हैं मैक्सिमम।
0: बिल्कुल।
1: वो आपके सिम से कनेक्टेड है
0: जी,
1: तो जो ठग है वो इसी का फायदा उठाता है, वो आपका मोबाइल चुराया, सिम निकाला, किसी दूसरे फोन में डाला, चालू किया
0: जी,
1: और ट्रांजेक्शन शुरू होगा तो OTP उस पे जाएगा
0: जी।
1: तो इसलिए सबसे पहले मोबाइल गुम हो या चोरी हो तो पहले सिम ब्लॉक करा दीजिए
0: जी,
1: और तुरंत पुलिस के पास जाइए।
0: और इसके अलावा बैंक से भी संपर्क करने की आवश्यकता पड़ती है क्या?
1: एक गोल्डन आवर का कंसेप्ट है, अगर अच्छा। मान लीजिए आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड हो गया जिसमें आपके मतलब खाते से कुछ पैसा निकल गया
0: जी,
1: ऐसी स्थिति में 1930 नंबर है एक,
0: अच्छा,
1: भारत सरकार ने जारी किया है, इस नंबर पे कॉल करें तुरंत
0: जी,
1: और तुरंत कॉल करके अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कराएं
0: जी।
1: होता कैसे है, आपके साथ मान लीजिए कोई फ्रॉड हुआ
0: जी,
1: तो पैसा किसी न किसी अकाउंट में जाएगा,
0: बिल्कुल,
1: एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में
0: जी।
1: तो ये जो गोल्डन आवर का रूल ये है कि आप जितनी जल्दी 1930 पे कॉल करेंगे
0: जी,
1: 1930 के माध्यम से जो पैसे के अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर है उसको रोका जाता है।
0: अच्छा।
1: इसलिए अगर किसी प्रकार का UPI फ्रॉड होता है या किसी प्रकार के ट्रांजेक्शन का फ्रॉड होता है तत्काल 1930 पे कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
0: अब इस कार्यक्रम के अंत में आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे?
1: मैं लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि प्रदेशवासियों को साइबर क्राइम के विरुद्ध जागृत करने एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से साइबर जागृति अभियान चलाया जा रहा है
0: जी।
1: मैं लोगों से अपील करता हूँ कि इस अभियान की जो मुख्य थीम है साइबर जागृति की एक सेल्फी, सभी लोग इस अभियान से जुड़े, साइबर जागृति की एक सेल्फी लें और अधिक से अधिक लोगों के बीच जागरूकता फैलाएं। आप स्वयं जागरूक हों और अगर आपने अपने किसी पड़ोसी को, किसी भाई को, किसी अन्य दोस्त को जागरूक किया तो ये एक चेन रिएक्शन बनेगी, एक श्रृंखला बनेगी और एक से एक मिलकर हम 11 होंगे और हम छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम के मामले को बहुत हद तक रोक पाएंगे।
0: बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, वाकई बहुत ही सार्थक और महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, और हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से यदि लोग साइबर ठगी से बचते हैं तो वाकई ये आज की चर्चा बहुत सार्थक साबित होगी हम सबके लिए, और आपका जो उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ पुलिस का जो उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ सरकार का जो उद्देश्य है कि हमारे प्रदेश को साइबर ठगी से मुक्त बनाना, उसे हम पूरा कर पाएंगे। तो एक बार पुनः आपका आकाशवाणी समाचार की ओर से हार्दिक आभार।
1: जी धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा यह विशेष कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
2: छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा चलाए जा रहे साइबर जागृति अभियान पर विशेष कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थे प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर।
3: यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है, एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। मोहम्मद रफी की आवाज में सुनिए उम्मीद फिल्म का यह प्यारा सा गाना। शकील बदायूनी ने इस गीत को लिखा है, संगीत है रवि रंजन के।

0: हाँ ये रिंग अच्छी है, बीवी को पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती,
1: सुरीली संदली
6: धरती फिल्म के गाने को आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, शंकर जयकिशन ने धुन बनाई थी, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे। कार्यक्रम में सुनिए मजरू सुल्तानपुर के लिखे इस नगमे को, मदन मोहन ने संगीत में पिराया है, आवाज है मोहम्मद रफी की, फिल्म चिराग का ये प्यारा सा गाना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। यूपीआई का एक दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की विकसित सभी मिसाइल प्रौद्योगिकी भारतीय कंपनियों को हस्तांतरित करने की घोषणा की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर हब बताया। वैश्विक हाइपर स्केलर से 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का उल्लेख किया। और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेन देन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है, साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है।
1: दुनिया के दो डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है।
2: मुझे 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बंदे की बात, अगर वॉलेट में पैसे होना हो यूपीआई तो होता ही है, अपने यूपीआई मोबाइल से कर, ये बेनिफिट मिला है।
1: बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है।
3: यूपीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं।
1: महज एक दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: देश में यूपीआई सेवा के 10 वर्ष पूरे होने के साथ ही अब पूरे झारखंड में डिजिटल भुगतान बेहद आसान, तेज और सुरक्षित हो गया है। हजारीबाग में झारखंड वाणिज्य परिसंघ के सचिव राकेश कुमार ने बताया कि इस डिजिटल भुगतान व्यवस्था ने व्यापार को और अधिक पारदर्शी बनाया है।
4: चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत सरकार के इस नियम का बहुत स्वागत करती है। इससे बहुत ज्यादा फायदा व्यापारियों को हुआ है और सुगमता से ग्राहक भी इससे काम करते हैं।
0: यूपीआई का एक दशक पूरा होने पर हजारीबाग के स्थानीय लोगों ने इस सेवा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया।
5: फोन पे हो, गूगल पे हो, इसे हम लोग को बहुत आसानी हो गया। अब पैसा किसी को ले जाने का भी जरूरत नहीं है, अपना फोन पे में ट्रांजेक्शन हो रहा है और ये एक तरह का ये सब पक्का हो गया। जैसे छोटे दुकानदार, जैसे सब्जी वाले या पान दुकान या किसी तरह का भी छोटा व्यवसायी लोग है, उन लोग भी अपना अकाउंट है सो खुलवा रहे हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकी

0: देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है।
1: तकनीक का हस्तांतरण घरेलू उद्योगों की अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इससे घरेलू उद्योगों को योग्यताओं, प्रमाणों और नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। ये प्रावधान मिसाइल प्रणाली के विकास से औद्योगिक उत्पादन को संभव बनाएगा। ये उन्नत रक्षा प्रणालियों के विकास और निर्माण के लिए भारतीय उद्योग की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए DRDO के निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना, रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना तथा भारतीय MSMEs और अन्य प्रौद्योगिकी साझेदारों के लिए आपूर्ति श्रृंखला में भागीदारी के अवसर पैदा करना है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार जापान सहित उच्च तकनीक क्षेत्र की अन्य कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट देने के लिए नियमों की एक विशेष रूपरेखा पर काम कर रही है। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और AI क्षेत्रों की जापानी कंपनियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये छूट आवश्यकता के आधार पर कंपनी, उद्योग, उत्पाद या परियोजना स्तर पर दी जा सकती है। श्री गोयल ने भारत को वैश्विक डेटा सेंटर का हब बताते हुए कहा कि वर्ष 2030 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग 150 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने वैश्विक हाई स्केलर्स के 200 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धताओं का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 2 दिन की यात्रा पर कल पेचिंग पहुंचे श्री डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झिंग से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ के साथ बातचीत की। डॉ जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालात पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की।
2: भारत और न्यूजीलैंड ने दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने और रोडमैप 2030 के लक्ष्यों को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई है। वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में दोनों पक्षों ने थल, वायु और नौसेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास और स्टाफ कॉलेज साझेदारी बढ़ाने की व्यापक समीक्षा की। इस वार्ता की सह अध्यक्षता भारत के संयुक्त रक्षा सचिव अमिताभ प्रसाद और न्यूजीलैंड के उपरक्षा सचिव रिचर्ड श्मिट ने की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न्यूजीलैंड के रक्षा बल के उप प्रमुख और संयुक्त बलों के कमांडर सहित कई शीर्ष नेताओं से उच्च स्तरीय मुलाकात की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य संयुक्त सैन्य खरीद, परिचालन ढांचों का मिलान और आगामी रक्षा परियोजनाओं के लिए सुचारू समन्वय को सुनिश्चित करना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुनीश शर्मा।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि डिग्री कार्यक्रमों के माध्यम से युवा छात्रों को प्रशिक्षित करने के महत्व पर बल दिया है। नई दिल्ली में ICAR संस्थानों के कुलपतियों और निदेशकों के सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि कृषि शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करना समय की मांग है। कृषि शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा कक्षा में नहीं बल्कि खेतों में तथा किसानों के बीच दी जानी चाहिए।
3: आज की परिस्थितियों के हिसाब से एग्री एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, आज की चुनौतियां हैं, क्लाइमेट चेंज की हो, ग्लोबल वार्मिंग की हो, बदलती हुई टेक्नोलॉजी हो, नए नए रोगों का प्रकोप हो, मिट्टी का खराब स्वास्थ्य हो, उन सब का समाधान भी ढूंढना है। कृषि शिक्षा प्राप्त करके जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका कैसे भविष्य बेहतर हो और वो कृषि को कैसे बेहतर करें, किसानों को उससे कैसे फायदा हो, इस पर विस्तार से चर्चा हो रही है।
0: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव है। श्री कुमार उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ने लखनऊ में लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में

0: हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में दो बांग्लादेशी नागरिकों को सिलीगुड़ी के विधान नगर स्थित एक हिरासत केंद्र में भेजा गया है। इन्हें कल सिलीगुड़ी के पास भारत नेपाल सीमा के निकट पुलिस ने हिरासत में लिया था। पूछताछ के दौरान उन्होंने भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की बात स्वीकार की। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने बताया है कि कांदा एक्सप्रेस दिल्ली में लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि ये प्याज भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड और केंद्रीय भंडार के स्टोरों में 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी क्रीमी लेयर के मानदंड से संबंधित केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर विचार करने की सहमति दे दी। केंद्र सरकार ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले के लागू होने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित 958 उम्मीदवारों के सेवा आवंटन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को 3 सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने और 22 सितंबर से पहले आत्मसमर्पण प्रमाण पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने कहा कि इसके बाद उनकी अपील पर गुण दोष के आधार पर सुनवाई की जाएगी। न्यायालय की पीठ ने तेजपाल की आत्मसमर्पण से छूट देने की याचिका खारिज कर दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद मिलाद उन नबी की पूर्व संध्या पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ईद मिलाद उन नबी पैगंबर मोहम्मद के उपदेशों को याद करने का अवसर है। राष्ट्रपति ने कहा कि पैगंबर की शिक्षाएं नागरिकों को धार्मिक आचरण और कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद के महान आदर्श नागरिकों को एक समावेशी और विकसित देश के निर्माण में सक्रिय योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। सरकार देश में मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों की स्थिति पर पूरे देश में मजबूत निगरानी तंत्र के जरिए लगातार नजर रख रही है। सरकार ने कहा है कि घबराने या चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने कहा कि देश में इस समय फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस हाल के वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे का संकेत नहीं है और ये मौसमी इन्फ्लुएंजा वायरस के सामान्य व्यवहार के अनुरूप है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र तथा सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में आज दिनभर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 287 अंक ऊपर चढ़कर 77,656 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 116 अंक की तेजी के साथ 24,335 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 33 पैसे मजबूत होकर 95.41 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए हैं। श्रीलंका भारत से पहली पारी में 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई का 1 दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए
2: श्रेय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार की आवाज में झुमरू फिल्म के गाने के साथ। मजरू सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं किशोर कुमार।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम आपके लिए। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आरती फिल्म का गाना मजरूह।

अगला गाना हमने लिया है रागिनी फिल्म से. इसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने, लिखा है कमर जलालाबादी ने और संगीत से सवारा है ओपी नैयर ने.

0: बांगाली छोकरा करूं प्यार को नमस्कारम।
1: मैं मदरासी छोकरी मुझे तुमसे प्यारम।
0: छोटी रे।

0: आमंत्रित कलाकार हैं
1: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
2: किराना अथवा कैराना सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला
1: स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना
0: सुबह और शाम
1: 6:45 पर
0: सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश के सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम आपके लिए। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले की आवाज में मेरे सनम फिल्म का गाना। इसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से संवारा है ओपी नैयर ने।

श्रोताओं, अब आपको सुनवा रहे हैं SH बिहारी का लिखा और ओपिन एयर का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है महेंद्र कपूर की, फिल्म का नाम किस्मत।

और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश आशा भोसले, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में, गुलजार के बोल और आर डी बर्मन की तर्ज, फिल्म का नाम परिचय।

दे मुन्नी, तुम भी गाओ। ऐसे नहीं, बोलो में गाओ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित पर।

बला की खूबसूरती और सुरीले स्वर की स्वामिनी विजयता पंडित का संबंध कलाकारों के एक ऐसे नामी घराने से है जिसके सदस्यों में शामिल हैं देश के प्रसिद्ध गायक गायिकाएं अभिनेत्रियां और संगीतकार। आपके पिता पंडित प्रताप नारायण शास्त्रीय संगीत के प्रतिष्ठित मेवाती घराने के मूर्धन्य गायक थे, जिनके दो और भाई पंडित मणिराम और पंडित जसराज की गिनती भी शास्त्रीय संगीत के नामचीन कलाकारों में होती है। संगीत पंडित प्रताप नारायण के बच्चों को विरासत में मिला और बच्चों ने पिता के मार्गदर्शन और अपनी साधना से उसे और भी संवारा और भी निखारा।

फिल्म जगत में पंडित प्रताप नारायण का परिवार शायद अपने आप में इकलौता और ऐसा अनूठा परिवार है जिसमें दो दो अभिनेत्री गायिका हुई, सुलक्षणा पंडित और उनकी छोटी बहन अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित।

विजेता जी चार बहनों और तीन भाइयों के अपने परिवार की सबसे छोटी और सबकी दुलारी सदस्य हैं। विजेता जी के तीन भाई फिल्म संगीत से संबंधित हैं। परिवार में बड़े भाई मंधीर और उनसे छोटे जतिन ने जोड़ी बनाकर संगीत निर्देशन की शुरुआत की। फिल्म थी सन 1982 में आई दिल ही दिल में। इसी फिल्म का एक गीत रफी साहब के साथ गाया विजेता पंडित ने।

विजेता जी के भाई जतिन पंडित ने बाद में अपने छोटे भाई ललित पंडित के साथ जोड़ी बनाकर कामयाबी और शोहरत का सुनहरा अध्याय लिखा। संगीतकार भाइयों की जोड़ी के संगीत निर्देशन में विजेता जी ने गाया ये।

0: मेरी मम्मी भी बहुत अच्छे संगीत का नॉलेज रखती थी, वो भजन बहुत अच्छा गाती थी और जब भी घर में कोई पूजा हुई तो वो हारमोनियम भी थोड़ा बहुत बजाकर भजन गाती थी और बहुत अच्छा गाती थी। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मैं सोचती हूँ मेरी माँ थी, जो हमेशा चाहती थी कि मैं गाना गाऊं और मैं गाना सीखूं। तो क्या है कि माँ बाप का जब तक सहयोग नहीं होता, उनका एक प्रेशर नहीं होता, उनकी इच्छाएं नहीं होती कि हमारे बच्चे बने, तब तक शायद मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है कि इंसान इस हद तक कोई भी चीज को सीखे।
1: बचपन में विजेता जी और उनके अन्य भाई बहनों ने उस दौर की अनेक फिल्मों के गीतों में अपना स्वर दिया था।
2: ए मुन्नी,

0: 1980-81 के आसपास फिल्म अभिनेता राजेंद्र कुमार अपने बेटे कुमार गौरव को बतौर अभिनेता स्थापित करने के लिए फिल्म बना रहे थे लव स्टोरी, और इसके लिए उन्हें एक नई और खूबसूरत अभिनेत्री की तलाश थी, और ये तलाश समाप्त हुई विजेता पंडित पर।
1: ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मुझे तो ये गुड़िया जापानी लगती है।
0: फिल्म लव स्टोरी ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए और विजेता पंडित रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंची।

अभिनेत्री के रूप में विजेता पंडित की चर्चित फिल्में हैं मोहब्बत, वफादार, प्यार का तूफान, जीते हैं शान से, दीवाना तेरे नाम का, जलजला, आग के शोले, नाग नागिन, मिट जाएंगे मिटाने वाले, कसम धंधे की, अफसर, फूल और इंसान, मिसाल, वफा और बांग्ला फिल्म आमार सोंगी।

प्रतिभाशाली अभिनेत्री और गायिका विजेता पंडित ने कई फिल्मों के लिए पार्श्व गायन भी किया। सुनिए उनके गाए कुछ गीतों के अंश। फिल्म लव एट टाइम्स स्क्वायर।

और अब जो जीता वही सिकंदर फिल्म का वो ट्रैक जो पहले विजेता पंडित और उदित नारायण की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था।

विजेता पंडित का विवाह हुआ सुप्रसिद्ध संगीतकार आदेश श्रीवास्तव के साथ। उनके दो बेटे हैं अनिवेश श्रीवास्तव और अवितेश श्रीवास्तव। संगीतकार पति आदेश जी के संगीत निर्देशन में भी कुछ फिल्मों के लिए विजेता जी ने पार्श्व गायन किया।

0: विजेता जी के जीवन की दो सबसे दुखद घटनाएं हैं, बहन संध्या की दुखदायी मृत्यु और उसके बाद बेहद कामयाब और प्रतिभाशाली संगीतकार जीवन साथी आदेश श्रीवास्तव का असामयिक बिछोह। पति आदेश श्रीवास्तव का जाना तो जैसे दुखों के पहाड़ का टूटना हो गया। आदेश श्रीवास्तव एक बेहतरीन संगीतकार होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे पति, वात्सल्य से भरे पिता, एक उदार हंसमुख और मददगार इंसान थे। आज उनकी सुरीली स्मृतियां ही विजेता जी के जीवन का सहारा हैं, संबल हैं।
1: बहुत अच्छे इंसान थे, पूरी इंडस्ट्री पूरी दुनिया जानती है कि उनका नेचर इतना अच्छा था, इतने हंसमुख थे कि आज सब मुझे कहते हैं कि आदेश चला गया, हमारी हंसी चली गई।
0: विजेता जी का बड़ा बेटा अपने महान संगीतकार पिता की तरह ही संगीत जगत में अपने आप को स्थापित करना चाहता है और इस दिशा में बेटे के लिए अभिनेत्री और गायिका माँ विजेता पंडित से बेहतर गुरु कौन होगा।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था फिल्म जगत की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और गायिका विजयता पंडित पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन कमल शर्मा का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: को फॉलो करते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं, पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 10 बजे हैं, वक्त हो चला है कार्यक्रम विविध संगीत का। उदित नारायण के गाए इस गाने को लीजिए सुनिए, जिसे लिखा है फैज अनवर ने, संगीत है निखिल विनय का।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था।
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे, उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है, और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जो जनवरी 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक वक्तव्य है और जिसका करतल ध्वनि से सबने स्वागत किया था कि दोनों ही रहेंगे, जनगण मन भी रहेगा और वंदे मातरम भी रहेगा, एक को गान कहा गया और दूसरे को गीत कहा गया, दोनों का स्टेटस बराबर का होगा। अगर हम इसके ऐतिहासिक महत्व को समझना चाहें तो यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वंदे मातरम ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा के रूप में काम किया था, जनगण मन को गा करके लोग शहीद नहीं हुए थे, फांसी पर नहीं चढ़े थे, ये बाद में एक सॉल्यूशन के रूप में जातीय गान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। दरअसल हमारी राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण गीत और नारा वंदे मातरम ही है, और इसी का जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
0: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

इससे पहले आप सुन रहे थे अनेक धार की आवाज में गीत को, ललित सेन ने संगीत दिया था, नुसरत बद्र ने गीत को लिखा था। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं।

श्रद्धा वर्मा की आवाज में आप सुन रहे थे इस गाने को। लेस्ले लेविस ने संगीत दिया था, रचना अंकुर तिवारी के थे। श्रोताओं, इसके साथ ही विविध संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 16.7 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र के माध्यम से। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब आनंद जी पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें का कार्यक्रम यादें में आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में मिस मैरी फिल्म के इस गाने को, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत में प्रिया है हेमंत कुमार ने।

आरती फिल्म के गाने को आप सुन रहे थे, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के थे, रोहन ने धुन बनाई थी। कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं तुमसा नहीं देखा फिल्म के गाने को। मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजें हैं, संगीतकार हैं ओपी नैयर, गीत मजरू सुल्तानपुरी के हैं।

शमशाद बेगम को आप सुन रहे थे दुलारे फिल्म के इस गाने में। नौशाद ने संगीत से सजाया था, शकील बदायूनी ने इस गाने को लिखा था। फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। आवाजें लता मंगेशकर, आशा भोसले की, गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत शंकर जयकिशन का।

आशिक फिल्म के इस गाने में आप सुन रहे थे मुकेश और साथियों को। शंकर जयकिशन ने संगीत दिया था, शैलेंद्र के बोल थे। इससे पहले आप सुन रहे थे शकील बदायूनी के लिखे गाने को मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में फिल्म घराना से। संगीतकार थे रवि। श्रोताओं, इसके साथ ही पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादें अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है 107.7 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजने वाले हैं, कुछ पलों में समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय जहां संभव हो बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर जोर दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई, इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर इस्तेमाल की बात कही ताकि किसानों को बेहतर सेवाएं मिल सके। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई को आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को देश में उत्पादन के लिए भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉ. जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत मोरक्को साझेदारी को और अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सातवीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्ष वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार प्रभारी राज्य सचिव उमर हेजिरा ने की। भारत और न्यूजीलैंड ने कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता में हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए नए समझौतों और भविष्य की सैन्य योजनाओं पर गहन चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। ओणम समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का उत्सव है। भारत के साथ दूसरे और

0: the day. IMD has said that cloudy sky conditions will continue to prevail over Delhi with spells of light to very light rainfall for the next 2 days. And that is the end of this news bulletin.
1: FMN पर आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। आज का हमारा प्रसारण अब संपन्न होता है। कल के कार्यक्रमों के साथ सुबह 5:51 पर हम फिर से आपके सेवा